0: क्योरा बुला सलाम नमस्ते सस्रीकाल, मैं हूं अभी आपके साथ में और लेकर आया हूं एक और एक लंच बॉक्स का सेगमेंट, जबकि आज है फ्राइडे द 14th of August। ऐसे में वीकेंड इज जस्ट अपॉन अस और ऐसे में आप भी बिल्कुल मज़ा ले रहे होंगे, जबकि फाइनल आवर्स है, जबकि ऑफिस स्पेस से आप बाहर निकलकर एक वीकेंड के लिए खुद को इन्जॉय कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दिस हैपनिंग आज के इस लंच बॉक्स के शो में, जबकि 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं। मैं हूं अभी आपके साथ में, तीन तक हमारा और आपका साथ बना रहेगा।
1: बचाओ क्या

हम पर लंच बॉक्स में आपके साथ में एक ऐसी चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और जिसको अभी तक मैं भी फॉलो नहीं कर रहा था। बातें कर रहे हैं फेस एड किट के बारे में। मैंने एक आर्टिकल पढ़ी है जहां पर ये बताया है एक फार्मासिस्ट ने कि वो बिना फेस एड किट लिए घर से नहीं निकलती। ना अभी तक मेरे पास गाड़ी में तो कोई फेस एड किट नहीं है और साथ में घर पर भी इकट्ठा रखकर एक फेस एड किट की तरह मेडिसिंस नहीं रखे हैं, लेकिन अब मैं करने वाला हूं। जबकि इन्होंने कहा है कि इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू रिस्पोंड टू इमरजेंसीज, यानी कि इमरजेंसीज को आप जल्दी और फास्टर और क्विकर रिस्पोंड कर पाते हैं जब आपके पास में एक रेडी पैक फेस एड किट होता है। और इनके फेस एड किट में ये रखती है, ज़रूरी समझती है रखना, आयोडीन, साथ में बैंडेजेस, प्लास्टर्स, एडहेसिव्स, और इसके अलावा ये ज़रूर रखती है पेन किलर्स। और इन सामानों के साथ में ये अक्सर बाहर ही निकलती है क्योंकि इनका ये कहना है यू नेवर नो इमरजेंसी में कब आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो मैं ये करने वाला हूँ और इसके बारे में आप भी ज़रूर सोचिएगा। कमिंग अप नेक्स्ट आपके साथ में रहेगा द लंच बॉक्स ऑफिस शार्ट आउट। इसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं 5599 पर।

0: हम पर लंच बॉक्स में ऑफिस शाउटआउट में एक प्यारा सा मैसेज आया है श्रुति की तरफ से, जो यंग पेटल्स ड्यूरी में बैठकर अपना ये जो लंच एंजॉय कर रही हैं, साथ में हम पर लंच बॉक्स का शो का भी मजा ले रही हैं। इसी तरह से हमारा और आपका साथ रहेगा तीन तक 104.2 एफएम, साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं, बस साथ देते रहिएगा।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेंगे ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

बड़े ही आसानी से आप $300 कैश इनाम जीत सकते हैं, जो ड्रॉ होगा फ्राइडे 28 अगस्त को। आपको सिर्फ क्या करना है, आप हेड कीजिए हमारे हम फेसबुक पेज पर। यहाँ पर रक्षाबंधन का एक पोस्ट अपलोड किया गया है आपके लिए, और आपको सिर्फ क्या करना होगा, आप अपने मेमोरीज में थोड़ा पीछे जाइए। अगर जो आप भाई है तो अपने बहना के बारे में, और या फिर आप बहन है अपने भाई को लेकर, कोई भी ऐसी यादें आपकी किसी भी चीज़ के साथ में जुड़ी होगी जो आपके लिए बन गया होगा बिल्कुल स्पेशल। शायद किसी मामूली चीज़ को लेकर आपके बीच में तू-तू मैं-मैं हुई होगी, या फिर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको लेकर काफ़ी फोन मेमोरीज आप दोनों के बीच में हैं। शायद वो आपसे दूर होंगे कभी और आपके लिए ये गिफ्ट आपके लिए भेजा होगा, या फिर कुछ और भी ऐसे कुछ चीज़ होगी जिसको लेकर सेंटिमेंटल वैल्यूज़ बिल्कुल बनी हुई हैं। तो आप उसी ऑब्जेक्ट को लेकर, उसी चीज़ को लेकर एक फ़ोटो खींच कर आप फेसबुक पेज पर हमारे कमेंट के नीचे अपलोड कर दीजिए। उसके नीचे 2-3 लाइन लिखिए कि क्यों ये आपके लिए स्पेशल है, और फिर अपने सिबलिंग को टैग कर लें। बस इतना ही आपको करना है, और इतना करने के बाद में आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, जहां पर $300 इनाम आपका हो सकेगा। ऑल ऑफ दिस ओनली ऑन हम।

0: हम पर कमिंग अप नेक्स्ट इज चटनी शॉर्ट्स, जहां पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेकर आपके साथ में कुछ ना कुछ लेटेस्ट जानकारी शेयर करते हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हो, शायद न्यूजीलैंड में या फिर ग्लोबली। तो इस पर और भी जानकारी बस थोड़ी देर में, ओनली ऑन लंच बॉक्स।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
3: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
4: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
5: क्या

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: हम पर लंच बॉक्स में अब समय हुआ कि आपको सुनवाए थ्रोबैक विद द काइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 0800 रचना. अगर जो आपको भी एक साउंड मॉर्गेज एडवाइस की जरूरत है तो नंबर याद रखना 0800 रचना.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Flights to the Gold Coast now on sale with Qantas. Trade winter layers for sunshine, beach walks, rooftop cocktails and unforgettable family adventures. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sale ends August 14. Terms and conditions apply.
5: 2 p.m. call out, we're on your way. Heading back to the office, we're on your way there too. Commute to site, yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
6: 19 saal baad, Shivam is back. A man haunted by grief and loss, searching for a purpose in life. Awarapan 2, starring Imran Hashmi and Disha Barney.
7: Maut, mera usse ek purana rishta hai. एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है।
6: आवारापन 2 नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अ फिल्म।
7: आवारापन।
6: रेटिंग टीबीसी।
8: Freedom's mattress flash sale is on now. Save 50% off mattresses, including Sealy and Freedom mattresses. Plus, save 50% off bedding. Hurry, sale ends Monday. Only at Freedom.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
10: हाँ, अच्छा
9: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साडा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह,
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
12: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
13: Keen to score 15 cents per litre off your fuel? From Friday to Sunday, scan your Club Plus card when you spend $100 at Pack and Save, Newworld or Foursquare. That's some smart shopping. T's and C's and exclusions apply.
14: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Good afternoon, I'm Bridget Hastie with the latest at 1. A post-mortem is being held today on the man shot dead by police at Sylvia Park Mall. A scene exam was completed overnight and Ngāti Paua has led a blessing. Police have also visited the man's family, with support being made available to them. Teams are continuing to piece together the moments leading up to yesterday's events, with the police watchdog also investigating. Canterbury stands to win in National's latest pre-election promise. The party is pledging $50 million for Rolleston's proposed road and rail freight hub if elected. Leader Christopher Luxon says they will also strengthen frontline health.
16: A re-elected National government will complete Tower 3 at Christchurch Hospital, delivering an extra 96 additional beds as Canterbury continues to grow.
15: Meanwhile, a new report highlights Canterbury's significant contribution to the economy. Environment Canterbury Chair Dion Swiggs says 15% of the country's output comes from the area.
17: We're starting to see new manufacturing coming in. We've got a great productive sector, primary sector, and we're starting to see that growth in jobs that are starting to happen because of those activities.
15: Diversions are being put in place in Hamilton after a crash that has left a person seriously injured. It happened on the corner of Albert and Galloway Streets. To sport, confidence the All Blacks scrum will continue to build in this Sunday morning's tour match with the Bulls in Pretoria. Tighthead prop Tyrell Lomax says they are learning with every outing and expects more of that this weekend.
18: I guess the Storm was, yeah, we gave away a few penalties, but then we were able to make a few improvements over a short period of time against the Sharks and then coming up against the Bulls, which is another big set-piece side.
15: Meanwhile, a knee injury has forced lock Laura Bayfield out of the Black Ferns side for this afternoon's match in Upper Hutt. Rugby was shift 4.
14: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
19: फ्राइडे 14th ऑफ अगस्त है और सनसेट एट 5:47 PM. रात को टेम्परेचर 10 डिग्रीज तक रह सकती है. इसके साथ साथ कहीं कहीं पर बादल घिरे रहेंगे, लेकिन शायद फोरकास्ट किया जा रहा है कि आगे चलकर ये साफ भी हो जाए.
14: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
20: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
14: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. लंच बॉक्स विद केतन.
21: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
14: लंच के मंच पे
22: मैं हूँ छोटा सा छोरा.
14: You're listening to अविनीत.
19: हम पर लंच बॉक्स लिए मैं हूँ अभी आपके साथ में. एंड इट्स जस्ट आफ्टर वन. अब आपको बता देते हैं हम बोर्डिंग कॉल 2026 के बारे में. जी हाँ, हम बोर्डिंग कॉल इज नाउ ओपन. आपका जो ड्रीम आइलैंड एस्केप है, इट्स जस्ट वन बोर्डिंग कॉल अवे. आप जीत सकते हैं 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी. आपको एंटर करने के लिए सिर्फ हम सुनते रहना है एवरी वीकडे. वीकेंड्स में भी सुनना, क्योंकि वीकेंड्स में मैं आता हूं, लेकिन वीकडे पर यह कंपटीशन रन होता है. और आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से फॉर द स्पेशल बोर्डिंग कॉल जो अनाउंस होता है सुबह 8 बजे के करीब, साथ में दिन में 11 बजे के करीब, उसके अलावा दोपहर 1 बजे के करीब, और इसके साथ में अराउंड 5 PM ये जो बोर्डिंग कॉल है ये आपके लिए स्पेशल प्ले होगा हम पर. उसके बाद में 60 मिनट्स टाइम है आपके पास में ताकि आप रोवा पर जाए और वहां जाकर बोर्ड नाउ टाइप करके सबमिट करें. बस इतना ही आपको करना है. इसके बाद में आप एक ऐसे ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे जहां पर आपको अनफॉरगेटेबल वनुआतु गेटवे मिल सकता है. इसके साथ में अगर जो आप इस कंपटीशन के लिए लिंक चाहते हैं तो BC लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करें. याद रहे, डोंट मिस योर फ्लाइट बिकॉज दिस वन कुड टेक यू टू पैराडाइज. हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस, फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतु. विजिट flysolomons.com. T's and C's apply.
14: बचाओ

हम लंच बॉक्स में आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कम्युनिटी न्यूज, जहां पर राधे राधे बॉयज न्यूजीलैंड आपके लिए लेकर आ रहे हैं ग्रैंड भजन नाइट, जहां पर हनुमान विस्तार को कंटिन्यू किया जाएगा जहां पर इसको पिछले साल छोड़ा गया था। कलाकार रहेंगे अविनेश बलराम ऑस्ट्रेलिया से, साथ में जूनिया अशोक यूएसए से। जो कॉन्सर्ट है, जो इवेंट है, फ्राइडे 14 अगस्त यानी आज ही रहेगा वैदिक सेंटर पपटोई में। और जानकारी के लिए आप जनेन को कॉल कर सकते हैं 02117586022 पर। जो टिकट्स है सिर्फ $20 है और ये अवेलेबल है जेस फ्रेश मार्ट पपटोई में। इसके अलावा ओकलैंड भक्ति सत्संग आपके लिए लेकर आ रहे हैं ग्रैंड त्रिकोणा कीर्तन नाइट, जहां पर आप कलाकारों अच्युतन नायर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, साथ में नितिन गाउंडर ओकलैंड के, और इसके अलावा अश्विन कुमार अप्पा लोटोका फिजी से ये आए हैं, इनको आप देख सकेंगे ऑन फ्राइडे 21 अगस्त वैदिक सेंटर पपटोय में। टिकट से सिर्फ $20। स्पॉन्सरशिप साथ में इंक्वायरी के लिए अश्नील को 02106672 पर कॉल करें। और जो टिकट्स है $20 में बिक रहे हैं, अवेलेबल है जेस फ्रेश मार्ट पपटोय में।

0: केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
2: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
3: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
5: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
7: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
8: क्यों, क्या हुआ?
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
9: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
10: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
11: No way. We in trouble?
10: Nah, it's BP Plus.
11: What is that?
10: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
12: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months. Plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
13: सुनो, bills बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
14: हाँ, mortgage भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लेने।
13: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
14: पर development के पैसे
13: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, your local development expert. Free site assessment के लिए visit nzpmi.go.nz या call 0800-4-NZPMI.
15: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी guest Sarah.
16: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल, शेफ एलेक्स?
15: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
16: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी।
15: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
16: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
17: जबरदस्त हिट्स
18: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
17: Playing Bollywood's biggest hits.
0: हम।
17: Lunch time, rant line.
19: हम पर यह है लंच बॉक्स, मैं हूँ आपका साथी अवि और आज ऐसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे रेंट लाइन में, जहाँ पर कहीं ना कहीं अगर जो आप जिम जाते हो तो आपने शायद इसको एक्सपीरियंस किया होगा। आपके अपने लोकल जिम में जब आप उसे यूज़ करने जाते हो, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो आपसे पहले जो पेशेंट किसी भी इक्विपमेंट या फिर यूँ कहें मशीन को यूज़ कर रहा हो, वो इन बिटवीन सेट्स या फिर सेट के दौरान इन बिटवीन सेट्स ये अपने फ़ोन पर ज़्यादा होते हैं। इसके कारण से उनको ज़्यादा समय लग जाता है अपने 3 सेट्स को कंप्लीट करने में। तो अगर जो आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है जहाँ पर जो आपसे पहले पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर अनजान है और या तो इनकॉन्सिडरेट है और आपके बारे में सोचते ही नहीं है, तो अगर जो आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है जहाँ पर अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस आपके लोकल जिम में हुआ, तो 5599 पर टेक्स्ट करें और इस पर थोड़ी देर में आपका जो मैसेज हमारे पास में आएगा और लिसनर्स के साथ में शेयर करेंगे।
17: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

gym a couple of times and there is one person who is always on his phone. And it's a pity that both of us go to the gym around the same time. तो ये शिरीष का कहना है कि कहीं ना कहीं उनको ये तकलीफ का सामना करना पड़ता है. इसके साथ में स्मिता ने मैसेज किया है. स्मिता लिखती है, आई एम ऑलवेज ऑफेंडेड व्हेन समबडी डजंट वाइप द इक्विपमेंट और मशीन्स आफ्टर दे हैव यूज्ड इट एंड आई ऑलवेज हैव टू एंश्योर दैट इट इज वाइप्ड आफ्टर आई हैव यूज्ड इट. और शायद आपका कहना है कि भले ही आप हमेशा अपने बाद में उस इक्विपमेंट को साफ कर लेती हो, लेकिन आपसे पहले जो यूजर्स होते हैं कहीं ना कहीं उसको वैसे ही छोड़ देते हैं. तो ये सभी कुछ लोग फेस कर रहे हैं. और अगर जो आप इसका सामना कर रहे हो तो आई थिंक इट्स ऑलवेज राइट कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अप्रोचिंग आप शायद काउंटर पर जाकर स्टाफ से बता सकते हो. तो ये था आज के लिए रेंट लाइन, जहां पर आपने अपने भड़ास को हमारे साथ में शेयर किया है.

0: होटल्स के बारे में, जहां पर न्यूजीलैंड फैशन वीक 2026 में ट्यूसडे 18 अगस्त को 8:30 PM से आपके पास में मौका रहेगा, जबकि आप जा सकते हैं शेड 10 क्वींस वॉर्फ 89 की स्ट्रीट ओकलैंड CBD में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि खादी, आपको पता होगा, जो हाथों से बुना जाता है और इसी फैब्रिक को अब एक नया मोड़ देकर, एक नया टेक लेकर, इसको बिल्कुल लग्जेरियस और साथ में कूल बनाकर आपके लिए प्रेजेंट करेंगे नन अदर देन राजेश प्रताप सिंह, जो कि इंडिया में फैशन शो में एक बहुत ही जाने माने नाम है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल फैशन में भी इनका बहुत ही बड़ा नाम है। और ये लेकर आए हैं आपके लिए री इमेजिन खादी। तो ये सभी कुछ देखने के लिए आपको सिर्फ टिकट्स लेने पड़ेंगे जो अवेलेबल है nzfashionweek.com पर। तो अपने टिकट्स आप यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर जो आपको फैशन में ढेर सारा इंटरेस्ट है और आप देखना चाहते हैं, तो डबल पासेस भी जीतने का मौका है, जहां पर आपको सिर्फ खादी लिखकर, KHADI लिखकर अपने नाम के साथ में 5599 पर टेक्स्ट करना होगा। और इतना ही करके जैसे ही ड्रॉ हुआ, अगर जो आपका नाम निकला तो आपके हाथ में डबल पासेस लग जाएंगे। लेकिन इसके अलावा nzfashionweek.com पर टिकट्स बिल्कुल अवेलेबल है।
1: लंच के मंच पे कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन।
2: ਨਾ ਏਰੀਏ ਚ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਚੱਕੀ।

0: radio.
1: Streaming on Rover.
2: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ एडिक्शन गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
3: Farmers Red Dot sale is now on with 50% off Red Dot clothing, 60% off Red Dot sleepyhead chiropractic beds, 40% off Red Dot beauty and lingerie, and 40% off Red Dot men's underwear. Farmers Red Dot sale is now on. Conditions and exclusions apply.
4: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
5: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
6: अब हमारा क्या होगा?
7: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
5: तो क्या करें?
2: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800 722 462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
8: Spending more time indoors this winter? Freshen up with the Resene Winter Sale. 50% off test pots, 20% off Resene interior paints. Shop online or in store. Ends 19 August. Resene, the paint the professionals use. T's and C's apply.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
10: हाँ। अच्छा
9: बताओ तुम्हारा फोकस, फोकस साडा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
12: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130050 और विजिट focuskitchens.co.in।
13: Reliance Ventilation System.
14: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
13: Moisture और ventilation का problem लगता है।
14: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
13: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
15: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
16: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
17: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है, सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
16: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए, मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
17: पर डेवलपमेंट के पैसे
16: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
18: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI. PMI.

0: gentlemen. We got airplane tickets with your name on them. This is the boarding call for Solomon Airlines flight number HUM 104.2 FM to Vanuatu. Boarding is now in progress. Yeah. Please proceed to Rover and enter board now.
1: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
2: Lunchbox with Ketan.
3: Mujhe pasand hai ladka.
4: हम पर लंच बॉक्स में मैं हूं आपका साथी अवि। जल्दी से आपको भजन जेम्स के बारे में बता दूं, जहां पर एक ऐसा मौका जबकि रवितेश देव आपके लिए परफॉर्म करने वाले हैं डिवोशनल म्यूजिक साथ में फ्यूजन भजन्स और कीर्तन्स को विद अ लाइव बैंड। तो इनको प्रेजेंट कर रहे हैं साउथ ओकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड साथ में एनजेड कल्चरल ट्रस्ट। और ये सभी कुछ आपके पास में मौका है, बिल्कुल कॉन्सर्ट जैसी आपको वाइब्स यहाँ पर मिलेगी। जबकि 22 अगस्त को ये परफॉर्म करेंगे 7 PM एट नाइट और साथ में वैदिक सेंट्रा में 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापाटोए ओकलैंड में आप इनको जाकर देख सकेंगे। टिकट्स है सिर्फ $30 और साथ में बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 इनके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपके लिए स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स भी बेचे जाएंगे। टिकट्स के लिए आप जा सकते हैं eventbrite.com साथ में जेस फ्रेश और वैली फ्रेश पापाटोए और शिव प्रसाद केल्स्टन। और हाँ, याद रहे जितने भी यहाँ से जो प्रोसीड्स है ये दिए जाएंगे इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी, तो इनको भी आप जाकर बिल्कुल सपोर्ट करें।
2: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: लंच के मंच पे थ्रोबैक ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: हम पर लंच बॉक्स में अब समय हुआ कि आपको यादों की दुनिया में ले जाए और आपको सुनवाए एक प्यारा सा थ्रोबैक

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी जबकि जस्ट आफ्टर टू और आहिस्ते आहिस्ते हम एंड ऑफ बिजनेस की ओर पहुंच रहे हैं यानी कि वीकेंड बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में 3 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा और 3 के बाद आपके साथ में हो जाएंगी सैंडी लेकर आएंगी कॉफी ब्रेक। लेकिन अभी के लिए ढेर सारी बातें और भी हैं और कुछ गाने और भी आपको सुनवाने हैं। ये सभी कुछ चलता रहेगा लंच बॉक्स में अभी का ढेर सारा प्यार।
0: बचाओ क्या?

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

हम पर लंच बॉक्स में बस थोड़ी देर में आपके साथ में रहेगा स्किप या रिप्ले, जहां पर आपको दो ऑप्शंस देंगे और उन दोनों में से आपको एक ही चुनना होगा कि किस गाने को आप ज्यादा सुनना पसंद करोगे। बस थोड़ी देर में ये आपके साथ में रहेगा। कीप हमिंग।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: We gotta go. Are you ready?
3: Come and take a trip with me.
4: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
5: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
6: Let's go.
5: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
7: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
8: क्यों, क्या हुआ?
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
9: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
10: हाँ, मॉर्गेज बनना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
9: घर बेचने से पहले NZPMI के पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
10: पर डेवलपमेंट के पैसे
9: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा.
4: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI.
11: Bunnings has great value nail to help you beat winter. Grab 30 seconds 1-litre mould off just $7.61. Or damp-free 2-pack disposable moisture absorbers only $5.98. Head in store or online for even more great value.
12: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.

0: या रिप्ले।
1: हम पर लंच बॉक्स में आज स्किप या रिप्ले में दोनों इंटरेस्टिंग चॉइसेस है, जबकि पहला जो गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में हमने फिल्म लूडो से लिया है हरदम हमदम, और काफ़ी मेलोडियस नंबर है। और जो दूसरा गाना ऑप्शन आपके लिए लेकर आए हैं ये है विशाल मिश्रा की आवाज़ में दिलों की ये डोरियां। दोनों गाने बिल्कुल मुझे पसंद है, लेकिन ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा सुनना चाहेंगे। 5599 पर आप अपने जो चॉइसेस है भेज सकते हैं। याद रहे अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म लूडो से हरदम हमदम या फिर विशाल मिश्रा की आवाज़ में दिलों की ये डोरियां, क्या सुनना पसंद करोगे आज आप?
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
4: हाय हाय हाय हाय।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: या रिप्ले।
1: हम पर लंच बॉक्स में अब समय हुआ कि स्किप या रिप्ले में जो आपने चूज किया है, जिस गाने को आपने ज्यादा वोट दिया है, वही आपके लिए प्ले करे। तो जबकि हमने चॉइसेस दिए थे अरिजीत सिंह की आवाज में हरदम हमदम या फिर विशाल मिश्रा की आवाज में दिलों की ये डोरियां, तो मैसेजेस जो आए हैं, स्मिता ने चूज किया है अरिजीत सिंह की आवाज में हरदम हमदम। इसके साथ में विनय पापटोई से आपने भी मैसेज किया है, आपने कहा है अरिजीत सिंह वाला गाना बजाओ। इसके साथ में अनुराधा, आप हैमिल्टन से मैसेज कर रही है, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, और आपने भी कहा है कि अरिजीत सिंह का हरदम हमदम सुनना है। इसके अलावा न्यू प्लिमथ से संगीता, आपका भी मैसेज आया है, आपने भी इसी गाने को वोट दिया है। और जो विशाल मिश्रा की आवाज़ में दिलों की ये डोरियां हैं, इस गाने को सिर्फ एक ही वोट मिला है, जबकि श्रुति ने मैसेज किया है और आपने कहा था कि आई वुड लव लिसनिंग टू दिस, लेकिन अभी के लिए वोट्स के आधार पर जो अगला गाना है अरिजीत सिंह का ही है, इंजॉय कीजिएगा इसे।

0: आपके लिए बस थोड़ी देर में लेकर आएंगे टेक टॉक, टेक्नोलॉजी की दुनिया से लेटेस्ट अपडेट्स। कीप हमिंग, बस थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
5: ये गलत बोल दिया यार।
4: और पहनता भी नहीं है उसको।
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया अभी वो।
5: अभी ब्रांड हो गया ना।
4: रुस्बे के बाल लगे उस।
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
10: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
11: You filled the pinata before I sealed it, right?
12: No, you did.
11: I thought you did.
13: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
14: 19 साल बाद शिवम इज बैक, अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ। आवारापन 2, स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी।
15: मौत मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है।
14: आवारापन 2 नाउ शोइंग इन सिनेमास, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अ फिल्म।
16: आवारापन
14: रेटिंग TBC।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. Tech Talk.
2: हम पर टिकटॉक में आपके साथ में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं. और अगर जो आप गेमिंग दुनिया में हैं या फिर आप वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं, तो शायद आपको पता होगा कि जो वीडियो गेमिंग कंसोल्स थे, ये घर पर काफ़ी बड़े बड़े आते थे पहले. और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते गई, जो गेमिंग कंसोल्स है इतने ही स्ट्रीमलाइन होते गए और स्लिम होती गई. और अब ऐसा बताया जा रहा है, हेड ऑफ गेमिंग जेफ गेटिस का कहना है, जो कि अमेजन में हेड ऑफ गेमिंग है, और इन्होंने बताया बीबीसी को कि ये अब आगे चलकर बिलीव करते हैं कि ये जो कंसोल्स है आने वाले दिनों में इन फ्यूचर शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़े. यानी कि जितने भी प्लेयर्स हैं अब ये अपने गेम्स को ऑनलाइन ही खेल पाएंगे, स्ट्रीम कर पाएंगे, और अब इनको गेम्स खेलने के लिए इन फ्यूचर कंसोल्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो जहाँ पर पहले बड़े बड़े कंसोल्स हुआ करते थे, फिर उनको जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ टेक्नोलॉजी, उनको स्ट्रीमलाइन किया गया और डिफाइन करना किया गया, तो अब आने वाले दिनों में शायद ये कंसोल्स बचे ही नहीं, क्योंकि अब प्लेयर्स अपने गेम्स को ऑनलाइन ही खेलेंगे.
0: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
3: Dil ke kisi kone mein chhu liya hai kisi ne tumhe.
4: Tum? Tum yahan kya kar rahe ho?
3: Bas dekh raha hoon.
4: Kya chahte ho?
3: Mere siwa koi ye chehra kabhi na dekhe. Main umr guzar dun.

0: हम पर लंच बॉक्स का आज का ये सफर बस यहीं तक था, लेकिन जाते जाते आपको ये बता दे कि रक्षाबंधन होने जो स्पेशल सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू है, इसका मौका आपको रिस्पेक्टिव शो होस्ट अपने अपने शो में दिया करेंगे। और जैसे ही आप उसके बारे में सुने, आपके पास में मौका रहेगा लाइव ऑन एयर आकर अपने सिबलिंग के बारे में जो आपको पसंद है वो बताइए, या फिर जो आपको नहीं पसंद था उसके बारे में भी बताइए। और इतना करके आप अपने नाम को ड्रॉ में शामिल कर लेंगे, जहाँ पर $250 कैश इनाम आपके हाथ लग सकता है। ये जो ड्रॉ है 28 अगस्त को रहेगा और 2 लकी विनर्स ठहरेंगे जो $250 जीत कर जाएंगे। तो ये सभी कुछ आपके पास में मौका है। और जैसे ही आप इसके बारे में सुने, 800-004-866 पर आप कॉल करें। अभी के लिए मैं निकलता हूँ यहाँ से, आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर कल सुबह, जबकि लेकर आऊँगा सैटरडे ब्रेकफास्ट शो। इन द मीन टाइम यू डू टेक केयर, बाय।
1: रचना इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: केतन
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

के अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: तीन बजकर दस मिनट हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो चुके हैं जो इंसिडेंट कल हुआ था. यू नो जो इंसिडेंट सिल्विया पार्क में हुआ था जहाँ पे द पर्सन वॉज शॉट डेड बाय द पुलिस ऑफिसर्स. ये जो पर्सन है ये एक्चुअली में कम्युनिटी डिटेंशन में था. सो ही वॉज रिपोर्टेडली सर्विंग अ सेंटेंस ऑफ कम्युनिटी डिटेंशन एंड सुपरविजन व्हेन ही वॉज किल्ड. सो करेक्शंस जो है इन्होंने कन्फर्म किया है कि ही वॉज सब्जेक्ट टू 7 PM टू 7 AM कर्फ्यू, यानी कि रात के 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक वो कहीं पे बाहर नहीं जा सकता था. ही वॉज मॉनिटर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड सेड ही वॉजन ब्रीचिंग द कर्फ्यू जब वो सिल्विया पार्क इंसिडेंट हुआ, बिकॉज वो 7 बजे से पहले था वहाँ पे. लेकिन करेक्शन जो है ये रिव्यू कर रहे हैं उसका इन्वॉल्वमेंट. वैसे रिपोर्ट्स ये भी है कि 4 प्रीवियस फायर आर्म्स कन्विक्शंस जो थे ही हैड एंड ही हैड रिसीव्ड अ 4-year प्रिजन सेंटेंस इन 2023 फॉर रॉबरी. सो इसको रिलीज़ किया गया था 2025 में. ही वॉज सेंटेंस टू कम्युनिटी डिटेंशन जहाँ पे उसने रिबल्स बूथ्स वहाँ पे भी चोरी की थी. सो ही वॉज फेसिंग अ चार्ज रिलेटिंग टू टेकिंग ऑफ सुबारू लेगेसी एज वेल. सो या सो डज कम्युनिटी डिटेंशन वर्क जो है ये रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए ये देना चाहिए? अगर पता है कि एक जो ऑफेंडर है यू नो ये बार बार एक टाइप ऑफ चीज़ कर रहा है बिकॉज इसकी एक हैबिट थी ये चीज़ें बार बार करने की. सो इफ़ देर इज़ अ ऑफेंडर जो कि एक रिपीटेड ऑफेंडर है बेसिकली, क्या उसको कम्युनिटी डिटेंशन में रखना चाहिए? मुझे लगता है कि दिस शुड बी अ टॉपिक जहाँ पे जो भी है पावर में, जो भी रूल मेकर्स है, इन सबको इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, इसके ऊपर कोई चेंजेस करने चाहिए कि अगर एक रिपीटेड ऑफेंडर है तो वो कम्युनिटी डिटेंशन में नहीं होना चाहिए, वो प्रिजन के अंदर होना चाहिए. बिकॉज ये बंदे के पास चोरी की एयर राइफल थी. एयर राइफल वो किसी के ऊपर चला नहीं सका, उससे पहले ही उसको शॉट कर दिया. लेकिन अगर वो राइफल किसी के ऊपर चला देता तो वो एक्चुअली में थ्रेट भी था पब्लिक के लिए. सो या लेट्स सी कि इसके ऊपर डिस्कशंस होती है बिकॉज इट्स अ गुड टाइम टू डू द डिस्कशंस इन द पार्लियामेंट एज वेल. सो ये डिस्कशंस होती है कि नहीं होती है कि जो रिपीट ऑफेंडर्स है, और आपका क्या टेक है, व्हाट डू यू थिंक कि जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं क्या उनको कम्युनिटी डिटेंशन पे रखना चाहिए या फिर उनको जेल में रखना चाहिए? बिकॉज किसी ने एक बार अगर चोरी कर दी, रॉबरी कर दी, ठीक है, उसको आपने जेल टाइम दिया, उसके बाद वो कम्युनिटी डिटेंशन वर्क में है, वो माना. लेकिन अगर कोई बार बार एक टाइप ऑफ थिंग्स कर रहा है जहाँ पे फायर आर्म्स का भी उसके ऊपर 4 प्रीवियस फायर आर्म्स कन्विक्शंस उस बंदे के ऊपर हो चुकी है, तो क्या उस बंदे के ऊपर कम्युनिटी डिटेंशन जो है ये करनी चाहिए थी? बिकॉज ही इज़ आउट देयर एंड एनी वे वो अगर 7 PM टू 7 AM के कर्फ्यू के टाइम पर अगर वो अंदर भी है, बंद भी है घर के अंदर, हाउस अरेस्ट भी है, लेकिन अगर वो बाहर निकलता है तो जब तक पुलिस पहुँचे कि उसको ट्रैक करके कि वो बाहर निकला है, व्हाट इफ ही डज समथिंग? सो रिस्क तो एक पब्लिक के लिए वो रहता है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं 5599 पर. कॉफी ब्रेक विद सैंडी. उससे कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछते, गुस्सा हो जाती है और सब बस कर दिए सर.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
2: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy. And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
3: Contact support if promo not applied. T's and C's and fees apply.
4: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
5: Join the Tribe!
4: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe. Your destination for sport. Download the app now and
5: join our tribe.
6: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
7: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
8: Non-stop Bollywood.
9: Hum.
8: Playing Bollywood's biggest hits.
10: Coffee Break with Sandy.
8: Bollywood's most wanted.
11: Gundi khad rao. Ya seedha andar aao.
12: Main laun apna A game.
8: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

3:19 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं, एंड नाउ इज द टाइम टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। वेल, हमारे सुपर सिटी में यहाँ पे 18 अगस्त को बहुत ही सुपर इवेंट होने वाला है NZ फैशन वीक में, न्यूजीलैंड फैशन वीक में। तो जहाँ पे न्यूजीलैंड का जो कल्चर है, न्यूजीलैंड का जो फैशन है, ये डिस्प्ले होता है यहाँ पे रनवे पे, वहीं पे खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स यानी कि इंडिया का जो कल्चर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होने वाला है, इंडिया का जो फैशन है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट होने वाला है। सो एक इनक्रेडिबल नाइट रहने वाली है इंडियन फैशन कल्चर एंड क्रिएटिविटी की। एक रेयर अपॉर्चुनिटी है आई विल से कि इंडियन फैशन को न्यूजीलैंड फैशन वीक रनवे में देखने के लिए। खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स जहाँ पे 4 लीडिंग इंडियन डिज़ाइनर्स जो है ये ऑकलैंड में आने वाले हैं और शोकेस करेंगे ट्रेडिशनल हैंडस्पन हैंड वूवन फैब्रिक खादी, जिसे एक नॉर्मल आज के मॉडर्न वे से री इमेजिन किया गया है। सो मेजर इंटरनेशनल फैशन नेम इसको हेडलाइन करने वाले हैं, जिनका नाम है राजेश प्रताप सिंह, जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिज़ाइनर्स है। सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, एंड यू नो इंडिया से डिज़ाइनर्स आ रहे हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड फैशन वीक में रनवे पे, एंड वो भी इंडिया का ही टेक्सटाइल खादी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। सो दिस इज़ आई थिंक रियली गुड टाइम टू सेलिब्रेट द कनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज। एंड 18 अगस्त को इवेंट होने वाला है 8:30 PM ऑनवर्ड्स शेड 10 क्वींस वॉर्फ में। सो आप भी इसका हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं, आप भी वहाँ पर ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर टिकट जीतनी है आपको क्या करना है, खादी की स्पेलिंग है KHADI। खादी एक टेक्सटाइल होता है, अगर आपको नहीं पता है तो ये कपड़ा होता है जो चरखा होता है, सो यू नो जो स्पिनिंग व्हील है जिसे हम कहते हैं, तो उससे खादी बनती है। तो उससे जब यू नो कॉटन बनता है, कॉटन से वो जो थ्रेड बनता है, देन उससे जो खादी का कपड़ा है ये बनता है। एंड इसके ज़्यादातर गर्मियों में इसके जो कपड़े हैं ये ज़्यादा पहने जाते हैं। और खादी जब इंडिया इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चली थी उस समय पर खादी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था, बिकॉज़ जो फॉरेन के कपड़े थे, ब्रिटिश के जो क्लोथ्स बेसिकली, उनको उस समय पर बॉयकॉट किया गया था। तो इसलिए फिर इंडिया में जो खादी है इसकी प्रोडक्शन वहाँ पे उस समय पर ज़्यादा शुरू हो गई थी। सो इसीलिए खादी जो है ये बहुत बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका हिस्सा आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर टिकट जीतनी है तो खादी स्पेस अपना नाम लिख के भेजिए 5599 पर। खादी की स्पेलिंग है KHADI, खादी स्पेस योर नेम एंड द नंबर इज 5599।

3:30 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। एंड साउथ कोरिया से न्यूज है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट वेव की। 2 अगस्त को बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ था, द सिटी ऑफ यांगसन, वहाँ पे 42.5 डिग्रीज टेम्परेचर था सेल्सियस, द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन साउथ कोरिया सिंस द रिकॉर्ड बिगेन इन 1904। सो जो हीट थी वो इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि फार्मर्स ने बताया कि उन्होंने जब डिगअप किए पोटैटोज, दे वर सॉफ्ट कोलैप्सिंग एंड वो बॉयल्ड थे। सो जैसे आप आलू को बॉयल करते हो, पोटैटोज को आप बॉयल करते हो, जैसे वो हो जाते हैं, वैसे पोटैटोज वो डिगअप कर रहे थे, इतनी ज़्यादा हीट थी वहाँ पे। सो वन फार्मर सेड कि जो क्रॉप थी इट लुक्ड हेल्थी ओनली अ वीक अर्लियर, लेकिन उसके बाद ऐसा होनी शुरू हो गई क्रॉप, जैसे कि यू नो किसी के ऊपर बॉइलिंग वाटर जो है ये डाल दिया हो। नॉट जस्ट पोटैटोज, वाटरमेलन जो थे वहाँ पे रिपोर्टेडली टर्नड मशी एज वेल। मोर देन 900,000 लाइफ स्टॉक हैव डाइड इन द हीट इन साउथ कोरिया। अराउंड 1.4 मिलियन फार्म्ड फिश हैव ऑल्सो डाइड। जापान में भी रिकॉर्ड

0: headlines at TMI.
1: 3:32 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. साज भट्ट की आवाज में दिस रिक्रिएटेड सॉन्ग आप सुनने वाले हैं. बेसिकली कंटिन्यू सॉन्ग सुनने वाले हैं बिकॉज दिस इज फ्रॉम अवारापन 2. अवारापन मूवी जहाँ पे खत्म होती है वहीं से शुरू होती है अवारापन 2 जो कि आज रिलीज हो चुकी है सिनेमाज में. वेल, हमारी तो टिकट्स बुक है, जाने वाले हैं हम, देखने वाले हैं बिकॉज शिवम इज बैक. सो यू नो, अवारापन देखते समय ऐसा लगा कि शायद शिवम तो गया लेकिन एक्चुअली में दिखाया नहीं था कि वो गया. सो लेट्स सी ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है. इसका रिव्यू अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आप हमारा अनफिल्टर्ड का इंस्टा चेक कर सकते हैं, अनफिल्टर्ड PD. अभी से फॉलो कर दीजिए बिकॉज वहीं पे आपको जो रिव्यू है इस मूवी का हम देने वाले हैं आज.

0: 3:43 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे. एंड रिसेंट हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है और ये है ऑर्मिस्टन सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, ईयर 13 के स्टूडेंट्स के साथ, जिन्होंने एक बोर्ड गेम बनाई है. इसका नाम है मनी मेहम. मनी मेहम जो है एक बहुत ही फन एंड कॉम्पिटिटिव गेम है, जस्ट लाइक मोनोपोली, लेकिन ये बच्चों के लिए डिज़ाइन है फ्रॉम द एज 9 to 15. और यू नो, बच्चों को अगर फाइनेंशियल डिसीशन मेकिंग सिखानी है आपको, तो ये वो गेम खेल सकते हैं. बच्चों ने ये गेम बनाई है, बच्चों के लिए ही बनाई है. सो ये जो 4 टीनेजर्स हैं, इनके पास ये आइडिया कैसे आया, इस प्रोडक्ट को इन्होंने बिल्डअप कैसे किया, एंड यू नो कैसे इन्होंने इस वेंचर को शुरू किया, सो ये सारी की सारी कहानी इन्होंने इस पॉडकास्ट में हमारे साथ शेयर की है. ड्राइव लेके भेजेंगे 5599 पर तो फुल एपिसोड आपको मिल जाएगा. अदरवाइज गो टू रोवा स्पॉटिफाई, सर्च अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रोज़बे, तो ये एपिसोड आपको मिल जाएगा. थोड़ा सा बिट सुनाती हूँ अबाउट जो इस ये जो गेम है, बोर्ड गेम, इसके मटीरियल्स को इन स्टूडेंट्स ने कैसे तैयार किया.
1: So who's responsible for all of that?
2: So our marketing manager Lali is responsible for all the designing and artwork.
1: Okay.
2: And yeah.
1: And what is your responsibility?
2: So that my responsibility is designing the product itself, the mm-hmm. board and like occupation cards and all of that.
1: Oh wow.
0: Okay. Wow.
1: And then you went and sourced materials and all of that as well.
2: Yes. So all this game is sustainable and 100% recycled. So our board is made out of sustainable plywood, and mm-hmm. the occupation cards are actually made out of recycled plywood that we got from companies that were just throwing it out.
1: Plywood?
2: Yeah.
1: Mm. Oh, wow.
0: This is 100% recycled.
1: Can we open it?
3: Yes.
2: Yeah, of course.
1: Okay, I'll open it alongside. Yeah. Right. And then finance, what are we doing in finance? So what are you taking care of? Are you taking care of costings and everything?
3: Yes, I am taking care of all the costs, how much it costs to make one board game.
0: How did you manage that?
1: Like did you study it somewhere, or how did you get about costing? And because this is quite a challenge, right? Oh wow, this is quite cool, huh?
3: 100%. So I study accounting, mm-hmm. and from there all the accounting students should be the finance director of a business.
1: Okay. Oh, right.
3: So from there, I sort out all the finances from behind, as in how much it costs to make the game, how much money we get from fundraising. Yeah.
1: Oh, wow. That's
0: wow,
1: pretty
0: you
1: good.
0: So fundraising karke and bahut sare, you know, recycled materials ko use karke inhone is board game ko taiyar kiya hai, which is amazing, guys. So ye board game aap bhi khareed sakte hain. Listen to the podcast and you will know ki ye board game agar aapko khareedni hai apne bachcho ke liye, apne liye, to aapko kaise khareedni hai. And moreover, kya hota hai ki yahan pe agar kuch students try kar rahe hain kuch different karne ke liye, to mereko lagta hai ki उनके लिए ये एक मोटिवेशन भी हो जाता है. इससे बाकी स्टूडेंट्स जो है, जो बाकी बच्चे हैं, उनको भी इनकरेजमेंट मिलती है. Throwback. Brought to you by 0800 रचना. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग है हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: Accurate traffic.
4: Continental cars, Audi Q7 run out.
5: Cloudy overnight for Auckland, a low of 12 on the northern to Silverdale from town, 53 minutes. CV patch heading north around Eastman Road. The northwestern, it's slow from Waterview to Te Atatū. On the southern to Manukau, 42 minutes. An hour to Drury, it's heavy northbound Mount Wellington to Green Lane. Heading south, Newmarket to Ellerslie, Panmure. Southwestern's pretty slow in both directions between Massey Road and Mangere Bridge.
4: Save up to $40,000 on the Audi Q7 range at Continental Cars, Audi. T's and C's apply.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: When you see them on the road, you suddenly don't need to overtake that guy in front of you. And you suddenly remember what a stop sign means. Suddenly you're not too cool to buckle up. And you're suddenly stoked you turned down that beer at the barbie. Nah, all good. Yep. Seeing them means you're suddenly on your best behaviour. Drive like cops are around. Because they are.
9: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
10: It's business month at Warehouse Stationery with big deals on business essentials like 20% off lightweight whiteboards and pinboards, and buy one get one half price on WS whiteboard markers. Don't miss big deals for your business at Warehouse Stationery. Conditions apply.
11: The Afterpay Day sales are back. Score up to 70% off thousands of brands like Harvey Norman, PB Tech, Hallensteins and Zed when you check out with Afterpay. And Sunday, T's, C's, fees and credit checks may apply. See afterpay.com for Afterpay terms.
12: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 12 panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
13: Make your space your own at Mitre 10. Upgrade your storage with a MaxRack Heavy Duty 5 Shelf Wire Unit, now $165. And get your fire going faster with Samba Fire Lighters. Grab 236 packs for $7. T's and C's apply. Shop now at Mitre 10.
14: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 4. Queenstown's mayor is glad to get a nod at National South Island Investment Plan. The party is promising to spend time on road congestion solutions for the growing area if elected. John Glover says such mass rapid transit has been talked about for years.
16: We need buses to get people along our state highways. We need to get the cars off the state highways. We need the likes of a gondola or a cableway.
15: ACT has unveiled an alternative to the so-called bed tax. Its pre-election proposal would see councils get $1 for every guest night in their area from GST and visitor levies. Leader David Seymour says it could also be increased in the future if financial conditions allow.
17: Which would give councils even more money to pay for tourism-related infrastructure, put on events that attract tourists, and do all of the things that the hotel industry's been calling for a long time.
15: The man who murdered Canterbury father Richard Leeman has been jailed for a minimum non-parole period of 17 years. Leeman's torso was found in the boot of his own car 3 years ago at an abandoned house in Rangiora. A wounded person has been found at the same Gun City store where a man later shot dead by police had stolen an air rifle. St John says they've taken a person to hospital in a serious condition. It's understood there is no connection to yesterday's events. To sport, New Zealand Football has formally withdrawn its support for Gianni Infantino as FIFA president. And All Whites defender Tim Payne went viral during the World Cup as the Cup's least known player. Now his debut shirt for his Paraguayan club is up for auction. The top bid is over $6,000. Football updates brought to you by Hisense. And the Black Ferns and a Black Ferns 15 are playing a friendly in Upper Hutt. The Black Ferns 15 lead 7-5.
14: Sports news. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Playing Bollywood's biggest hits.
3: Put your head to Gandhi.
14: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
18: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15.5 डिग्रीज और आज को बनाए 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम ऐसे आज का ऑलमोस्ट फाइन है, थोड़ा क्लाउडी जरूर है. कल का डिट्टो ऐसा वेदर रहेगा. संडे को सनी ब्राइट डे रहने वाला है.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
14: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
18: 4:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी एंड रुजवे एज वेल, जो पहुंच ही चुका है. सो कैसा जा रहा है आपका डे, आप भी यहाँ पर ज़रूर इसके बारे में शेयर कर सकते हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून रुजवे, कैसे हो तुम?
19: गुड आफ्टरनून सैंडी, कैसे हो आप?
18: बढ़िया बढ़िया यार, तुम्हारा फ्राइडे कैसा जा रहा है?
19: फ्राइडे बहुत ही बढ़िया यार, as usual, busy है.
18: It is, यार फ्राइडे तुम्हारा हमेशा बिजी होता है.
19: हमेशा नहीं होता है, मतलब होता है कभी कभार यार.
18: Most of the time it is busy Friday. मतलब फ्राइडे को मैं देखती हूँ कि काफी लोग ऐसा कंटी मान लेते हैं.
19: कौन सा दिन मेरा बिजी नहीं होता है सैंडी, वो भी बोलो ना.
18: होता है बीच में एक आधा, मेरे को लगता है इसीलिए तुम्हारा फ्राइडे को सब पाइल अप हो जाता है.
19: अच्छा, वैसे
18: बीच में कुछ दिन तुम्हारे हल्के हो जाते हैं.
19: अच्छा
18: शायद ये एक फैक्टर हो सकता है ना.
19: आई थिंक इट्स द रॉकेट प्रिंसिपल.
18: वो क्या है?
19: जब तक पिछवाड़े में आग नहीं लगती
18: रॉकेट प्रिंसिपल,
19: तब तक उड़ते नहीं है ना.
18: Yeah, this was very cool principle, huh?
19: यार कूल ही चीज़ है.
18: मैंने पता था वो रॉकेट प्रिंसिपल होता है. By the way, आज 14th अगस्त है रुज़बे. Today is Pakistan's Independence Day.
19: आजादी, क्या बोलते हैं उसको, क्या, what is that day called?
18: स्वतंत्रता
19: का अलग है.
18: जश्न आजादी,
19: जश्न आजादी.
18: अच्छा कैसी. सो आज जश्न आजादी है एंड कल 15 अगस्त है एंड टुमारो इज स्वतंत्रता दिवस. है ना?
19: That's right.
18: So, आज हम ट्रेंड मेकर्स में कुछ अलग करने वाले हैं. आज हम दोनों दिन का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं इन ट्रेंड मेकर्स. समथिंग जो 14th और 15th को नहीं हुआ.
19: मेरे को एक चीज रियलाइज हुई
18: है. Happened in 1947, वो आज हम करने वाले हैं ट्रेंड मेकर्स में.
19: मेरे को एक चीज रियलाइज हुई है लेकिन कि यू नो हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे एंड या लाइक ऐसे जश्न होता है जो भी होता है.
18: या या
19: बट मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब अभी रिसेंटली जब मैंने ये मूवी देखी मैं वापस आऊँगा तो मुझे एक चीज़ अभी आज रियलाइज हुई कि यार व्हाई डू वी एक्चुअली सेलिब्रेट दीज डेज. लाइक आई नो इट्स अ बिग डे एंड फ्रीडम मिला एंड इट्स अ थिंग, बट हाउ मेनी लाइव्स वर लॉस्ट, हाउ मेनी फैमिलीज वर ब्रोकन
18: एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट.
19: So, like I feel that on these days there should be more like a 1 minute silence for everyone who's lost.
18: Maybe observing the day, you can, मतलब उसको right word हम observing बोल सकते हैं, observing the day. Yeah, there are mixed things. I will say it's freedom fighters ने वो दिन के लिए ही fight किया, freedom के लिए ही fight किया, because with freedom comes many things as well. बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मिलती है. एंड बट एट द सेम टाइम कुछ एरियाज थे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. रेड क्लिफ लाइन के बारे में आज एक्चुअली भी हम गाइस बात करने वाले हैं ट्रेंड मेकर्स में. एंड काफ़ी लोगों को मूवी देखने तक नहीं पता था कि रेड क्लिफ लाइन होती क्या है. एंड इट वॉज नॉट ऑन 14th and 15th August. आज़ादी के दो दिन बाद दोनों साइड्स में पता चलता है कि ओके जहाँ पे जो हम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम तो इस सिटी में इस जगह पे बिलोंग ही नहीं करते हैं.
19: इस कंट्री में बिलोंग ही नहीं करते हैं.
18: वो लाइन तो वहाँ पे खींची जा चुकी है. सो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे आज ट्रेंड मेकर्स में. सो इसीलिए मेरे को लगता है कि सी फ्रीडम फाइटर्स तो कॉमन ही थे दोनों जगह पे बिकॉज उसके बाद ही आज़ादी मिली. एंड इट वॉज अ म्यूचुअल वर्क ना. उस समय तो सब कुछ म्यूचुअल क्या, उस समय तो सब एक ही था. वो तो बाद में सब कुछ अलग अलग खैर हुआ. सो या आज इसी के बारे में थोड़ी बातें करने वाले हैं. एंड यू ऑल्सो शेयर योर व्यूज इसके बारे में. कुछ आप मैसेज शेयर करना चाहते हैं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन अगर शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि रुजबे ने ऑब्जर्वेशन शेयर की. एंड आई थिंक रुजबे की ऑब्जर्वेशन इसलिए भी है बिकॉज उसको रिसेंटली इतनी डिटेल में पता चला अबाउट पार्टीशन. शायद उससे पहले रुजबे को इतना डिटेल में पार्टीशन का नहीं आइडिया था, लेकिन इतना डिटेल नहीं पता था.
19: मेरे लिए गदर मूवी बहुत इम्पैक्टफुल थी पार्टीशन को लेकर, क्योंकि उसमें वो सीन था वो बहुत ही इम्प्रिंट. एंड फिर उसके बाद मैं वापस आऊंगा, मैं वो वापस से रिक्रिएट हुआ मतलब. तो अब जब रिसेंटली मैंने वो देखा वापस से, तो तब जाके मेरे को फिर से लगा कि ओ माय गॉड यार, एक्चुअली मैं सम पीपल सम फैमिलीज हैव बीन थ्रू अ लॉट. एंड जब मैं लेह लद्दाख भी गया था कुछ साल पहले, तो तभी वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे वो लेके जाते हमें और वो बताते कि ये यहाँ से वहाँ पे पाकिस्तान दिखता है और ये एक ही फैमिली का घर है. बट वो अभी नहीं जा, एक दूसरे को नहीं देख सकते, नहीं मिल सकते, बिकॉज दे आर डिफरेंट साइड, मतलब बीच में से लाइन चली गई है बॉर्डर की. तो या इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग ना टू सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स. हम आजादी की बात करते, फ्रीडम की बात करते, बट एक्चुअली में उनकी तो आजादी चली गई ना, बिकॉज दे कांट गो टू द अदर साइड नाउ टू मीट देयर फैमिली.
18: वाओ, सो और भी बहुत सारी बातें इसके रिलेटेड हम शेयर करेंगे यहाँ पे ट्रेंड मेकर्स में. आपका कुछ है तो आप भी यहाँ पे जरूर शेयर कर सकते हैं.

0: अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप ये बहुत ही धासु सा गाना मैं परवाना। ये मूवी कौन सी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बढ़िया सी कोई मूवी का नहीं है।
1: I think कार्तिक आर्यन का है ये।
0: हाँ, इसलिए मुझे याद नहीं है। Anyway, we have a caller with us right now. Hi.
1: Yes, hi. कैसी है आप?
2: Yes, hi Sandy. Hi Sirujbe. मेरा नाम रिगी है।
1: जी रिगी, सो आपने टॉपिक के ऊपर बात करनी थी ना, वी वर टॉकिंग अबाउट पार्टीशन के बारे में, जो आज हम 6 बजे कवर करने वाले हैं।
2: जी जी जी, मैं बात करना चाह रही थी कि मैं हीलिंग लाइन में हूँ, सो टू से, वेयर लाइक जेनरेशनल हीलिंग, ट्रॉमा हीलिंग और लाइफ कोचिंग के इंडस्ट्री में। तो ड्यूरिंग वन ऑफ दी सेशंस मेरे जो क्लाइंट, दो बार हुआ मेरे साथ, इंडियन क्लाइंट, एंड वन वॉज अ मेल एंड ही हैड इश्यूज कि वो अपनी जॉब को सस्टेन नहीं कर पाते किसी भी, ठीक है, और घर भी उनके बहुत सारे चेंज हुए, लाइक उनका ना उथल पुथल चलता ही रहता है। तो जब ही केम फॉर वांटिंग टू नो कि क्या रीजन है, कोई यू नो, हमारा दिमाग इंडियंस का जाता है, या नजर लगी किसी की, या कुछ हुआ है मेरे को, तो बट उसका एक्चुअली व्हेन आई वेंट इनटू हिज रिकॉर्ड्स ऑफ हिज डीएनए, जनरेशनल डीएनए, आई फाउंड आउट कि उनका एक्चुअली हिज ग्रेट ग्रैंडफादर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन हैड टू कम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। उस प्रोसेस में जो भी वो सब ट्रॉमा, जो भी उन्होंने पेन देखा, कलेक्टिव ट्रॉमा भी था एक ना, एक तो पर्सनल लोगों का है, एक कलेक्टिव फियर चल रहा है, वो सारा डीएनए में एब्जॉर्ब है और वो आगे पास ऑन हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वो अपने ग्रेट ग्रैंड फादर का ही एक तरीके का ट्रॉमा रेप्लिकेट कर रहे हैं अपने जीवन में, अनकॉन्शियसली वो पैटर्न चल रहा है।
1: एक्चुअली में सो स्ट्रेंज ना, हमने इस मूवी में वो कॉन्सेप्ट भी देखा है। आपने ये मूवी देखी है, मैं वापस आऊंगा?
2: मैंने देखी नहीं है, आई वांटेड टू सी इट बट इट केम ऑफ, आई थिंक इट्स ऑन नेटफ्लिक्स, सो आई वांट टू वॉच इट।
1: या इसमें जी जी सिमिलर कॉन्सेप्ट दिखाया है कि जनरेशन में वो आगे बच्चों में जो कैरी हुआ है। So
2: absolutely, there's another instance where a woman, you know, she had come to me for healing of her, she had uterus issues and fertility issues, and unka bhi ek similar trauma hi nikla, jo ki there was a abuse that her grandmother went through,
1: aur
2: wo her body had shut down in that process when the abuse happened, and guess what, the trauma is continuing, where mom had uterus issues and now this daughter has and fertility issues. So wo trauma kaise kaise aage jata hame pata nahi hota kai baar, to wo hum bolte hain ha ek date hai aur hum usko celebrate karenge ya hum usko you know jaise bhi karenge, but wo actually wo traumas continue hote hain. I mean victories bhi hoti hain, achhi powers bhi aage jati hain, but ट्रॉमा ज्यादा लंबा जाते हैं क्योंकि हम कॉन्शियसली उस पर फोकस नहीं करते कि क्यों कहां से आ रही है ये चीज,
0: क्योंकि हमने बहुत ही कन्वीनियंटली इग्नोर कर लिया ना वो सारी चीजें, हम झंडा लहराने में हम वो भूल ही गए कि और क्या क्या हुआ था,
1: और क्या क्या हुआ। इनफैक्ट जिस पर्सन ने वो, हम वही अभी रीड करते हैं डिटेल में, जिस पर्सन ने वो लाइन बनाई, वो बंदे ने डॉक्यूमेंट बाद में डिस्ट्रॉय भी कर दिए ताकि हिस्ट्री में कभी जाए ही ना कि ये क्या था, कैसे हुआ, इसका रीजन क्या था, पता डिटेल्स तो हमें आज भी पता नहीं है।
2: या बट इट्स फॉरएवर बीन एच्ड इन पीपल्स हार्ट, यू नो, पेनफुली।
0: या एंड द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट जो दो पार्टीज अफेक्ट हुई वो चीज से, वही आपस में लड़ रही है, लेकिन जिसने एक्चुअली में वो करवाया उसको कोई अकाउंटेबल नहीं मान रहा है, उससे कोई कोई पूछ रहा नहीं है कि भाई तुमने ये किया, इसका क्या है, कहाँ पे गया तुम्हारा ह्यूमन राइट्स, कहाँ पे गया तुम्हारा यूएन और वो सारी चीजें। तो या
2: Anyway. But the land remembers, you know, the land always remembers and the people of the land remember. Cycle hai, you know, everything comes and goes.
1: That's a very good point जो आज आपने यहाँ पे बताया about generational traumas, कि वो कई बार रह जाते हैं जो ancestors के साथ होता है आगे, कई बार sometimes kids they carry it.
2: Oh yes.
0: Thank you so much. Yeah, really nice talking to you.
1: Thank you, Reggie, for sharing.
2: Lovely talking to you guys. Enjoy.
0: Thank you.
2: Lovely
0: Thank
3: you.
2: Take care. Bye.
0: Bye.
3: Hi,
0: आपका भी स्वागत है।
3: राहुल अगेन, कल बात हुई थी परसों,
1: जी राहुल,
3: आवारापन के ऊपर बात हुई थी, अब इस बारे में बात हो रही है,
0: अभी बंटवारा पे बात कर रहे हैं। आप देख रहे हो हम कितना फीडबैक सर आंखों पे लेते हैं।
3: तो बात हो रही है आपके ट्रॉमा और जो जनरेशन से आपको मिलता है जो पीछे, मतलब मेरे को क्या है कि जैसे क्लीनिंग घर के अंदर साफ सफाई हर चीज एक जगह पे सेट होनी चाहिए अपनी। और जब मैं बैचलर भी जब मैं आया था यहाँ न्यूजीलैंड में, तो उस टाइम पे जब मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पे आते थे या नए नए नेबर बने कुछ इंडियन, तो वो घर पे आया, वो कह रहे भाई साहब आपने शादी कब कर ली, आपने बताया भी नहीं। तो मैंने कहा शादी कर ली, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मेरे नेबर, मैं आपको कैसे नहीं बताऊंगा शादी, और डेफिनेटली मिठाई कह रहे, लेकिन घर ऐसे कैसे एकदम सेट क्यों है इतना ज्यादा, मतलब हर चीज अपनी अपनी जगह पे पड़ी है, एकदम आपका पिलो केस ऐसा सेट है, रिंकल भी नहीं है, चप्पल एकदम सीधी, यू नो
0: वो तो लोनली हो ना।
3: इसका क्या मतलब होता है?
0: नहीं, मैं बोल रहा था कि भाई पिलो केस और वो सब सेट है, मतलब वो तो लोनलीनेस का साइन है ना।
3: अरे नहीं, लोनली बंदे तो उल्टा सीधा फेंक के जाते हैं, बैचलर क्या करते हैं, उनको क्या पड़ी है।
0: नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था,
3: रहना चाहिए, मॉम नहीं देख रही। लेकिन मेरी याद करती हूँ फैमिली से वो सब चीजें सीखी हुई थी, क्योंकि मेरे घर में सफाई हर चीज मतलब एकदम सेट होनी चाहिए, कुछ चीजें जैसे उधर नहीं, और फ्लावर वॉश भी एकदम, और वीक के वीक एकदम डस्टिंग, यू नो लाइक क्लीनिंग एवरी डे। अभी भी मेरे घर में वही हाल है, बीवी है बच्चे हैं, लेकिन वो मेरी सफाई से परेशान है।
0: क्या बात है यार, वेरी नाइस।
3: वो सफाई से ही परेशान है, वो कहते हैं इतना तो हम भी नहीं कर पाएंगे, मेरी बीवी आने से पहले हर चीज मतलब सोफे वोफे कवर ये वो लेना देना, इवन हर चीज जो है कई बार दाल भी उबली होती है रोटी के पेड़े वेड़े, ताकि वो आया उसको ज्यादा स्ट्रेस।
0: तो आप ये क्या मतलब, क्या मतलब आप कह रहे हो कि ये आपको आपका मतलब ये ट्रॉमा है आपका जो आपको एंसेस्ट्रल से मिला है?
3: तो आप बोलते हैं आजकल के जमाने में, मेरे जमाने में तो मुझे याद नहीं क्या बोलते थे, लेकिन कुछ लोगों से मैंने पता किया ये आपको को कहते हैं आपको फॉब है क्लीनिंग का, क्लीनिंग और चीजों को सेट रखने का, और कोई भी उन चीजों को इधर उधर करे, इवन पेंसिल केस में होनी चाहिए उस तरीके से।
0: ओसीडी टाइप है, मतलब इसको बोलते हैं ना ओसीडी।
1: ओसीडी का कोई एक टाइप है, ऐसा
0: टाइप है ना ये,
1: नॉट एग्जैक्टली दैट।
3: ओसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है वैसे?
0: ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।
3: हाँ ये डिसऑर्डर भी बोल सकते हो।
0: नहीं मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ,
3: मुझे डिसऑर्डर इतना अच्छा डिसऑर्डर तो ऐसा होना चाहिए, कुछ अच्छे डिसऑर्डर भी होने चाहिए ना बंदे में।
0: अरे ये एक्चुअली मैं बहुत खतरनाक केस के ऊपर एक मूवी भी आई है, पता है आपको ये कि मतलब ये एक होता है इसका और भी डेंजर लेवल होता है जर्मोफोबिया, जहाँ पे आपको अच्छा। हर एक जर्म से डर लगता है। हाँ
1: तो
0: वो उतना नहीं पहुंचा आप अभी।
3: उससे मैं पता क्या करता हूँ, देखो उसमें पता क्या होता है, नहीं बात ठीक है डिसऑर्डर भी हो सकता है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं एक्सक्यूज दे देता हूँ सम टाइम के, यार आज इसको स्किप कर देते हैं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आप कपड़े फेंक दो आज के लिए खाली एक दिन, उसके बाद नेक्स्ट डे मत करना, क्योंकि फिर ये लोग क्या सीखेंगे हमसे।
0: नहीं सही है, मेरे को लग रहा है राहुल ये
3: क्या सीखेगी
0: इसको, आप डिसऑर्डर मत समझो,
3: अच्छे से रहना कोई बुरी बात नहीं है।
0: नहीं नहीं ये डिसऑर्डर नहीं, ये आपका सुपर पावर है।
3: आपने डरा दिया यार, उसमें मेरे को डिसऑर्डर है, मैं तो खुद ही डर गया।
0: वो तो खुद ही आप बोल रहे थे,
3: मुझे और एक लेडी बोला कि आपको तो फॉब है, मैंने कहा फॉब क्लीनिंग करना कोई फॉब है?
0: फॉब नहीं, फोबिया।
1: हाँ, फोबिया है वही।
0: फोबिया नहीं, नहीं फोबिया नहीं है वो आपका।
3: अच्छा, फॉब। अच्छा
0: हाँ, नहीं नहीं
3: तो
0: आप
3: वो तो
0: सही चल रहे हो,
3: मतलब कि अगर ढंग से रहना, सफाई से रहना, और नेबर भी मेरे हैप्पी हैं।
0: बेस्ट है,
3: मतलब इस बंदे के घर के बाहर एक चप्पल भी इधर उधर नहीं दिखती।
0: राहुल इज अ परफेक्ट मैन।
3: नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है।
0: राहुल
3: एक ही बंदा था। आपकी इस बात से मुझे याद है, बात आई आमिर खान की, एक मैं ऐसी किसी को ना मैं बोल रहा था, मैंने कहा यार काम पे ना, मैंने कहा नहीं यार ये चीज ना ऐसी होनी चाहिए और ये बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए, हम कोशिश तो कर सकते हैं। अच्छा। क्या भाई साहब इतने परफेक्शनिस्ट क्यों हो आप, आमिर खान हो क्या आप?
0: अरे क्या बात है,
3: कह रहा परफेक्शनिस्ट तो खाली उसी को नाम दिया गया। मैंने कहा यार आमिर खान की बात नहीं, उसी में से बंदे बहुत निकले हुए, लेकिन कुछ आमिर खान बन गए और कुछ हमारे जैसे वैसे ही आज की डेट में।
0: क्या बात है राहुल,
3: मिली वो बात अलग है।
0: थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस मैन।
1: सही है।
0: आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम, आपको कुछ मैसेजेस सुनाते हैं और फिर कुछ गानों का साथ।

0: inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HUM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: HUM boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 or search PFSL T's and C's lending and credit criteria apply.
0: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok. One epic trip. Five-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
5: 99 Centaur here with more 99 cent deals this week at Pack and Save. Yeehaw! Ah, come here. Ah, ah, gotcha. Yeah, this isn't my first rodealio. 99 cent week on now at Pack and Save.
6: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the winter sparkle celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए हरी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर ऑकलैंड
7: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी टिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
8: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Bollywood's most wanted.
9: Kundi khadao, ya seedha andar aao.
10: Main laao apna A game.
8: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे एक से गाने हम लेकर आते हैं और इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह भी ले आते हैं. वेल, हम आपके साथ एक गेम खेलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें पार्टिसिपेंट्स चाहिए. वी वॉन्ट यू टू गिव अस अ कॉल 0800-004-866 इस नंबर पे. अभी नहीं, हम आपको कुछ मैसेजेस सुनाएंगे
1: उसके बाद. लेकिन आपको अभी हम कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स के बारे में भी अभी आपको बताते हैं. जैसे कि हम बोर्डिंग कॉल जो है

0: ये आपके लिए इसका जो बोर्डिंग कॉल का जो क्यू है ये आपके लिए 5 बजे के बाद प्ले होने वाला है। एंड जैसे वो क्यू टू कॉल आप सुनते हैं आपको हमारी रोवा ऐप पे जाना है, वहाँ पे आर्टिकल है हम बोर्डिंग कॉल का, ये कॉम्पिटिशन पेज है, वहाँ पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे बोर्ड नाउ लिखा होगा, बोर्ड नाउ के ऊपर क्लिक करो एंड दैट्स इट, और आप जो है इस कॉम्पिटिशन में एंटर हो जाएंगे। यू कैन विन रिटर्न एयर टिकट्स टू वन आर टू, टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वन आर टू विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी एज वेल। सो एवरी डे ये आपके लिए होता है यहाँ पे एवरी वीक डे में सुबह 8 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 1 आफ्टर 1 PM एंड आफ्टर 5 PM। अगर आपको कॉम्पिटिशन पेज का लिंक चाहिए तो जस्ट टेक्स्ट BC ऑन 5599 एंड आपको ये लिंक मिल जाएगा। हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस, जहाँ पे आप फ्लाई कर सकते हैं 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनाटू, एंड यू कैन विजिट solomons.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।
1: इसी के साथ साथ घूमने की बात चल रही है तो आपको बता दें कि बाली और बैंकॉक में अगर आपको हमारे साथ घूमना है तो उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। उसमें आपको अगर और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पे, या फिर अनिल भाटिया को कांटेक्ट कीजिए
0: 0800 4 Sun Tours
1: पे, और वो आपको और भी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हाँ, ईस्टर ब्रेक पे सैंडी और मैं हम जा रहे हैं बाली और बैंकॉक आपके साथ, इफ यू डिसाइड टू कम विद अस।
0: सो पैकेज की डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो ड्राइव लिख के भेजो 5599 पर, ऑटो रिप्लाई में आपको एक फॉर्म मिलेगा, फिल द फॉर्म एंड यू विल गेट द पैकेज प्राइस।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
3: Rusby, tickets book ho gaye.
4: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
6: हेलो एवरीबॉडी।
2: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम। Accurate traffic.
8: Save on Sky Tower visits. Cloudy overnight for Auckland, a low of 12 on the northern. It's heavy heading north from the Harbour Bridge to Northcote Road and in through Albany. The northwestern slow from Waterview to Te Atatū. On the southern, heavy traffic heading north from Mount Wellington to Green Lane and southbound from Newmarket to Mount Wellington. Southwestern is slow northbound from Massey Road to Mangere Bridge and south from Puhunui Road to the southern.
9: Enjoy discounted $30 adult Sky Tower passes. Terms apply. Search skytower.co.nz.
10: Professional Financials has started. आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
11: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
12: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
11: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
13: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
14: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनाना चाय के, जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे। विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो, हम हमेशा आपके पास हैं।
15: गो बनाना चाय के इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस।
14: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनाना चाय के बीचलैंड इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कम्प्लीट completely free for a limited time. So deer mat kijiye. Call 0800-46-26-26 today.
15: Available at selected branches. T's and C's apply.
16: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
17: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
18: Celebrate big screen icons with pocket-sized pals at Woolworths. Get Nescafe 8 to 10 pack mixes for just $4.79 each. You'll also get a free Disney Ushi with every $30 you spend. T's and C's apply while stocks last.
19: Briscoe's is taking savings to the extreme with at least 40% off store-wide and incredible 60% off thrill-seeking savings. Don't miss at least 40% off store-wide. End Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
20: Are you ready to go home?
21: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
22: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: आप सुन रहे ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे. अभी 4:44 right now on the clock and now it's time to clock it or
0: ये हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जो कि फ्राइडे को आपके लिए लेके आते हैं. क्लॉक इट और ब्लॉक इट. क्लॉक इट मीन्स कि एवरीथिंग ग्रीन एंड ब्लॉक इट इज एवरीथिंग रेड.
1: तो बताइए आज का क्या है भाई.
0: सो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा गाइज. आपको कॉल करना है 0800 00 हम पर कि इस चीज को आप क्लॉक इट करना चाहेंगे या फिर ब्लॉक इट करना चाहेंगे. मतलब ये चीज एक्सेप्टेड है आपके लिए या फिर नहीं एक्सेप्टेड है. फॉर एग्जाम्पल रुस्बे तुमसे शुरू करती हूँ. ठीक है तो पहला सवाल है तुम्हारे लिए. रीडिंग अ मैसेज बट रिप्लाइंग डेज लेटर. इट्स फॉर यू.
1: यार ये मेरे को लग रहा है ये गेम यूज हो रहा है मुझे पर्सनली टारगेट करने के लिए. तो अब मैं क्या बोलूं. दिस इज एक्चुअली अ रेड फ्लैग. लेकिन होता है मेरे से ब्लॉक इट.
0: क्लॉक इट करते हो वैसे. तुम्हारे लिए क्या है ये क्लॉक इट.
1: मेरे लिए क्लॉक इट है ये. क्लॉक इट.
0: Now, posting every holiday photo.
1: Block it.
0: I can expect this. Okay, using voice notes instead of texting.
1: Oh, block it.
0: Why?
1: No, I don't. I hate it when...
0: ऐसा सुनना पड़ता है ना. आप कहीं पे भी बैठे होते हो तो ऐसा सुनना पड़ता है कि क्या ही बोला है.
1: और हर जगह नहीं सुन पाते हो तुम ना. मतलब और फोन ऐसे कान पे फोन रखना है तो मैं भाई उससे अच्छा कॉल ही कर ले ना. फोन पे ही बात कर ले. क्योंकि वॉइस मैसेज पे ना जो भी वॉइस मैसेज का शौकीन है ये आप लोगों के लिए. तुम मुद्दे की बात तो करते नहीं हो. तुम घुमाने वाली बातें पहले करते हो और मुद्दे की बात एंड में तुम कंफ्यूजन में वो मुद्दे की बात रही जाती है और फिर वो मैसेज लिखकर ही भेजते हो.
0: टेक्स्ट में क्या होता है कि तुम मुद्दे की बात ही करते हो बिकॉज तुम्हें टाइप बहुत करना पड़ता है.
1: Yes.
0: Okay. Sharing your location with your partner.
1: अरे clock it bro, clock it.
0: Yeah.
1: अपना तो share पे ही है.
0: तभी पूछा मैंने ये.
1: जब भी हमने नया नया शेयर कर किया था ना क्योंकि मेरे को तो आता भी नहीं कैसे करना है तो मैंने उसको ही बोला था करने को. उसने जब किया था फिर मैं उसको कॉल करता था बोलता था अच्छा पहुंच गई ऑफिस. अब भी पहुंच गई.
0: Oh my god, this is stalking.
1: तो मेरे को बहुत मजा आया पहले पहले से करने को.
0: ओके उसी नोट पे स्टॉकिंग समवन्स इंस्टा बिफोर मीटिंग देम.
1: ब्लॉक इट. आई वुड नॉट गो विद
0: पर तुम ऐसा नहीं करते हो. अगर तुम्हें किसी से मिलना हो प्रोफेशनली भी वैसे भी कहीं पर भी तो तुम उसे पहले थोड़ा सर्च करते हो कि ये कौन है.
1: ब्लॉक इट.
0: ओके ब्लॉक इट.
1: क्योंकि यार ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इन पर्सन जो तुम किसी को अगर एक ओपन माइंड से मिलोगे विदाउट एनी प्री कंसीव्ड नोशंस
0: तुम्हें लगता है कि जजमेंट हो जाएगी वहां पे.
1: इट इज मच इजियर टू हैव अ जजमेंट. जजमेंट तो हम करेंगे बट वो फेस टू फेस वाला जजमेंट रहेगा. क्लियर जजमेंट रहेगा वो बेटर रहेगा. क्योंकि इंस्टाग्राम पे यार लोग बहुत अलग पर्सनैलिटीज होते हैं ना.
0: या इंस्टा पे हमेशा ट्रू पर्सनैलिटीज नहीं होती है. वो भी सही है. आप भी कॉल कीजिए यहाँ पे 0800 00 हम पर. तो आपसे भी ये सवाल पूछेंगे तो आपको भी जवाब देना है. अभी आपको गेम समझ में आ गई है क्लॉक इट एंड ब्लॉक इट. एंड तुमसे यार ये मैंने बहुत देखा है पोस्टिंग जिम सेल्फीज और वीडियोस.
1: नॉट एप्लीकेबल. नॉट एप्लीकेबल यार क्या बोलूँ.
0: फिर भी
1: हाय हाय आपका स्वागत है.
3: हाय
1: जी.
0: या कैसी है आप?
3: I'm good. How are you guys?
1: Very good. क्या नाम है आपका?
3: साधना.
1: क्या क्या?
0: साधना.
3: या
1: अच्छा.
3: You can call me fabulous.
1: Fabulous.
0: Fabulous. अरे वाह.
1: Fabulous ने हमको वैसे भी एक मेड अप नाम दिया पहले, पता है ना आपको?
3: हाँ.
1: बताइए Fabulous.
0: So आपके लिए सवाल ये है, splitting the bill on a first meet. It can be anyone.
3: Block it.
0: Okay.
1: Block it बोला आपने?
3: No, clock it.
1: Clock it. Okay. बोला आपने. अच्छा.
0: Okay. Posting gym selfies.
3: Clock it.
0: आप जाती हो जिम? जाती हो जिम?
3: Yes.
0: हाँ, तब भी ये selfies भी डालती है, videos भी डालती है.
1: अच्छा, क्या बात है?
0: ऐसा लग रहा है मुझे.
3: मैं इसलिए तो नाम नहीं बता रही.
0: Okay, सही है. Okay.
1: हाँ.
0: Having separate work and personal phone.
3: Block it.
0: एक ही फोन चलेगा.
1: एक ही फोन चाहिए आपको. जो कांड करना है एक ही फोन पे करना
3: है. एक फोन ही
0: मैनेज
3: हो जाए तो बहुत है.
0: ओके. स्टेइंग फ्रेंड्स, बिकॉज आपने देखो नाम तो बोला नहीं तो ये सवाल पूछ सकती हूँ. स्टेइंग फ्रेंड्स विद एन एक्स,
3: ये थोड़ा डाइसी है. हाउ ए रिलेशनशिप एंडेड, यू नो.
1: आपका केस बताई दीजिए ना.
0: आप बताइए ना, इज इट क्लॉक इट और ब्लॉक इट?
1: अब अगर अगर चाहिए ही गॉसिप सैंडी को तो अच्छा ही दे दीजिए उसको.
0: वही ना.
3: क्लॉक इट सीक्रेटली.
0: देयर यू गो.
1: सीक्रेटली.
0: गुड वन यार, आपने एकदम फैबुलस आंसर्स दिए.
1: व्हाट इज गुड वन इन दैट?
0: अरे फैबुलस आंसर्स दिए उसने.
1: सीक्रेटली को आप गुड वन बोल रहे हो?
0: एक्सेप्ट भी किया ना पब्लिकली.
1: अच्छा, बिना नाम बताए. नहीं, बढ़िया है. थैंक यू सो मच फैबुलस.
0: थैंक यू फैब फॉर कॉलिंग.
3: थैंक यू.
0: चीयर्स. बाय.
3: हैव अ ग्रेट इवनिंग.
0: बाय बाय. सो यस, आप भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको भी ये गेम खेलनी है या फिर बाकियों के साथ ये गेम खेलो. क्लॉक इट ब्लॉक इट.
1: ऐसे मेरे को ऐसे अननोन कॉलर्स चाहिए यार, लाइक यू नो इट विल बी सो मच फन.
0: या
1: बिना नाम का इसका मतलब यू नो. तो इससे एडवांटेज क्या है मालूम है?
0: क्या?
1: कि हमें यहाँ पे कंप्लेन भी नहीं आ सकती ना, क्योंकि वो अनोनिमस है.
0: बोला.
22: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वीकेंड पे बारिश होने की संभावना है. आज भी थोड़ी बहुत बारिश हुई, आइसोलेटेड शावर्स हो सकते हैं, साउथ सदरलीज का भी साथ रहेगा. इवनिंग में बारिश होगी. 5:47 को आज होगा सनसेट. फील्स लाइक 15. ओवरनाइट टेम्परेचर गोइंग टू बी एज लो एज 10 डिग्रीज टुनाइट. सैटरडे को बारिश है. संडे को इट लुक्स बिट ओके राइट नाउ.
2: Drive show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
3: Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
4: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: आज है 14 अगस्त एंड हैप्पी जश्न आज़ादी अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. और कल इंडिपेंडेंस डे है अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हैप्पी हैप्पी. एंड कल और भी एक चीज सेलिब्रेट होने वाली है.
5: क्या?
1: इट इज पारसी न्यू ईयर.
5: ओ, कल पारसी. मुझे तुमसे पूछना था, ये तो उस दिन होता है ना? आई थिंक
1: ऐसा कंफ्यूजन है ना.
5: Yeah, there is another month for that.
1: जो ईरान में है वो 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं.
5: Yeah, it is 21 मार्च.
1: पारसी कैलेंडर के हिसाब से हमारा कैलेंडर चेंज होता है कल से. तो आज यू नो काफी लोग बोलते हैं ना पतेती. हाँ, तो आज पतेती है, लास्ट डे ऑफ द ईयर.
5: ओके, सो कल नवरोज है.
1: कल हाँ, मतलब नवरोज. हाँ, न्यू ईयर, पारसी न्यू ईयर, नवरोज.
5: नवरोज,
1: नवरोज मींस न्यू ईयर. हाँ, तो या बट वो कंफ्यूजन हो जाएगा ना फिर आपको, क्योंकि नवरोज होता है 21 मार्च को.
5: And tomorrow is Parsi New Year.
1: Tomorrow is Parsi New Year.
5: Okay.
1: But for details, get in touch with the experts, not me.
5: For details, get in touch with Ben Affer.
1: Yeah.
5: वो आपको डिटेल में समझाएगी. बट या इस आवर में बोरिंग कॉल ये आपके लिए कभी भी प्ले हो सकती है. रिमेम्बर, इसके लिए आप सुनते रहिएगा यहाँ पे, स्टे ट्यून, बिकॉज आपको चांस मिलेगा पार्टिसिपेट करने के लिए, जहाँ पे आपको रिटर्न टिकट जीतने का मौका मिल रहा है विद स्पेंडिंग मनी. रक्षाबंधन के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका भी आपको इसी आवर में मिल रहा है.
1: मेरे को एक कूल चीज करने का अभी मन किया सैंडी.
5: कूल चीज क्या?
1: हाँ, अभी कूल.
5: नॉट फूल थिंग बट कूल थिंग.
1: बट इट माइट बी अ डिफिकल्ट कूल थिंग. बट एनीवे, आज
5: इट कैन बी फूल थिंग टू डू.
1: सो आज पतेती के दिन पे मेरी मॉम को मैंने मतलब मैसेज किया ना, तो उन्होंने बोला आस्क फॉर फॉरगिवनेस. सो बेसिकली आज के दिन यू रिफ्लेक्ट ऑन योर ईयर, यू नो जैसे हर कोई करता ना, यू रिफ्लेक्ट ऑन योर एंड यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. सो व्हाट वुड यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस टू? मेरी माँ ने तो अज्यूम ही कर लिया कि मैंने बहुत पाप किए इस साल में.
5: उन्होंने बोल ही दिया रुस्बे को कि तू ना आज के दिन
1: तू फॉरगिवनेस मांग ले. ऐसा नहीं, कोई बोला नहीं कि रिफ्लेक्ट कर और सोच, नहीं, तू
5: आस्क फॉर फॉरगिवनेस.
1: So what is that one thing that you want to ask for forgiveness if you have to?
5: So message karke ya call karke bhi bata sakte hain.
1: 0800 004866.
5: Yeah, you have to think about it now.
1: Let's keep it fun, man. Mereko lagta hai I need to ask for forgiveness to talk without thinking. काफी बार ऐसा होता है ना, अभी कम हो गया सैंडी. नाउ आई थिंक यू नीड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर द सेम थिंग, क्योंकि मेरे को लगा ऑफ लेट यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग अ लॉट विदाउट थिंकिंग.
5: नहीं, ऐसा नहीं है.
1: तो आप सोच के ये सारी बकवास कर रहे हैं. अच्छा, बट या गिव अस अ कॉल. 0800 004866 नंबर है यहाँ पे, आप कॉल कर सकते हो.
5: 0800 004866. अगर आपको फॉरगिवनेस किसी चीज की मांगनी हो तो वो क्या होगी?
1: मेरे को पता है मेरे को किस चीज में ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं, बट मेरे को ना एआई की लोग बहुत बात कर रहे ना, मेरे को इसमें एआई चाहिए जहाँ पे लोग हमें यहाँ पे कॉल करे, उनको अगर शर्म आ रही बात करने को तो उनके एआई एजेंट से बात करवाए.
5: And that's why his mom said, ask for forgiveness. क्यों ऐसे बातें करते हो रुस्बे?
1: अरे यार, that's right.
5: कॉल करके कोई बात नहीं कर रहे हो, तुम उनको एक और चीज बोल रहे हो. तुम एआई को बोलो हमसे बात करने के लिए, वो एआई से बात करे पहले, फिर एआई तुमसे बात करे यहाँ पे कॉल करके.
1: बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगा.
5: हाँ,
1: हमें ही प्लान करना पड़ेगा. हम ही एक एआई को डाल देते हैं कि जो भी हम बोले कि कॉल करो 0800, तो एआई कॉल करे हमें, एक अलग अलग आवाज में बात करे हमेशा.
5: को बुलाना पड़ेगा उसके लिए.
1: कूल आइडिया एक्चुअली. ओके, एनीवे, आप कॉल नहीं करना चाह रहे, कोई नहीं, हम आपको गाना सुना देते हैं.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए हम गाने यहाँ पे लेकर आएंगे, लेकिन एक मैसेज आया है यहाँ पे, एंड आई थिंक दिस मैसेज वी नीड टू रीड आउट. आस्क फॉर फॉरगिवनेस. हमने बोला था ना कि किस चीज को आप यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. फॉर माई वर्ड्स एंड वेन एवर आई गॉट एंग्री वेन इट शुडंट बी द केस. बी नाइस टू पीपल अराउंड मी. ऑल्सो ऑन दैट नोट, आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर माई सेल्फ दैट आई शुडंट बी टू हार्ड ऑन माई सेल्फ एंड दैट लाइफ समटाइम्स गेट इन द वे. सो बी हैप्पी विथ वॉट यू गॉट. ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज लिखा है आपने.
2: सो कूल यार,
1: क्या बात है.
2: और ये मेरे को लगता है हर कोई करता है. कई बार हम किसी पे गुस्सा हो जाता है, बाद में हमें रियलाइज होता है कि यार कि कहीं का शायद कहीं पे निकल गया, एंड इतना भी वहाँ पे उस सिचुएशन में को बेटर हैंडल किया जा सकता था, इतना भी गुस्से होने की जरूरत नहीं थी. सो आई थिंक रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रियलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: एंड देन नॉट रिपीटिंग इट अगेन.
2: 100% इफ यू आर रिपीटिंग इट अगेन मींस कि आपकी रियलाइजेशन बेकार है.
1: हाँ, that is also that is
2: no
1: also
2: use
1: true.
2: Of it.
1: So yeah, realization definitely is the first step, but after that, then not repeating the same mistake again and again and again is, I think, vital.
2: Yeah, yeah, very vital.
1: Thank you.
2: So yeah, thank you so much. Itne beautiful message
1: ke liye. Sandy, what are you asking forgiveness for, yaar?
2: I ask forgiveness.
1: हाँ.
2: Every time I didn't made nice coffee.
1: नहीं, आपकी कॉफी तो बहुत बढ़िया है यार.
2: हाँ, वही ना.
1: So no, cancel. You have to, आज सैंडी से कोई forgiveness तो लेके रहेंगे यार.
2: कौन सी forgiveness यार?
1: कुछ तो किया रहेगा ना आपने.
2: ऐसा कुछ खराब किया ही नहीं कि forgiveness मांगो.
1: ये देखो, realization is the first thing, Sandy.
2: Yes, realization ही नहीं हो रही मुझे.
1: आपको क्या लगता है, what should Sandy ask forgiveness for?
2: या आप बताओ मुझे, मुझे किस चीज की forgiveness मांगनी चाहिए?
1: और मैंने भी क्या किस चीज की forgiveness मांगनी चाहिए?
2: तुम्हें तो पता है ना,
1: लेट आने की फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए, वो भी एक है. यस, सैंडी को किस चीज की फॉरगिवनेस
2: मुझे किस चीज की फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए 5599 पर या कॉल करके.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: Accurate traffic.
3: BYD South Auckland now open.
4: Cloudy overnight for Auckland, a low of 12 on the northern from town to Silverdale, taking 49 minutes to Constellation Drive, 32 on the northwestern to Massey, half an hour heavy from Waterview to Te Atatū. The southern to Manukau, just half an hour, and Drury, 50 minutes. It's heavy northbound Princes Street to Green Lane and heading south from Green Lane to Mount Wellington. Southwestern slow, heading north from Massey Road to Mangere Bridge.
3: Discover the full BYD electric and hybrid range at the new Manukau Supersite on Great South Road.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
8: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
9: No way.
10: We in trouble?
8: Nah, it's BP Plus.
10: What is that?
8: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
11: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
12: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewellery making charges. Saath hi, $2,000 ki har diamond aur precious gem jewellery purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
13: Coming soon, the Volkswagen 5-day sale is on from the 18th to 22nd August. Get exclusive offers across the range and go in the draw to win a Samsung TV worth 7699. See your local dealer for more info. T's and C's apply. Volkswagen.
14: Are you ready to go home?
15: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us, Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only 7.99. On sale now.
16: Power Drive at 5.
17: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
18: Power Drive at 5 जारी है आपके लिए और अभी टाइम आ गया है आप हम पे यहाँ पे कॉल करें फॉर रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन $250 जीतने का मौका आपको मिल रहा है अभी
19: अभी मतलब
18: पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है अभी आपको
19: सो 0800 00 हम यहाँ पे आप कॉल कीजिएगा एंड आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे $250 कैश प्राइज आप जीत सकते हैं अपने सिबलिंग के लिए सो आज आपको बताना है अपने सिबलिंग का परफॉर्मेंस
18: इंटरेस्टिंग स्टोरीज में नहीं हमें कल भी बढ़िया कॉल आए थे यहाँ पे और नाइस स्टोरीज बेसिकली परफॉर्मेंस रिव्यू करना है आपको तो हम आपको मतलब आप हमें बता सकते हो कोई भी ऐसा किस्सा जहाँ पे आपके आज फ्राइडे है ना
19: yeah.
18: आज हम आज जानना चाहते हैं कब आपके सिबलिंग ने आपका मतलब यू नो आपकी कोई चोरी अपने घर वालों से छुपाई दे कवर्ड योर बैक फॉर यू तो जहाँ पे मतलब आप फंसने वाले थे
19: लेकिन आपको कवर किया
18: आपने काफी कवर किया होगा आपके सिबलिंग
19: मैंने बहुत बार किया एक बार घर पे था लाइटर देखा था पापा ने
18: अच्छा
19: तो इस दिन की लाइटर क्या कर रहे मैंने कहा अगरबत्ती के लिए रखा है
18: सच्ची में
19: या
18: आपने कवर आपका नहीं था वो लाइटर
19: नहीं मेरे भाई का था वो
18: अच्छा
19: या
18: आपने
19: बोला
18: आपके भाई के ऊपर धकेल दिया ऐसा
19: धकेल दिया मैंने कवर किया उसको
18: अच्छा।
19: मैंने कहा ये अगरबत्ती के लिए रखा है लाइटर
18: ओके
19: बाद में जाके उसको पकड़ाया मैंने ये क्या था ये इधर क्यों है
18: फिर क्या हुआ
19: कुछ नहीं Like, okay, yeah, thank you. That's it.
18: Nice.
19: So, yeah. आपने कब ऐसा कुछ कवर किया किसी चीज को लेके आप भी बता सकते हैं यहाँ पे
18: yeah.
19: कॉल कीजिए 0800 00 हम पर एंड आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा
18: यार इट्स सो सैड आई डोंट हैव मेनी स्टोरीज टू शेयर यार इन दिस सेगमेंट हाय आपका स्वागत है
20: हेलो भाई ऋषि भाई कैसे
18: बहुत ही बढ़िया भाई आप कैसे हो
20: बस चल रहा है जान क्या कौन बात कर रहा है
18: अश्विन
19: कैसे आप
20: ठीक ठीक भाई मैं एक चीज कवर किया था
18: हाँ क्या किया
20: जब मैं जब पीजी में था ना तो मैं रोज आता जाता था मार्केट आता जाता था ना मेरा पास एक छोटा सा वैन था ना, मोटर था, तो जब मैं घर से क्रॉस करता था तो एक लड़की सबसे मुझे सलूट करती थी.
18: क्या करती थी?
20: बाय करती. हेलो.
18: हाँ, लड़की क्या करती थी आपको?
20: एक लड़की या औरत कोई भी था, वो मुझे सबसे बाय करते सलूट करके जाता ना.
18: हाँ हाँ,
19: सलूट करके. ओके.
18: अच्छा,
20: तो सलूट करके जाते या
18: फ्लाइंग किस देके जाती थी?
20: मैं उससे बात बट वो रोज देखती, मैं वो रास्ता आता जाता ना. मेरा बीबी मेरे साथ में बैठी है और मैं वो रास्ता जा रहा हूँ, वो वहाँ खड़ा कोई कर. तो मैंने बीबी से बोला, वो राइट, मेरा उधर से वो राइट पे था ना, लेफ्ट पे था वो लड़की, तो लेफ्ट पे था और मेरा बीबी भी लेफ्ट में मोटर में लेफ्ट में बैठी थी मेरे साइड, मैं ड्राइवर था. तो जैसे उस रास्ता आया, मैंने बीबी बोला राइट में ढेर से बैल बना हुआ था, बैल यानी कि कावरा ना, टीकरा कावरा, मतलब देखो ये नया बना है. बोले कौन वाला? वो जब इधर था का, तब तक मैं वहां पास कर दिया.
18: ओ, ऐसा कल्टी दे दिया. अच्छा, खुद का कवर कर लिया आपने. अभी आप ये ऑनर बोल रहे हो, आपको नहीं लगता आपकी वाइफ सुनेगी?
20: मैं फिर बाद में बहुत बाद में बताया.
18: बाद में बताया आपने?
20: बाद में बहुत बाद में बताया. तो बोले अरे तू बोल देता. मैं बोला उस वक्त आप कुछ बिगड़ पड़ते मेरे.
18: उस वक्त रिस्क नहीं ले पाया.
20: होता लोहा गर्म था ना.
18: नाइस.
20: थोड़ा मारोगे तो
18: लेकिन ये रक्षाबंधन में नहीं जाएगा, ये हम वैलेंटाइन डे में डालेंगे. थैंक यू यार, थैंक यू. तो आप यहाँ पे कॉल करें और शेयर कीजिए, आपके सिबलिंग ने कब आपको बचाया, कवर किया,
19: वो आज आपको शेयर करना है. बाय द वे, ये आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे $300 कैश आप जीत सकते हैं. समथिंग दैट कनेक्ट्स यू एंड योर सिबलिंग, कोई ऐसी याद, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है, उसकी फ़ोटो आपको पोस्ट करनी है, उसके साथ जो मेमोरी अटैच है वो आपको लिखना है. एंड दैट्स इट. आप अपने सिबलिंग को टैग कीजिए कमेंट सेक्शन में और आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा. $300 कैश आपके नाम हो सकते हैं.
18: काफी बार क्या होता है पता है, आप जब लॉन्ग डिस्टेंस में होते हो ना, सिबलिंग वाले रिश्ते में भी, तो काफी बार ऐसे हो जाता है कि अभी क्या बात करें ना, क्या टॉपिक पे बात करें, कैसे करें. तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू हैव अ चैट विथ योर सिबलिंग ऑल्सो. आप एक कोई ऐसी चीज की फोटो वहां पे डाल दो या फिर ऐसे कुछ कर लो एंड देन आप बस देखो क्या चमत्कार करता है. आप अपने सिबलिंग को भी टैग करो उसमें एंड देन यू विल बी अमेज्ड कि कैसे लंबी आपकी बातें शुरू हो जाएगी आपके सिबलिंग के साथ.
19: It can be anything that connected you both.
18: Yeah.
19: मतलब कोई भी एक मेमोरी हो सकती है ना आपकी.
18: Give it a shot. And yeah, feel free to give us a call as well.
19: It might be a picture as well. आप दोनों की किसी फोटो की मेमोरी भी हो सकती है.
18: Yeah, कोई भी मेमोरी हो सकती है. Anything. शेयर कीजिएगा जरूर. थोड़ी देर में आपके लिए हम लेकर आएंगे यहाँ पे आज जो हम खेलते हैं वो है ये. Connect the dots. Well, खेल पाएंगे हम अगर आप यहाँ पे कॉल करेंगे 0800-004866 but in some time.
0: Bollywood's most wanted.
9: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
10: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Let's go.
2: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
3: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 538 राइट नाउ एंड अभी हम आपके साथ यहां पे खेलने वाले हैं ये
2: कनेक्ट द डॉट्स.
3: इसको कहते हैं कि हम कभी हार नहीं मानते.
4: Yes.
3: हम अलग अलग गेम, आज फ्राइडे मूड है हमारा, हम आपके लिए अलग अलग गेम्स लेकर आएंगे.
4: फ्राइडे को यूजली बहुत सारी गेम्स आपके लिए हम लेके आते हैं और लेट्स सी इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है. आज कनेक्ट द डॉट्स में ना आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा ऑपोजिट वर्ड्स.
3: Right, yes.
4: लेकिन ऑपोजिट वर्ड्स की चेन बनानी है हमें.
3: ओके,
4: सो कनेक्ट द डॉट में हम एक

0: चेन बनाते हैं, ऑपोजिट वर्ड की चेन बनानी है. फॉर एग्जाम्पल, वी गिव यू वन एग्जाम्पल, देन सेकंड आपके साथ हम प्ले करेंगे. कॉल अस ऑन 0800 00. हाँ,
1: 0800 00.
0: बट साथ में कनेक्ट भी है, जैसे बैड के साथ राइट कनेक्ट है, राइट के साथ रॉन्ग. ओके, तुमने रॉन्ग बोला. अब रॉन्ग के साथ कनेक्टेड है ट्रू,
1: फॉल्स,
0: रियल,
1: फेक,
0: ऑनेस्ट,
1: डिसऑनेस्ट,
0: ट्रस्ट.
1: ओ वाओ, ट्रस्ट, ट्रस्ट का ऑपोजिट ना, ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, बट क्या होगा, नहीं, ट्रस्ट का ऑपोजिट क्या होगा,
0: सस्पिशन.
1: ओ हाँ, सस्पिशन.
0: सो इस वजह से गाइस आपको गेम खेलनी है. सो आपने नोटिस किया, डाउट भी हो सकता है, या दिल में डाउट मत रखना. सो इस वजह से आपको गेम खेलनी है, जहाँ पे हम चेन बना रहे हैं, लेकिन उस चेन में ऑपोजिट वर्ड भी पिछले वर्ड के साथ रिलेटेड है.
1: अच्छा, बाप रे,
0: समहाउ इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस वर्ड.
1: देखते हैं फ्राइडे को कौन दिमाग लगा रहा है. सैंडी तो लगा रही है.
0: सी, देखो ना, अभी कितना इजी हुआ था ये.
1: हाँ, क्योंकि आपके सामने था ना.
0: लेकिन नहीं, तुमने तो पकड़ा ना, तुम्हारे सामने नहीं है.
1: That's right.
0: So that's how it is easy.
1: That's right.
0: So call कीजिए. Yeah.
1: 0800 00 4866. सैंडी के साथ आप खेल सकते हैं ये.
0: नहीं, उसमें भी खेल सकते हैं ना, इसमें
1: लग रहा है.
0: चलो एक और खेलते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा डाउट हो रहा है मन में. सो happy,
1: sad,
0: smile,
1: smile, cry, eh? No, smile का opposite क्या होगा यार?
0: Smile किया तो नहीं.
1: Straight, ये. Frown.
0: हाँ.
1: अच्छा, frown होता है.
0: Smile, frown ना. Frown किया. Laugh.
1: Cry.
0: Yeah.
1: हाँ.
0: Cry. में ऑपोजिट रिलेटेबल थोड़ा, लव भी कर सकते हैं. लव,
1: आपने टीचिंग कंसीडर किया है क्या?
0: या
1: मेरे को लग रहा है बहुत बढ़िया टीचर बनोगे यार.
0: या मुझे पता है.
1: हाँ, तो
0: आई एम.
1: हाँ,
0: सो क्राई,
1: क्राई,
0: तुमने क्राई बोला ना, लव,
1: क्राई से लव, क्राई और लव क्या रिलेटेड, कनेक्ट कर रहे
0: हो? बहुत रिलेटेड है.
1: अच्छा, प्यार में तो रोती हो अक्सर. अच्छा, ठीक है.
0: तो यू हैव टू फाइंड अ रिलेटेबल वर्ड, बेसिकली जो लास्ट वर्ड है उसके साथ रिलेटेबल होना चाहिए, और नेक्स्ट वर्ड जो है उसके साथ देन ऑपोजिट होना चाहिए. That's how you play this game.
1: बहुत ही सिंपल है. इतने कॉल्स आ रहे हैं यहाँ पे, हमको समझ में नहीं आ रहा कौन सा फोन उठाओ, इसलिए एक भी नहीं उठा रहा हूँ मैं.
0: क्योंकि कोई कॉल नहीं कर रहा है यहाँ पे. Come on guys.
1: अच्छा.
0: इतनी इजी गेम है. अभी तुमने, हाँ, तुमने खेली ना अभी यहाँ पे.
1: नाइस. या हाय, आपका स्वागत है.
2: हेलो.
1: हाय
2: प्रीति, अगेन
1: खेलने वाले हो आप गेम?
2: हाँ, बट अगर थोड़ा बहुत नहीं आप लोगों के
1: साथ
2: मैच हो पाया तो आप थोड़ा
1: संभाल लेंगे.
0: हम संभाल लेंगे.
1: एक और कॉल आ रहा था, लेकिन वो चले गए आपका आवाज सुन के, डर गए वो आपसे. इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फील. क्या नाम है आपका?
2: ओके,
0: प्रीति. ओके, सो प्रीति, आई विल स्टार्ट. ओके,
1: मैं स्टार्ट तो मैं करूंगा प्रीति.
0: ओके,
1: कौन टच किया?
0: सो माय वर्ड इज हॉट.
1: कोल्ड बोला ना.
0: क्या
1: तो मेरे को
0: इंजन में आ जाता है ये.
1: कोल्ड के रिलेटेड देखो, मैं हक दिया ना कॉफी.
0: ओके, कॉफी का ऑपोजिट टी.
1: अच्छा, ठीक है,
2: टी.
1: हाँ, उन्होंने बोल दिया टी. अभी आपका टर्न है सैंडी.
0: अच्छा, आपने टी बोला. नहीं, रुजबे और आप खेल रहे हो. वेरी गुड.
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसा स्विच हो रहा है यार.
0: हाँ, ओके, टी बोला आपने. सो आई विल से टी का ऑपोजिट क्या होगा?
1: टी का ऑपोजिट नहीं बोलना आपको.
0: टी के साथ रिलेटेड
1: मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं टपरी.
2: टी के साथ रिलेटेड
1: टपरी.
0: टपरी
2: मसाला चाय.
1: नहीं, टपरी का ऑपोजिट.
0: टपरी का ऑपोजिट क्या हुआ?
2: टपरी. होटल. नो, रेस्टोरेंट.
1: हाँ, बहुत बढ़िया. होटल, होटल, फाइव स्टार होटल.
0: या वेरी नाइस.
1: हाँ, वेरी नाइस. उसका ऑपोजिट हो गया ना, फाइव स्टार होटल.
0: उसका ऑपोजिट हो गया. रिलेटेबल, रिलेटेबल उसके साथ करना है, रेस्टोरेंट.
1: अच्छा, रेस्टोरेंट का ऑपोजिट कहाँ से मैं ढूंढूं अभी यार. हो गया ना, ये रेस्टोरेंट नॉट अलाउड है.
0: अरे ठेला बोल दो यार.
1: हाँ ठीक है, ढाबा.
2: ढाबा
1: अभी आपको ढाबा से रिलेटेड कुछ बोलना है
2: फिर तो कैफे या फिर रेस्टोरेंट ना
1: अभी उधर ही घूमते रहेंगे फिर हम लोग
0: कैफे मतलब। बोला आपने
2: हाँ
0: वापिस कॉफी पे आ गई
1: आपके लिए एक और कॉम्पिटिशन लेकर आता हूँ यहाँ पे एक मिनट होल्ड करना बस आप यहाँ पे
0: रुको रुको प्रीति
1: हाय
3: हेलो
1: जी क्या नाम है आपका
3: मीनाक्षी
1: और प्रीति आप दोनों के बीच में अलोंग विद सैंडी ये कॉम्पिटिशन है
0: मैं वर्ड दूंगी देन आप दोनों उसमें खेलो ठीक है
1: हाँ आपको समझ गया ना मीनाक्षी गेम समझ गया
0: सो आई विल स्टार्ट मीनाक्षी उसके बाद आपकी टर्न देन प्रीति आपकी टर्न देन
1: पहले मीनाक्षी को पूछ तो लेते गेम समझा मीनाक्षी आपको हमको तो नहीं समझा है हमको समझा दो
0: लड़कियों को समझ में आ गया है
1: अच्छा ठीक है चलो ओके स्टार्ट
0: माय वर्ड इज गुड
2: Bad.
1: नहीं तो एक मिनट ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं ना पहले
0: नहीं नहीं तो इट इज बिटवीन मीनाक्षी एंड प्रीति ओली मैं सिर्फ एक वर्ड दे रही हूँ
1: आपने एक वर्ड दे दिया ठीक है तो अभी किसने बोला बैड पहले
3: मैंने बैड बोला
0: नहीं एक मिनट पहले मीनाक्षी
1: सैंडी यार
0: पहले मीनाक्षी बोलेगी फिर प्रीति ठीक है
1: ओके
0: अनदर वर्ड देती हूँ लेट्स स्टार्ट ओवर ओके माय वर्ड इज रिच
3: पुअर
1: प्रीति आपका टर्न
2: पुअर का तो ऑपोजिट रिच ही हो गया ना
0: हाँ उसने ऑपोजिट बोल दिया अब आपको रिलेटेबल बोलना है
1: बोल दिया है अभी आपको रिलेटेबल कोई दूसरा वर्ड बोलना है
0: फिर उसका ऑपोजिट मीनाक्षी को बोलना है
1: उसमें बोल सकते हो आप चाहिए तो
2: वेल्दी
0: नाइस
2: ओके आई सेड वेल्दी
0: या
1: अभी इसका ऑपोजिट मीनाक्षी
3: mention
0: wow
1: ma okay opposite to nahi hua sandy khud confused ho rahi hai abhi
3: it's related if somebody is wealthy haan. he might be living in a mansion
1: very nice theek hai
0: okay
1: mansion ka opposite
0: bolna hai abhi dusre person ko naam bol
2: hut
1: hut bol diya unhone
0: nice
1: sandy hey. aapko bol rahi hai hut
0: अब आपको रिलेटेबल
3: Whose turn is this?
1: मीनाक्षी
3: Oh, so only me and
0: Yeah, only you and Preeti are
1: only
0: playing.
1: Only you and Preeti are playing.
3: It was hut, right?
1: Yeah.
3: Sweet.
1: अच्छा.
2: Sweet or sweet?
1: Street बोला उन्होंने street.
3: Sweet.
1: स्वीट बोला है नहीं क्या बोला है
3: स्वीट झोपड़ियां गलियों में होती हैं
1: हाँ हाँ स्ट्रीट गली हाँ हाँ
2: ओके स्वीट देन
1: जल्दी बोलो कल सुबह पनवेल में निकलना
0: कोई तो ड्राइव करते समय अगर आप सोच रहे हो कि यार ये बोलो
2: अभी तो वो सुन के मुझे मुंबई वाला चौल याद आ गया
1: अरे स्ट्रीट बोल के आप हाईवे बोल सकते हो ना मोटरवे हाईवे अभी बहुत लोग अटके
2: हुए हैं सॉरी आया थैंक यू
0: लाइफलाइन बढ़ो ना
2: स्ट्रीट
1: हाईवे हां नेक्स्ट
2: हां हाईवे
3: मोटरवे
1: अच्छा ओके ठीक है यार मेरे को ऑनेस्टी में बोलो मीनाक्षी और प्रीति तुम दोनों बहुत बढ़िया कर रहे हो मेरे को लग रहा है
3: where we reaching to where we are going towards
1: वही अनक्लियर है
0: अनक्लियर है जहाँ पे खत्म हो गया
1: मुझे ऑनेस्टी लगता है कि तुम दोनों बहुत सही खेल रहे हो तुम सैंडी के लीड मत लो सैंडी की बात मत सुनो सैंडी कंफ्यूज कर रही है सबको
0: मेरी गेम थी कि ऑपोजिट वर्ड और जो सेकंड वर्ड है उसका रिलेटेबल का देन ऑपोजिट लाइक इट्स लाइक ऑपोजिट रिलेटेबल ये गेम थी
1: अच्छा समझ गए ना आप
2: मुझे लगा कि हमने कुछ ज्यादा समझ लिया और पता नहीं कहीं के कहीं पहुंच गए हम लोग
0: नहीं अच्छा खेले यार आप लोग बहुत अच्छा खेले
1: गलती आपकी नहीं है वो
0: बीच में हम ऐसा कंफ्यूज कर रहे हैं
3: मिलने वाला है
1: आपको मिलेगा ना बहुत
0: इसमें बताएगा
1: आपको मिलेगा हमारा प्यार हमारी इज्जत
3: भाई मुझे नाम भी नाम दे दो
1: चलो ठीक है क्या चाहिए आपको बताओ
3: कुछ भी है, मुझे क्या बताओ
1: देखो असिस्टेंट कंटेंट डायरेक्टर सुन रही है आपको अभी आप जो डिमांड करोगे वो नहीं पूरा करेगी
3: यार कुछ तो गेम्स में मजा जब आता है जब गेम्स में प्राइज हो
1: सही बोल रहे हो
2: ये बात तो सही है
1: ये बात सही है इसलिए कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना अभी हम समझ गए
3: गेम पे आप अभी थोड़ा प्राइज रखो इंटरेस्टिंग बनाने
0: ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने
3: स्मॉल एंड लार्ज देन यू मेक इट एज अ गेम गेम हैज अ बैरियर गेम हैज सम समथिंग टू विन
1: सही बोल रहे हो आप ये मीनाक्षी बोल रही है ना ये
2: और समथिंग टू विन
0: ये प्रीति
1: ये प्रीति बोल रही है प्रीति बोल रही
2: है हां बड़ी बड़ी ट्रीट नहीं वो गेम में कुछ भी विन करने के लायक जो कुछ भी एंड लाइक यू नो
1: रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट चलेगा
2: कंपैरेटिवली रिलेटेड टू
1: रिस्पेक्ट दे रहे हैं
2: मनी ऐसे कुछ नहीं
1: समथिंग
3: ना ना ना थिंग कैन बी क्वांटिफाइएबल
1: टेंजिबल चाहिए कुछ ठीक है ठीक है
3: समथिंग कैन बी क्वांटिफाइएबल
1: बुरा हक
0: आज रिज़वे का था मन था बहुत सारी गेम्स खेले सैंडी इसके बाद वो बोलेगा कोई गेम नहीं चलेगी रेडियो पे
1: okay guys thank you so much yeah for participating
0: but thank you for now
2: all right thank you have a good friday enjoy
0: you
2: your
0: too.
2: Evening
1: you too
2: thank you
1: thanks guys thank you so much
0: thank you so much bye

0: यार याद आ गई अपने दोस्तों की,
1: वो बचपन के दोस्त।
0: अजाने क्यों ये दूरियां बढ़ गईं।
1: कई बार आपको लगता है कि मेरी गलती थी ही नहीं, उसी की गलती थी।
2: सच बताऊं, सही लगता है उसी की ही तो गलती थी
0: काफी हद तक, लेकिन थोड़ी गलती तो आपकी भी थी।
1: तो इसीलिए फोन उठाओ
2: और अभी इसी वक्त उनसे बात करो,
0: वरना कहते रह जाओगे।

0: NZ. Offer ends August 31st.
1: Dinner is sorted with fresh deals at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And Pam's carrots or brown onions, select size, $3.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: Big Size sells New Zealand's best value beds. And today we're having a massive bed sale. Single beds from $5.99. Queen beds from $8.99. Cooling beds on sale. Electric adjustable beds with anti-snore and massage functions on sale. Single bunks from $3.99. Plus we have stock of all bed sizes. Save hundreds on New Zealand's best value beds today. Only at Big Save.
3: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
4: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. A post-mortem exam has been completed on the man who died after being shot by police at Sylvia Park Mall. He was 33-year-old Hapai Ōtene from Auckland. Multiple investigations are underway. Superintendent Sunny Patel says he's aware there is much discussion about the events that occurred, but it is important that due process is carried out. Labor says Nationals only got itself to blame for delays to the third tower at Christchurch Hospital. National is promising to complete the block if re-elected. Chris Hipkins says it was built by Labor and the project could have been done by now.
5: Suddenly, with an election rolling around, they've rediscovered the South Island and rediscovered the importance of investing in healthcare.
4: David Seymour believes other parties would support his bed tax alternative. ACT wants to award councils a dollar for every guest night in their area. Seymour doesn't think it would be too hard to get over the line if forming a government.
6: I don't think New Zealand First would object to something that supports regions and reduces bureaucracy. I don't think National are too far away from this either.
4: The number of New Zealand citizens being lost to other countries is easing. The June 2026 year saw a net migration loss of just under 38,000 Kiwi citizens compared to 41,000 in the previous year. To sport, week three of the NPC Rugby Weekend continues in an hour. Northland hosting Taranaki, both teams have a win and a loss so far. And in the last hour, the Black Ferns have completed a 62-19 thrashing of a Black Ferns 15 in a friendly match in Upper Hutt. And to Rugby League with Machinery House in a league of their own, the NRL this evening, the Sea Eagles hosting the Dolphins from 8 o'clock. If the Dolphins win, they join the Warriors on 34 points.
3: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
7: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
8: Suchit kiya jata hai. Anuradhika, David, Janet aur Joseph ki mataji, ज्वाला पल की पत्नी मैंगरी ऑकलैंड के तरुण देवी ज्वाला उर्फ राधा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार सोमवार को 11 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं डेविड को ऑन 0210-434-283। सूचित किया जाता है अनुराधिका, डेविड, जैनेट और जोसेफ की माताजी, ज्वाला पल की पत्नी मैंगरी ऑकलैंड के तरुण देवी ज्वाला उर्फ राधा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार सोमवार को 11 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं डेविड को ऑन 0210-434-283 पर। सूचित किया जाता है अलका, कल्पा, नीता, ममता, मुक्ता और डॉक्टर हर्षद पटेल की माताजी, भूतपूर्व सुवा और मैंगरी के गोपाल भाई पटेल की पत्नी ताराबेन पटेल की मृत्यु सूरत इंडिया में हो गई। प्रार्थना सभा शनिवार को 9 बजे एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में होगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार मैनकाओ मेमोरियल गार्डन्स में 11 बजे किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0272-810-968 पर। सूचित किया जाता है अलका, कल्पा, नीता, ममता, मुक्ता और डॉक्टर हर्षद पटेल की माताजी, भूतपूर्व सुवा और मैंगरी के गोपाल भाई पटेल की पत्नी ताराबेन पटेल की मृत्यु सूरत इंडिया में हो गई। प्रार्थना सभा शनिवार को 9 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में होगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार मैनकाउ मेमोरियल गार्डन्स में 11 बजे किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0272-810-968 पर।
7: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
3: 14th August है आज 6:05. You're listening to the Drive Show with Sandy and Rizvi and Trend Makers. Yeah. Hi Sandy.
4: Hi. Good evening Rizvi. Trend Makers में आज हम बात करने वाले हैं about 1947, about August. Yeah. 1947.
3: 14th and 15th August 1947. It's a very important day in history. और अभी इस शो को हमने partition special रखा है. And the stories that I'm reading now to do the show, मेको realize हो रहा है कि my God, there's so many things that we are unaware of.
4: Unaware of, मेको लगता है with time काफी लोगों को पता चल रहा है. एक टाइम तक मेरे को लगता है कि कुछ एरियाज़ को पता था ये स्टोरी, कुछ लोगों को पता था, अब वो ग्लोबली लोगों को पता है. एंड आई विल से कि इसका रीज़न मूवीज़ भी है.
3: Yeah.
4: जब मूवीज़ रिलीज़ होती है तो ग्लोबली जब पहुंचती है मूवीज़, एंड मूवी में अगर 100% चीज़ें नहीं होती है सही, लेकिन कुछ इसका हिस्सा होता है जिसके बारे में लोग फिर और भी सर्च करते हैं.
3: That's right. एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे पता चली, आपको पता है कि अगस्त 15th ही क्यों चुना गया for Independence Day?
4: क्यों?
3: It was actually an ego battle. Indians के लिए जो थे उनके लिए 15th was not an auspicious day. It was an inauspicious day. उन्होंने कहा था according to the stars. तो astrologers काफी panic हुए थे. लेकिन Lord Mountbatten ने 15 August purposely pick किया because it was the second anniversary of Japan's surrender in World War II.
4: Oh my God.
3: So, उनको इसलिए 15th August पे ही करना था. And hence, to bridge the gap, वो midnight वाला speech हुआ. पंडित जवाहरलाल नेहरू का. Because उन्होंने ये midway ढूंढा, because as per Hindu calendar, the day doesn't start until sunrise. So, that's why they did, के चलो 14th August को. Actually, मैं 14th August is
4: the date.
3: Is the date when the partition and all took place.
4: Yeah, because 14th August को पाकिस्तान form हुआ.
3: Yeah. So anyway, काफी crazy.
4: But actually में हुआ नहीं, पेपर में कह सकते हैं, but it took I think 16 or 17 August to announce everything.
3: क्योंकि वही one of the things that I read over here that 14-15 August को काफी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे पंजाब और बंगाल regions में, but उनको कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन से कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं. Because border ready नहीं हुई थी वो टाइम तक.
4: उस समय पर कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है. सो ये जो बॉर्डर है ये रेडी किया था
3: 17 अगस्त को हुआ था ये.
4: या रेड क्लिफ ने, सायरल रेड क्लिफ ने, एक ब्रिटिश बैरिस्टर थे जिन्होंने कभी इंडिया को विजिट नहीं किया था, जिनका बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिक्स को लेके, इंडियन पॉलिटिक्स को लेके या फिर ज्योग्राफी को लेके, एक्चुअली में इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जिन्होंने डिसाइड किया था कि लाइन कहाँ पर ड्रॉ होगी फॉर पंजाब एंड बंगाल. So logic was that his complete ignorance would make him impartial, basically. So he arrived in Delhi 8th July को आए और उनके पास 5 हफ्ते थे decide करने के लिए. 5 weeks में decide हुई ये line.
3: And वो भी उन्होंने इसलिए 2 दिन बाद decide की क्योंकि उनको कोई responsibility नहीं लेनी थी.
4: Yeah.
3: About any violence that takes place. मतलब they were expecting violence and all of those
4: things. And उसके
3: बाद
4: he left India and never came back to India.
3: I really don't understand why.
4: And destroyed the papers as well.
3: I really don't understand why England, Britishers, जो भी मतलब वो टाइम पे कोई उसके ऊपर कुछ केस नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं कि भाई who's taken the responsibility of all of this.
4: मतलब तुम उस responsibility की बात कर रहे हो रुज़बे, during the freedom fight movement जलियांवाला बाग का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उसका कभी माफी तक नहीं आई, उसकी कभी अपोलॉजी तक नहीं आई. जो इतना बड़ा वहाँ पे खुलेआम जो वहाँ पे इतने मर्डर हुए थे, वहाँ पे मैसेकर वहाँ पे जो हुआ था, उसकी कभी अपोलॉजी टिल डेट नहीं हुई है. सो लाइक और वो एक मोमेंट के टाइम पे हो रहा था, बिकॉज फ्रीडम फाइटिंग की जो मोमेंट थी ये सदियों से चल रही थी, बहुत समय से चल रही थी ये.
3: दैट्स राइट. एक्चुअली मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, सो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी वो कहाँ पे थे 14 अगस्त पे वो मिडनाइट के टाइम पे? He was not in Delhi. He was in Kolkata, जहाँ पे वो एक ऐसे घर में थे जहाँ पे जो नेबरहुड में राइट ऑलरेडी हो गए थे, बिकॉज बंगाल में भी पार्टीशन का चीज़ हो रहा था ना. तो ही वॉज देयर एंड उन्होंने 15 अगस्त ही स्पेंट फास्टिंग, प्रेइंग एंड स्पिनिंग यान completely broken hearted by partition. जब ही officials उनको पूछने गए कि क्या आप कोई मैसेज देना चाहोगे आज यू नो इंडिपेंडेंस के ऊपर, उनका रिप्लाई था आई हैव रन ड्राई. सो ही ऑल्सो अपेरेंटली वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द पार्टीशन.
4: इंडिपेंडेंस की बहुत बड़ी कॉस्ट एक्चुअल में भरनी पड़ी आई विल से, एंड बिकॉज पहले तो एक ही कंट्री थी, बाद में कंट्रीज डिवाइड हुई. सो बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, हमने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा. एंड खैर उसके बारे में आज हम और भी यहाँ पे बातें करने वाले हैं, बट स्टार्ट ऑफ विद द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जिसमें इसको बहुत ही आर्टिस्टिक वे से रिप्रेजेंट किया है इम्तियाज़ अली ने.

0: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: अरे राम माशाल्लाह इंशाल्लाह क्या बात है आप तशरीफ ले गए मुलाकात हो गई आपसे.
0: हम
2: We gotta go. Are you ready?
3: Come and take a trip with me.
4: Please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
5: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
6: Let's go.
5: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
7: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
8: क्यों, क्या हुआ?
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रिस्पांस. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424. चाहे आप स्लो रोस्ट कर रहे हो, बेकिंग कर रहे हो या फैमिली के लिए डिलीशियस पीस बना रहे हो, द डी एंटोनियो विंटर सेल हैज यू कवर्ड. शॉप कीजिए माइकटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन में और पाइए कुकवेयर और किचन एसेंशियल्स पर जबरदस्त डील्स. द डी एंटोनियो विंटर सेल ऑन नाउ, एंड्स अगस्त 16th.
9: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
10: Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
11: Showerdome.co.nz.
12: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
13: Indelible Homes, your building expert.
14: If you're at the fit-out stage of the build, Bunnings Trade is here to help. We've got what you need for your commercial and residential jobs with bathroom tapware, kitchens and appliances, and HVAC solutions. Call 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
15: Are you ready to go home?
5: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
16: You're listening to Hum, playing Bollywood's biggest hits. Trendmakers, ye show mein aaj partition special lekar aa rahe aapke liye. So, sare पार्टीशन और यू नो इंडिपेंडेंस या आजादी वाले गाने आपको सुनने मिलेंगे.
17: यस, इस आवर में स्पेसिफिकली आपके लिए, स्पेशली आपके लिए. वहीं पे हम बात करते हैं कुछ यंग फ्रीडम फाइटर्स की भी. बहुत ऐसे पावरफुल स्टोरीज है रुजबे, जैसे कि बाजी राउत. ही वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड, ही वाज फ्रॉम ओडिशा, ही वर्क्ड एज अ बोट बॉय. सो वहाँ पे एक प्रजा मंडल मूवमेंट हुई थी, तो ही वाज कीपिंग वॉच नियर द रिवर जहाँ पे ब्रिटिश पुलिस ने ऑर्डर him to ferry them across. उसने refuse कर दिया कि भाई तुम क्योंकि ब्रिटिश पुलिस हो, मैं तुम्हें. सो उड़ीसा से ये लड़का था, बोट बॉय था ये. अच्छा. बोट को जो नाव को जो लेके चलता है. तो वहाँ पे एक प्रजामंडल मूवमेंट हुई थी, तो ही वॉज कीपिंग अ वॉच ब्राह्मणी रिवर के पास. तो ब्रिटिश पुलिस आई, बोली कि हमें फेरी में उसे नाव में दूसरी ओर लेके चलो. मना कर दिया कि तुम ब्रिटिश पुलिस हो, नहीं लेके जाऊँगा तुम्हें मैं. ही वॉज शॉट एंड किल्ड.
16: ओह माय गॉड.
17: या So India's Ministry of Culture described him as a youngest Indian freedom fighter. And shaheed hue the jo 12 saal ki umr mein.
16: 12 saal ki umr mein.
17: 12 saal ki. He was Baji Raut. He was only 12 year old.
16: My God, man.
17: So there have been so many stories of young freedom fighters jo extraordinary kahaniya hai. There was another one, Kanaklata, agar main naam se ise bol rahi hun, Barua from Assam. Quit India movement thi jab shuru hui 1942 mein. She joined a group of young activists. Marching ki isne. She was just 16 and tricolor leke she was doing the marching. Police did the open fire and she was killed while carrying the national flag. Usne national flag ko niche nahi lagne diya tha, but apni jaan usne
16: wahan pe di. So many sacrifices, yaar. So many
17: sacrifices, so many patriotism, I will say, ki unke dil ke andar jo tha ki bhai hum is desh ko, is flag ko itna zyada pyar karte hain.
16: Well, we'll talk about more such freedom fighters, but abhi ke liye ek bahut hi pyara sa gana aapke liye.

0: ट्रेंड मेकर्स सुन रहे हैं आज आप 104.2 FM और रोवा ऐप के जरिए, जहाँ पे आपके लिए हम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। सैंडी, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करें ना, तो फीमेल जो विमेन लीडर्स ऑन द ग्राउंड, इनमें भी काफ़ी नाम है जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कभी बात नहीं हुई है। जैसे एक तो हमें पता है यहाँ पे सरोजनी नायडू, एक रिनाउंड पोएट और की पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वो रही थी, और शी वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल गवर्नर of UP shortly after independence.
1: Yeah.
0: इसके साथ साथ अरुणा असफ अली, इनको कहते हैं हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लेफ्टिस्ट लीडर थी थ्रू 1947। एंड देन देयर वाज सुचेता कृपलानी, जिन्होंने गाया था नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राइट बिफोर नेहरू स्पोक एट मिडनाइट ऑन 14th August।
1: वाओ। खुदीराम बोस जो है ये भी थे।
0: अच्छा।
1: खुदीराम बोस जो है he was just 18 when he was executed in 1908 में, मतलब पहले की जब फाइट शुरू कर दी थी ऑलरेडी। बहुत सारे नाम है यू नो जो कि लिस्ट में ज्यादा नहीं आए, जैसे तुमने बोला अरुणा असफ अली भी है एंड और भी बहुत सारे नाम है। एंड इवन शहीद भगत सिंह, इवन ही वॉज ओनली 12 ईयर ओल्ड जब वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, दैट मेड हिम कि भाई मुझे फ्रीडम फाइटर ही बनना है।
0: यू नो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे भी हिट हुई सैंडी, कल हमने एक पॉडकास्ट किया था पंजाब टू आउतेरोवा के टीम के साथ हरजोत एंड गगन, और वहाँ पे हरजोत ने एक चीज बोली थी कि यू नो इवेंट्स रिपीट एवरी 100 ईयर्स, हिस्ट्री रिपीट्स एवरी 100 ईयर्स। इफ यू गो टू सी दिस इज ऑलमोस्ट लाइक आपने जो कहा 1908 1912 19 100 ईयर्स बैक, अभी भी हम ऐसे देख रहे हैं कि क्रांति धीरे धीरे को थोड़ी बहुत
1: वही सब चीजें हो रही है,
0: नॉट जस्ट इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट ऑल इन ऑल हर जगह
1: पे हो रहा है वो,
0: कोई
1: सब
0: ना कोई ऐसे क्रांति हो रही है, लाइक यू नो दैट्स इट्स रिपीटिंग एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन बाय 2050
1: बट समथिंग
0: साउंड्स वेरी स्केरी ना,
1: इट डज। लेकिन उस समय पर ना देखा जाए तो इनका जो आइडिया होता था फॉर एग्जांपल कि सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब थ्रो करना, बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह, इन्होंने जब बॉम्ब थ्रो किया था, इट वॉज नॉट टू किल एनी वन, इट वॉज टू मेक अ नॉइस, इट वॉज टू मेक पीपल अवेयर अबाउट वॉट इज हैपनिंग। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, जो प्रिंटेड पोस्टर्स थे जो उनकी डिमांड है वो सबके सामने उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, लोगों ने पढ़ा तो रियलाइज किया। कई बार क्या होता है कि एक प्रोटेस्ट, एक नॉइस क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है, अवेयरनेस लेके आना, न्यूज में आना।
0: एंड द थिंग इज लाइक अभी इन हाइंडसाइट जब हम देखते तो हम बोलते हैं कि अरे यार ऐसे कैसे वो अकेले थे, किसी ने साथ ही नहीं दिया, बट ये तो अब हम देख रहे हैं ना।
1: या
0: लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी जब हमने ये यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, यहाँ पे नहीं बट इंडिया में काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया प्रोटेस्ट और ये सारी चीजें
1: अभी भी हो रहे हैं वहाँ पे,
0: अभी भी काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो उस टाइम पे हम लोग काफी लॉस्ट थे, हमको पता ही नहीं कि भाई कौन सही है कौन गलत है, क्या हो रहा है, जिसका जो एल्गोरिदम दिखा रहा है वो उसको वो बिलीव हो रहा है। बट देन नाउ मे बी 20 ईयर्स लेटर पीपल माइट बी लाइक अरे यू नो दिस वॉज वन साइड एंड दैट वॉज द
1: एक वन वॉज रियलाइजेशन बाद में होती है,
0: वन वॉज द हीरो साइड एंड वन वॉज द विलन साइड, वो आई थिंक बाद में जाके ही हमें पता चलता है।
1: सो यार ये फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे नाम है जो कभी यू नो डॉक्यूमेंट भी नहीं हो पाए, जिसमें बादल गुप्ता का नाम है, दिनेश गुप्ता का नाम है, करतार सिंह सराभा के ऊपर तो खैर मूवी भी है, हेमू कलानी का नाम भी उसमें आता है, सम ऑफ यंग फ्रीडम फाइटर्स।
0: राइट, और भी बातें करेंगे आपके साथ, लेकिन अभी के लिए सोनू निगम की आवाज़ में ये बहुत ही ब्यूटिफुल सॉन्ग।

0: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits, Trendmakers में आज सारे देश वाले गाने आपको सुनने मिलेंगे।
1: 14th and 15th अगस्त का खास हम लेके आए हैं और इसमें पार्टीशन के बारे में भी हमने बातें की। तुमने ये फोटोज बहुत बार देखी होगी ना, आई थिंक मूवीज में भी देखी है, ट्रेन टू पाकिस्तान।
0: Yeah.
1: ये कहानियां, ट्रेन बेसिकली इज वन ऑफ द सिंबल ऑफ पार्टीशन, बिकॉज ट्रेन के थ्रू देयर वर सम ट्रेन्स जो बोथ स्टेशंस में जा रही थी जिसमें बॉडीज थी, सिर्फ बॉडीज थी।
0: इट वाज सो सैड यार, मतलब वो जब देखते हैं, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई टुडे वी मेड अ कॉन्शियस चॉइस एंड वी डिडंट वांट टू ओनली सेलिब्रेट इंडियन इंडिपेंडेंस और आजाद
1: जश्न-ए आजादी।
0: आई थिंक इट इज अबाउट जस्ट रिमेंबरिंग that there was this partition that took place. And yes, we did get freedom, but at what cost? I think realizing that is very important.
1: हमने ये जो podcast किया ना अभी, वो ये podcast आपके लिए मैं release करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, जहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे बहुत पहले जो आए उनकी family जो उधर India में है, पंजाब में है, उनको याद भी नहीं उनके बारे में। उसका एक रीज़न ये भी है बिकॉज उसके बाद वहाँ के हालात भी बदल गए। वहाँ पे पार्टीशन में वो लोग तो वहाँ पे रह ही नहीं रहे हैं, उनको तो अपने ही बसने की हो गई कि हम किधर जाएं। सो वो फैमिलीज जहाँ पे रहती थी, जो यहाँ पे लाइक 1908 या 1914 उस समय के आए हुए हैं, बैक देन इतना कुछ हो गया, सो पार्टीशन के टाइम पे तो उनकी फैमिलीज ही वहाँ पे नहीं रही।
0: वो भी है, एंड इतना ज़्यादा उन्होंने दूसरी सारी चीज़ें देख ली कि जो जैसे हम पास डाउन करते हैं ना इन्फॉर्मेशन, आई थिंक इट नो लॉन्गर बिकेम अ रेलेवेंट थिंग टू पास डाउन, बिकॉज देयर सो मच अदर थिंग्स दैट वर
1: रिफाइन हो जाती है चीज़ें बहुत ज़्यादा,
0: काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। बट या ऑन दैट नोट, आई थिंक आई वुड लाइक टू से दैट इफ यू हैवंट वॉच्ड येट, यूट्यूब पे ये डॉक्यूमेंट्री आई है पंजाब टू आउतेरोवा, और ये हमारे यहाँ के लोगों ने ही बनाई है,
1: यहाँ की कहानी बनाई है।
0: एंड व्हेन वी आर स्पीकिंग टू देम यस्टरडे, कल हमें पता चला कि ये सिर्फ दो लोगों ने मिलके ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है।
1: वेल, इसके ऊपर गाइस हमने टीम भी है, लेकिन दो लोगों ने बनाई है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री। बट इसके ऊपर हम और भी बातें करेंगे जब हमारा पॉडकास्ट आएगा। एंड रिगार्डिंग पार्टीशन, यू नो, इफ समवन जिसको ज्यादा नहीं पता है पार्टीशन के बारे में, ये सब सिनेरियोस के बारे में, आई विल से गो एंड वॉच मैं वापस आऊंगा। ये मूवी को देखो, मतलब उसमें सब कुछ तो नहीं दिखाया
0: या
1: है,
0: फिर आप
1: लेकिन
0: वो
1: उसमें
0: भी देख सकते हो, गदर मूवी जो थी बहुत पहले
1: गदर,
0: वाली,
1: वाली मूवी भी
0: गदर वन,
1: इट वाज मोर ऑफ एक रोमांटिक एंगल के ऊपर भी वो बेस्ड थी, ये भी थी, लेकिन उसमें भी यस, उसमें भी काफी चीजें दिखाई थी
0: यार, वो गदर मूवी वाज,
1: उसमें भी काफी दिखाई थी,
0: वो मूवी का जो इंपैक्ट रहा था मेरे ऊपर।
1: देयर इज अनदर मूवी रुस्बे, इरफान खान की मूवी है, उसका नाम है किस्सा, QISSA किस्सा, इट्स अ इंडियन जर्मन मूवी।
0: ओके,
1: सो इरफान खान है उसमें, इट्स अबाउट हिज फैमिली को कैसे रिलोकेट करना पड़ता है। सो पार्टीशन की वो एक मूवी है, देयर इज अनदर मूवी उर्मिला की पिंजर
0: भी है,
1: या पिंजर मूवी है, उसमें आई थिंक मनोज बाजपेयी एंड उर्मिला, क्या ब्यूटीफुल मूवी है यार, मेरे को लगता है वो काफी नॉमिनेट भी हुई थी मूवी। सो बट या टफ टू वॉच काइंड ऑफ मूवीज है ये सारी की सारी।
0: या सो एनीवे, होप आपने ये शो एंजॉय किया, जितना एंजॉय तो क्या ही बोलूं, बट या होप ये शो आपको
1: पसंद आया,
0: ये शो ने आपको सोचने पे मजबूर किया कुछ चीजें। आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स वी थिंक वेरी डिवाइडेड, लाइक वी आर वेरी डिवाइडेड, बट आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट वी लाइक शेयर इन कॉमन विद, लाइक यू नो, पाकिस्तान एंड इंडिया शेयर इन कॉमन, विच इज द वुंड्स ऑफ पार्टीशन। इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन अफेक्टेड और वन कम्युनिटी अफेक्टेड इन इट, इट्स ऑल ऑफ अस टुगेदर, और वो रियलाइज करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आज के टाइम के लिए।
1: 100%। सो इसी नोट पे आपको यहाँ पे टाटा बाय बाय कहते हैं गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आपसे अभी मुलाकात हमारी होगी मंडे को।
0: जी मंडे को मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कल जो भी पारसीज हैप्पी न्यू ईयर, मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर टू यू,
1: हैप्पी न्यू ईयर
0: एंड एंजॉय, हैव फन, अगर कुछ और भी अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो,
1: एंड अवारापन 2 का रिव्यू मे बी अनफिल्टर्ड पीडी इस में हम जाके पोस्ट करेंगे,
0: हमारे इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हो।
1: अपना इंस्टा हैंडल
0: मेरा है ruzbe_thebawa,
1: सो वहीं पे ज्यादा स्टोरीज आपको मिलने वाली है।
0: सैंडी पे भी मिलेगी यार, सैंडी से
1: मैं शेयर करूंगी, बट रुज़बे ज्यादा पोस्ट करने वाला है।
0: ये क्यों मेरे ऊपर क्यों आ गया?
1: तुम बहुत अच्छा पोस्ट करते हो रुज़बे।
0: अच्छा करता हूं, ठीक है, मेरे को भी लगता है।
1: ruzbe_thebawa बहुत अच्छी स्टोरीज पोस्ट करता है, तो आज अवारापन 2 का रिव्यू थोड़ा वहां पे देखने ही वाले हो।
0: जी follow our vlog today.
1: Yeah. Bye.
0: Bye-bye.

0: Petzoros Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m. Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
2: It's Woolworths Multi-Buy Week. Get more for less, like white button or Swiss brown mushrooms 200 gram, any two for $5. And our fresh beef mince 500 gram, two for just $18. T's and C's apply.
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
3: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI.

0: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilyservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
1: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
2: Yes, but I want to subdivide too.
1: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes packed with premium inclusions with full subdivision support if you need.
2: Really?
1: Yep. From planning and consents through to construction, the team can help manage the entire process.
2: Zelo. I like the sound of that.
1: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
4: वेलकम टू कबाब्स किचन. आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा.
5: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
4: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
5: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी.
4: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
6: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
7: Rebel's 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids' clothing, hydro flasks and Nike equipment for only $30. Plus save $30 off selected casual running and kids' shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
8: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे. तमाकी तुरुकी, All Together Auckland.
9: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Single light switch, just $3. Clear silicone sealant, just $4. Painter's masking tape, just $2. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी

0: सिबलिंग को ले आइए हम बूट रूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजंस। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love, and Malabar Golden Diamonds, Botany Town Centre.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

कबड्डी कबड्डी कबड्डी किसकी मोड़ू करता किसकी तोड़ू हड्डी।

0: सेल पिंटू।
1: रैम्बो का नाम सुना? टर्मिनेटर का और सलमान भाई, इन तीनों को ना एक मिक्सी में डाल, तीन चार बार घुमा, घूम घूम घूम, जो ग्लास भर के मिल्कशेक निकलता है ना,

0: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
1: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
0: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
1: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
0: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
2: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 इयर्स।
3: Winger Motors are your home of Cherry, जहां नई एस

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: चलना चुट दिल्ली ले है लंदन मटक मटक जजर

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
2: चाहे आप स्लो रोस्ट कर रहे हो, बेकिंग कर रहे हो, या फैमिली के लिए डिलिशियस पीस बना रहे हो, the D'Antonio Winter Sale.

0: Radio. Streaming on Rover. Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: Night flight on Hum.
3: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है.

0: Flight on Hum.
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: Flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
5: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.

0: जोगी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: Mixing in the house.

के अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

Jay.

0: करेंगे सबका स्वागत।
1: नाइट फ्लाइट ऑन हम
2: ड्राइविंग यू होम Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
4: ये गलत बोल दिया यार।
3: और पहनता भी नहीं है उसको।
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया आप
4: लोग। अभी ब्रांड हो गया ना।
3: रुस्बे के बाल लगे उस।
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
6: 19 साल बाद शिवम इज बैक, अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ। आवारापन 2 स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी।
7: मौत, मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है।
6: आवारापन 2 नाउ शोइंग इन सिनेमास, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अ फिल्म।
8: आवारापन
6: रेटिंग TBC।

लड़की कितनी क्यूट है, तेरा फेस भी कितना स्वीट है, तू ब्यूटी, तू चाइनिंग, तू टनाटन, मैं धनाधन, मैं दिल में तुझे बसाऊंगा और अपना तुझे बनाऊंगा, लंदन तुझे घुमाऊंगा, वहां पानी पूरी खिलाऊंगा, हनीमून करके आऊंगा, फिर शादी यहाँ बनाऊंगा, मैं रोमियो तू जूलियट, ना समझ तू मुझको इडियट, अरे हाथ छुड़ा कर चली किधर, वो यार मेरे

0: चिल्ली,
1: चुप हो जा भूरी बिल्ली।
0: मैं आफत की पुड़िया,
1: तू भोली भाली गुड़िया।
0: मवाली,
1: मैं हीरो,
0: तू पागल,
1: तू जीरो,
0: आवारा,
1: तुम्हारा, समझ गए इशारा।

0: sexy.
1: Night Flight on Hum.
2: Toota toota eh.

0: Flight on Hum.
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
3: क्या? कौन है?
4: Hunua और Waitakere।
3: अच्छा Hunua west में?
4: किधर है Hunua?
1: The breakfast show with VJ and Pooja.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
4: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
8: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
9: Winger Motors are your home of Chery, जहां नई SUV लेना is easier than you think.

0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम हाँ।

हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
0: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Phukeque, where dreams begin. Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
1: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
0: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
1: Available at selected branches. T's and C's apply. चाहे आप स्लो रोस्ट कर रहे हो, बेकिंग कर रहे हो या फैमिली के लिए डिलीशियस पीस बना रहे हो, द डी एंटोनियो विंटर सेल हैज यू कवर्ड. शॉप कीजिए माइटर 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन में और पाइए कुकवेयर और किचन एसेंशियल्स पर जबरदस्त डील्स. द डी एंटोनियो विंटर सेल ऑन नाउ, एंड्स अगस्त 16th.
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
4: हाँ, अच्छा
3: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
4: मिसेस सिंह,
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
1: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन्स डॉट को डॉट एनजेड.
6: Night Fly.

0: यार याद आ गई अपने दोस्तों की,
1: वो बचपन के दोस्त।
2: अजाने क्यों ये दूरियां बढ़ गई।
1: कई बार आपको लगता है कि मेरी गलती थी ही नहीं, उसी की गलती थी।
3: सच बताऊं, सही लगता है
4: उसी की ही तो गलती थी
2: काफी हद तक, लेकिन थोड़ी गलती तो आपकी भी थी।
1: तो इसीलिए फोन उठाओ
3: और अभी इसी वक्त उनसे बात करो,
2: वरना कहते रह जाओगे।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: 19 साल बाद शिवम इज बैक, अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर पर्पस इन लाइफ। आवारापन 2, स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी।
7: मौत, मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है।
6: आवारापन 2, नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर फिल्म्स।
8: आवारापन।
6: रेटिंग TBC।
0: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Budget hit the gun day.

दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई ले

0: address be on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
2: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनाना स्टाइल के, जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे। विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो, हम हमेशा आपके पास हैं।
3: गो बनाना स्टाइल केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस।
2: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनाना स्टाइल केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800 46 26 26 टुडे।
3: अवेलेबल एट सेलेक्टेड ब्रांचेस। T's and C's apply.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Ma,
0: it's
5: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
4: मुझे भी
5: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
6: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
7: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
8: Yes, but I want to subdivide too.
7: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes packed with premium inclusions with full subdivision support if you need.
8: Really?
7: Yep. From planning and consents through to construction, the team can help manage the entire process.
8: Zelo. I like the sound of that.
7: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
0: सबसे बड़े हिट गाने
9: कभी भी कहीं भी. Saturday breakfast on Hum.
10: आ गया.
9: You're listening to Avineet.
2: क्या ओरा बुला सलाम नमस्ते सत श्री अकाल. मैं हूं अवि, आपके साथ में जुड़ गया हूं ऑन अ वेरी ब्राइट सैटरडे मॉर्निंग. लेकर आया हूं अपना देसी स्वेग आपके साथ में. जबकि आज है 15th of August, ऐसे में आपको अ वेरी गुड मॉर्निंग विश करना चाहते हैं 104.2 FM के तले और यहां पर हम पर. मैं हूं आपका साथी. इसके साथ में आप हमें रोवा पर सुन रहे हैं, आप देश में हैं, विदेश से हमें सुन रहे हैं, आपका खास स्वागत करते हैं. आज का दिन आपके लिए बिल्कुल बढ़िया रहे. Have a wonderful morning. आप भी निकल पड़े हैं घर से हमारी तरह, रास्ते में हैं, सफ़र कर रहे हैं और नौकरी पर जा रहे हैं, तो आपको कहना चाहेंगे जो आपका दिन है आज बिल्कुल बेहतर रहे आपके लिए. एंड मे यू अचीव ऑल दैट यू हैव सेट आउट टू कोनका, यानी कि जितना भी कुछ आपने आज प्लान किया है आपके लिए सभी कुछ शुभ रहे और आप उसे कंप्लीट कर सके अपने टास्क को, यही हम चाहेंगे. और आज जबकि है 15 तारीख अगस्त, तो कैसे भूल सकते हैं आपको हैप्पी इंडिया इंडिपेंडेंस डे. जी हाँ, जबकि आज 15 अगस्त है तो आपको हमारी ओर से हैप्पी इंडिया इंडिपेंडेंस डे. अगर जो कोई ऐसी भावना है जो आपको तिरंगे के साथ में जोड़ती है, भारत के साथ में जोड़ती है, तो आपको भी खास अ वेरी गुड मॉर्निंग हमारी ओर से. और इस सुबह सुबह आपके लिए एक ऐसी सोच लेकर आए हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा. अगर जो आप भी थोड़ा हताश है, निराश है, तो जब हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है, हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है, तो सोचो दुआओं से आने वाली मुसीबत क्यों नहीं टल सकती है. इसी थॉट के साथ में 5599 इज योर मैजिक नंबर. इसके साथ में 0800004866, इसके इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. इसी तरह से आपके साथ में बातें होती रहेंगी इधर उधर की, और इसके अलावा आप तक पहुंचाते रहेंगे कि क्या कुछ हमारे आसपास हो रहा है. ये सभी कुछ ऑन सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो. मैं हूं अवि, लेकर आया हूं अपने साथ ढेरों सारा प्यार, आपका खास स्वागत करते हैं. और आज की इस प्रोग्राम की आगाज़ करते हैं के साथ में, क्योंकि कुछ हो ना हो आशाएं तो हमेशा होनी चाहिए.

हाँ, हम पर आप और मैं रूबरू बिल्कुल हैं और 104.2 FM साथ में रोवा पर आपका खास स्वागत करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग, और आपको विश करते हैं हैप्पी इंडिया इंडिपेंडेंस डे। और गुड मॉर्निंग हो चुकी है इधर फ्लैट बुश में, क्वीन हमारा प्रोग्राम सुन रही है, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहिएगा, आप भी हमें सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। हेलो 5599 पर आप अपना प्यारा सा गुड मॉर्निंग का मैसेज हमारे पास में भेजें, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी तरह जागे हुए हो और सैटरडे मॉर्निंग में बिजी हो, या फिर काम पे जा रहे हो, या फिर घर बैठे प्रोग्राम को सुन रहे हो। जो भी हो, आप हमारे साथ में इस सफ़र में बिल्कुल एक हम सफ़र बनकर चल सकते हैं। और कैसे हमें पता चलता है? एक ही एवेन्यू है भाई, 5599 पर आपका जब मैसेज आता है तो हमें पता लग जाता है कि आपकी भी सुबह हो गई है। चलो एक झलक नज़र डाल लेते हैं वेदर पर भी, जबकि आज के लिए जो फोकास्ट किया गया है, जो सनराइज रहेगा 7:04 AM पर रहेगा, इसके साथ में दिन का जो टेम्परेचर रहेगा कुछ करीब करीब 17 डिग्रीज तक रहेगा। मिनिमम ओवरनाइट डबल डिजिट्स रहेंगे, 12 डिग्रीज तक रहेगा। इसके साथ में इली रेन हो सकता है आपके इलाके में, इसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहे। इसके अलावा अगर जो नेशनली देखें और टाउन्स और सिटीज़ में, काफ़ी जगह पर बताया गया है कि धूप और बारिश आज साथ साथ एक ही दिन में आपको दिखाई देंगी। साथ में रोतरुआ में 9 डिग्रीज तक मिनिमम टेम्परेचर रहेगी, इसके अलावा हैमिल्टन में 11 तक रहेगी, एंड क्लाउडी एंड सनशाइन दोनों आप देख सकेंगे। इसके साथ में वेलिंगटन में ओवरकास्ट कंडीशंस बताए जा रहे हैं, और आज आपका दिन बिल्कुल ग्लूमी ग्लूमी रहेगा, बारिश हो सकती है। और इसके साथ में वेलिंगटन में मिनिमम टेम्परेचर कुछ 10 डिग्रीज तक रहेंगे। साउथ आइलैंड की ओर देखते हैं एक नज़र, तो ऐसा ही वेदर जैसा नॉर्थ आइलैंड में हम एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसा ही वेदर साउथ आइलैंड में भी रहेगा, जबकि बारिश भी आपको मिलेगी, साथ में इन बिटवीन सनशाइन भी आप देख सकेंगे। तो ये सभी कुछ है और आपके साथ में शेयर करने को, जो क्वींसटाउन में आज टेम्परेचर है 3 डिग्रीज तक है, और नेशनली सबसे कम टेम्परेचर आज क्वींसटाउन में है, जबकि 3 डिग्रीज तक ये रहेंगी। ये सभी कुछ आपके साथ में बातें होती रहती हैं, और मैं हूँ आपका साथी अवि। और जी हाँ, आपको आज दिन भर में एक एक आवर पर कोशिश करेंगे कि कुछ पेट्रियोटिक गाने भी हम आपको सुनाएं, ताकि जो फील है ना, जो वाइब है इंडिया इंडिपेंडेंस डे का, अगर जो कोई भावनाएं हैं जैसा कि हमने कहा है आपको तिरंगे के साथ में जोड़ती है, तो क्यों नहीं भाई, आपके साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया है प्रमा महाराज जी, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। आपको भी आज की जो प्रभात है, सुप्रभात रहे आपके लिए। हाँ, मौसम थोड़ा सा यूँ कहें कि हमारा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जो भी हो, हम पर मैं हूँ आपके साथ में, एंड टुगेदर आज हम मिलकर इस दिन को बिल्कुल ब्राइट बनाएंगे। इसके साथ में 23404, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। गुड मॉर्निंग ब्रो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आपको भी विश करेंगे, और इसी तरह से दिन भर आपके साथ में रहेंगे। अब की बार शामिल करते हैं कुमार शानू को, और आप भी अगर जो अभी तक आपने अपने मैसेजेस नहीं भेजे हैं हमारे पास में, शायद आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, जबकि 15 अगस्त है, तो इंडिया इंडिपेंडेंस डे के साथ में आपकी बर्थडे, आपकी जन्मदिन भी कोइंसाइड हो रही है, या फिर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो इसका भी जो प्यारा सा मैसेज है आप हमारे पास में भेज सकते हैं।

0: सुबह सुबह आप अरमान मलिक को सुन रहे थे इन हिज ब्यूटीफुल रेंडिशन सब तेरा. और जबकि आज है 15 तारीख अगस्त, तो थोड़ी देर में आपके लिए एक पेट्रियोटिक गाना भी लेकर आएंगे. लेकिन अभी के लिए मैं न्यूज़ में देख रहा था कि ओवरनाइट यहाँ न्यूजीलैंड में कुछ ऐसी खबर नहीं आई है सामने जो आपके साथ में मैं अभी शेयर करूँ. जबकि न्यूज़ डिविजन से भी हमारी सुबह सुबह बात हुई है ओवर अ कप ऑफ टी, और मैंने उनसे भी पूछा क्या कोई ऐसा समाचार है जो हमारे लिसनर्स को जानना चाहिए, तो कहा कि नहीं, समटाइम्स नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़ एज वेल. जी हाँ, जब कोई खबर ना हो तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात ही होती है. लेकिन ग्लोबली भी मैं ब्राउज कर रहा था तो इट हैज़ रिमेन्ड ऐसी कुछ सनसनीदार खबर नहीं है जो आपके साथ में मैं शेयर कर सकूं. लेकिन जो सुबह की पहली समाचार न्यूज़ रहेगी आपके साथ में, ये सुबह 8 पर रहेगी. तो ये सभी कुछ आपके साथ में है और इसी तरह से आप भी हमारा साथ देते रहिए. इट्स अ वेरी गुड एंड अ ब्राइट सैटरडे मॉर्निंग. एक नई सुबह एक नई शुरुआत की प्रोमिस लेकर आता है.
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
3: We gotta go. Are you ready?
4: Come and take a trip with me.
5: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
6: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
7: Let's go.
6: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
8: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods multigrain dosa batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
9: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods multi-grain dosa batter banaye. Har meal healthy aur delicious, high protein, rich in fiber aur swad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods multi-grain dosa batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swad bhi, sehat bhi.
10: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev. Devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 p.m. Vedic Center Papatoi. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds Gift of Life Fiji ko donate honge. Providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh Papatoi or Shiv Prasad, Kelston.
11: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800 233 111.
12: Indelible Homes, your building expert.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
2: That's right, यह है Saturday Morning Breakfast Show on हम. मैं हूँ आपका साथी अभी. It's 6:26 AM. ऐसे में आपकी सुबह अभी अभी हुई है या अभी ही आप हमारे साथ में जुड़े हैं. वेलकम टू द शो एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. और इसके साथ साथ अ वेरी हैप्पी इंडिया इंडिपेंडेंस डे. और ऐसे में आपके लिए जो अगला गीत है ये कहीं ना कहीं एक पेट्रियोटिक गाना भी है और इट गिव्स यू द गूज बम्प्स. जी हाँ. और अगर जो कहीं पर सेलिब्रेशंस हो रही हैं, अभी तक तो मुझे पता नहीं लगा, अगर जो कहीं पर इंडिया इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस चल रही है तो 5599 पर आप इसका जो इन्फॉर्मेशन है भेज सकते हैं हमारे पास में, ताकि और लोगों को भी पता चले कि कहाँ पर क्या कुछ फंक्शन हो रही है. इसके अलावा लेकिन थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे कि और कुछ क्या कुछ इवेंट्स है जो आपके आसपास हो रहा है. और इन द मीन टाइम इसे ज़रूर इन्जॉय कीजिए.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: हम पर मैं हूँ अभी कीपिंग यू कंपनी और अभी हाल ही में यानी कि जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स अगो मैंने फेसबुक पर अपने हम के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट अपलोड किया है जहां पर मौसम और दुआओं को लेकर कुछ बातें की हैं. इसे जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. और जब मौसम की बात करते हैं तो सीबीडी में बिल्कुल थोड़ा भीगा भीगा सा मौसम है और जो अपडेट्स लेटेस्ट रहेंगी आपके साथ में बांटते रहेंगे. लेकिन अभी के लिए सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो का ये कारवा है, आपको भी कुछ सुनना है. 5599 आपका प्रीफर्ड नंबर है टेक्स्ट करने के लिए. यहां पर आप अपने रिक्वेस्ट हमारे पास भेज सकते हैं. इसके अलावा कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप इंडिया इंडिपेंडेंस डे के अलावा, तो आप अपने जो मैसेजेस है 5599 पर ड्रॉप करिए और यहां से आपकी जो खुशियां हैं औरों के साथ में बांटते चलेंगे.

जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में

0: breakfast show with VJ and Pooja.
1: बुरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m. 19 साल बाद शिवम इज बैक. अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ. आवारापन 2 स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी.
5: मौत मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है.
0: आवारापन 2 नाउ शोइंग इन सिनेमास. डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अ फिल्म.
6: आवारापन
0: रेटिंग टीबीसी.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
8: हाँ, अच्छा
7: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
8: मिसेस सिंह.
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
10: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहोहो. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: जी हाँ, ये है सरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम अभी के साथ में और सुबह की पहली रिक्वेस्ट विद अ प्यारा सा गुड मॉर्निंग एन अकिया और संजू, थैंक यू सो मच, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं और आपने जिस गाने की फरमाइश की है ये बिल्कुल आपके लिए एकदम से तैयार है।

हम पर मैं हूँ आपका साथी, अभी कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ, जबकि 7 मिनट बाकी है 7 बजने में। तो अब की बार इस हवा पर जो आखिरी गाना है आपके लिए लेकर आए हैं अल्ताफ राजा की आवाज़ में।

0: Saturday breakfast on Hum.
1: Attention everyone. हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में। उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
3: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
4: Briscoe's is taking savings to the extreme with at least 40% off store-wide and incredible 60% off thrill-seeking savings. Don't miss at least 40% off store-wide. End Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: Dinner is sorted with fresh deals at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And Pam's carrots or brown onions, select size, $3.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
6: New Zealand, a large Australian retailer, cancelled their sofa order and Big Save got it. So today, you get half-price sofas. Get 50% off selected sofas. Yes, 50% off. We've got a four-seater chase sofa, only $19.99. Save a massive $2,000. Plus, get a three-piece recliner suite, now only $17.99. Get 50% off selected sofas today. Stock is very limited, only at Big Save.
7: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
8: Yeah, but nothing quite reaches my standard.
7: Well,
8: within my budget?
7: Zelo.
8: Zelo?
7: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes from 1 to 4 bedrooms with 1 or 2 bathrooms, all packed with premium inclusions.
8: Price?
7: $139K for a fully complete 1-bedroom home and $215K for a 3-bedroom home.
8: Zelo. I like the sound of that.
7: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
9: Playing Bollywood's biggest hits.
0: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
9: Saturday breakfast on Hum.
10: Yo.
0: You're listening to Avineet.
11: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में सुबह के 7 बज रहे हैं और ऐसे में परफेक्ट मिक्स जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं ये हमारे गपशप की और साथ में आपकी मैसेजेस की और साथ में म्यूजिक को लेकर आपके साथ में लेकर आते रहे हैं। जबकि 8 पर आपके लिए आज का पहला समाचार रहेगा तो ऐसे में मैं पढ़ रहा था, स्टफ ने रिपोर्ट किया है कि कल शाम अरनुई एक सबब है क्राइस्टचर्च में, यहाँ पर कुछ 4:30 के करीब एक छोटे से बच्चे ने डॉग अटैक से अपनी ज़िंदगी खो दी, जहां पर इमरजेंसी सर्विसेज ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने अटेंड किया एक एड्रेस पर जहां पर एक छोटे से बच्चे को क्रिटिकल कंडीशन में पाया गया जबकि उन पर एक डॉग अटैक हुआ है और काफ़ी इंजरीज इनको पहुंची थी और उन अटेंडेंस यहां पर इमरजेंसी सर्विसेज ने पाया कि जो बच्चा था काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था और वहीं पर डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स सेडली इनकी जान चली गई। तो यहाँ पर जो और भी समाचार रहेंगे 8 पर आपके लिए रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आज है इंडिया इंडिपेंडेंस डे, ऐसे में 15 तारीख अगस्त है और इस आवर पर भी आपके लिए कोई एक गाना लेकर आएंगे जो कहीं ना कहीं आपको याद दिला देगी भारत की और साथ में तिरंगे की। और ऐसे में अगर जो कहीं पर सेलिब्रेशंस भी है जहां पर आप आज इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं तो इसके बारे में 5599 पर हमारे साथ में ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा। और अभी के लिए चलिए इस गीत के साथ में इस आवा की शुरुआत करते हैं।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में अक्सर आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी होती रहती हैं और आज के लिए जबकि मैं फाइंड आउट कर रहा था कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जहां पर आप जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग के बारे में मैंने थोड़ा ढूंढा थोड़ा रिसर्च किया। हम में से काफ़ी एविड रीडर्स होते हैं जो हर रात को कुछ ना कुछ पढ़कर ही सोते हैं, लेकिन इनमें से कई मेरी तरह होते हैं जो बिल्कुल पढ़ना यानी कि रीड करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसके रीडिंग के कुछ अलग बेनिफिट्स बताए गए हैं रिसर्चर्स द्वारा, जबकि ब्रेन वेव एक ऑर्गेनाइजेशन है न्यूजीलैंड में, इन्होंने कहा है कि पढ़ने से आपकी लैंग्वेज और लिटरेसी काफ़ी इम्प्रूव और रिच होती है, खासकर बच्चों के लिए। तो अगर जो बच्चे को आप एली एज से इंट्रोड्यूस करते हैं टू रीड, तो इनकी जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं ये बिल्ड होती है और इसके साथ में ये लिटरेसी स्किल्स को भी सपोर्ट करते हैं। उसके साथ में ये भी बताया गया है जो मज़े की बात है कि सोशल इमोशनल बेनिफिट्स भी काफ़ी होते हैं, जबकि ये वर्ड्स को यूज़ करके और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ में कॉग्निटिव और लैंग्वेज डेवलपमेंट तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं औरों के साथ में ये सोशली इंटरेक्ट करने में काफ़ी इनको बेनिफिट होती है। तो ये सभी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हेलन्सविल लाइब्रेरी में आज शाम 1 से लेकर 3 बजे तक यहाँ पर आपके लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है एवरी बनी रीड्स, यानी कि अगर जो आपके पास में बच्चे हैं जो 6 से लेकर 12 साल के एज तक है, तो इनके लिए खास एक ऐसा एक्सरसाइज यहाँ पर रहेगा ताकि इनको एनकरेज किया जाए पढ़ने के लिए। और ये कैसे करेंगे कि जब आप यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर इनका मैसेज ये है, कम अलोंग एंड अडॉप्ट ए सॉफ्ट टॉय बनी, यानी कि बच्चों को एक सॉफ्ट टॉय बनी दिया जाएगा, साथ ही साथ में एक प्री अडॉप्शन चेक भी दिया जाएगा वेट्स के द्वारा, और इसके साथ में कुछ गिफ्ट बैग्स भी अवेलेबल है जो बच्चों को दिया जाएगा, ताकि इनको ये प्रॉमिस किया जाए कि ये अपने सॉफ्ट टॉय बनी को हर रात कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, यानी कि दे विल रीड आउट समथिंग टू दे बनी सॉफ्टवेयर बनी हर रात को। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक एनकरेजमेंट मिलती है कि ये कुछ ना कुछ पढ़े हर रात को, और लिटरेसी और जैसे कि हमने आपको फ़ायदे बताए हैं तो ये सभी कुछ बेनिफिट्स यंग बच्चों को छोटे बच्चों को मिल सकती है। तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट है, आपको सिर्फ जाना होगा हेलन्सविल लाइब्रेरी 49 कमर्शियल रोड हेलन्सविल में, जहाँ पर आज 1 PM से लेकर 3 PM तक ये जो इवेंट है रहेगा और बिल्कुल आपके लिए फ्री एंट्री है। तो ये सभी कुछ हमारे साथ में, और इसके अलावा अगर जो हमारे टेक्स्ट प्लेटफॉर्म की ओर देखते हैं तो जितेन, गुड मॉर्निंग भाई साहब, थैंक यू सो मच, आपका भी मैसेज मिल चुका है, आप भी, आपकी भी सुबह हो गई है, सुबह सुबह आप हमारा साथ दे रहे हैं हम पर, इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप भी अगर जो हमें सुन रहे हैं, अगर जो आप ऑकलैंड से बाहर है खासकर, तो लिखिए एक गुड मॉर्निंग का प्यारा सा मैसेज और बताइए कि किस शहर या सिटी से आप हमें सुन रहे हैं। 7:12 हो चुके हैं, मैं हूँ अभी आपके साथ में, और भी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ में बस थोड़ी ही देर में। और हाँ, हैप्पी इंडिया इंडिपेंडेंस डे।

हम पर आपको लगे हाथों बता दूं खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स के बारे में, जो कि न्यूजीलैंड फैशन वीक में यहां पर आपके पास में मौका रहेगा। जबकि खादी आपको मालूम है कि एक हैंडस्पन यानी कि हाथों से बुना हुआ फैब्रिक है, मटेरियल है, जिसको एक नया स्पिन देकर लेकर आ रहे हैं फैशन की दुनिया में माने जाने एक नाम राजेश प्रताप सिंह, और ये इंडिया के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल डिज़ाइनर में से एक है। और अगर जो आप खादी को एक नए रूप में देखना चाहते हैं तो आपके पास में यह मौका है ट्यूसडे 18 अगस्त को, जबकि 8:30 PM पर शेड 10 क्वींस वोफ पर यहां पर 89 की स्ट्रीट ओकलैंड CBD में एक फैशन शो के अंतर्गत आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल लेवल का जो शोकेस है यहां पर रहेगा ओकलैंड में। अगर जो आपको टिकट चाहिए तो nzfashionweek.com जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ में आपको मौका दे रहे हैं डबल पास जीतने के लिए। अगर जो आपको भी जाकर इसमें पार्ट लेना है, आपको भी फैशन शो में आपको फैशन की दिलचस्पी है, तो आप भी इसमें जाकर भाग ले सकते हैं। आपको सिर्फ खादी लिखकर KHADI लिखकर 5599 पर अपने नाम के साथ में भेजना है। और जब ड्रॉ होगा, अगर जो आपके हाथ ये टिकट्स लगेंगे तो आप भी इस फैशन शो में जाकर खादी को कैसे एक नया रूप दिया गया है इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो सिर्फ खादी लिखें KHADI और अपने नाम के साथ में 5599 पर टेक्स्ट करें।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और बड़ा ही इंस्पिरेशनल गाना आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऑन अ ब्राइट सैटरडे मॉर्निंग। और ऐसे में 7:33 हो चुके हैं, लेकिन आपको ये बता दे, जबकि इंस्पिरेशंस के बारे में बात हो रही है तो हम फेसबुक पेज पर जाकर ज़रूर चेकआउट करिएगा। सुबह सुबह ही एक मोटिवेशनल वीडियो हमने ऐसे ही डाला है आपके लिए, ताकि कहीं ना कहीं आप भी इसे देख कर, अगर जो थोड़े से नाराज़ है तो एक बार फिर मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ जाएगी। क्योंकि जैसे कि इस गाने में भी कहा है ना कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो ऐसे में हमारे साथ में सुबह सुबह हो गए थे अंजनेश, इनसे बातें हो रही थी और ये ऑस्ट्रेलिया में हैं और सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, और इन्होंने सोचा कि चलो आपको कॉल करें, हमको कॉल करें। थैंक यू सो मच फॉर देट, शुक्रिया दोस्त। और आपने सभी अपने फ्रेंड्स को याद किया है, साथ में जितने भी फ्रेंड्स आपके ओकलैंड में हैं आपने खास उनको शामिल किया है। और अगले इस गीत में आपको याद करते हैं कि आप रोवा पर हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर देट। और आपका दिन आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहे, जबकि आप भी हेड आउट कर रहे हैं अपने नौकरी के लिए, तो हैव अ वंडरफुल डे अहेड अंजनेश। और अगले इस गीत में आपको शामिल करते हैं आपकी फ़ोन कॉल के लिए, थैंक यू सो मच।

सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में एक पुराना तराना जहां पर दिल की बातें हो रही थी, और दिल की बातें हो रही हैं तो मौसम के बारे में भी आपको कुछ अपडेट दे दे। जबकि मेट सर्विसेज ने ये रिपोर्ट दिया है कि इस वीकेंड पर ज़्यादातर आपको रेन यानी कि बारिश का सामना करना पड़ेगा, और ये तो एक पार्ट ऑफ द न्यूज़ है। और बारिश के बाद में एक बार फिर से एक कोल्ड फ्रंट सामने आएगी जहाँ पर पूरे के पूरे कंट्री में टेम्परेचर्स वापस गिर सकते हैं। तो मैंने तो सोचा था कि शायद उससे हम निकलकर बाहर आ गए हैं लो टेम्परेचर से, लेकिन एक बार फिर से फोकास्ट किया गया है मेट सर्विस द्वारा कि टेम्परेचर्स आर सपोज टू डिप वंस अगेन आफ्टर द रेन, यानी कि बारिश के बाद में एक बार फिर कहीं ना कहीं जो जाड़ा है, ठंडे की मौसम है, ये वापस आ

0: रंगीन दुनिया भी।
1: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
2: हेलो एवरीबॉडी।
3: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
4: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
3: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम।
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। Tamaki Turuki, All Together Auckland.
1: 99 Cent or here with more 99 Cent deals this week at Pack and Save. Yeehaw! Ah, come here. Ah, ah, gotcha. Yeah, this isn't my first rodeo. 99 Cent Week on now at Pack and Save.
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
3: हाँ। अच्छा
2: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
3: मिसेस सिंह,
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
6: Playing Bollywood's biggest hits.
7: Budget Gandhi.
8: Toast, coffee और हम का energy.
9: सुबह हो गई आमु.
8: Saturday breakfast on Hum.
10: Yes, Humper, it's time to rise and shine. और आपको community news में बता दे, NZ Carrom Association आपको invite कर रहा है to the 4th New Zealand National Carrom Tournament, जो रहेगा 22nd और 23rd August को at Birkenhead Scouts Hall. और अगर जो आप भी इसमें participate करना चाहते हैं, तो New Zealand Carrom Association के Facebook page पर जाइए, या फिर NZCA के President पंकज को 0210908506 पर आप call कर सकते हैं. इसके साथ में आपको ये भी बता दे कि आने वाले वीक यानी कि जो 21st अगस्त को, नेक्स्ट वीक फ्राइडे को, ओकलैंड भक्ति सत्संग प्रेजेंट कर रहा है ग्रैंड त्रिकोणा कीर्तन नाइट, जहां पर अच्युतन नायर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, साथ में नितिन गाउंडर ओकलैंड के ही, और इसके अलावा अश्विन कुमार अप्पा लोटोका फिजी से ये परफॉर्म करने वाले हैं आपके लिए, जो भक्ति रस कीर्तन को प्रेजेंट करेंगे. आप भी जाकर इस ग्रैंड इवेंट का भाग लेना चाहते हैं, तो ऐसे में वैदिक सेंटर पपटोय में ये जो फंक्शन है रहेगा. टिकट से सिर्फ $20, और स्पॉन्सरशिप और इंक्वायरीज के लिए 0210667236 पर अश्निल से बातें करें, या फिर 0215588884 पर आप कॉल कर सकते हैं.

0: कॉफी और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: यो मैं हूँ छोटा सा छोरा
0: यू आर लिसनिंग टू अविनीत
2: ये हम मैं हूँ आपका साथी अभी 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं इस ब्रांड न्यू आवा पर आपका खास स्वागत करते हैं जबकि 8:02 हो रहे हैं आप भी अभी अभी जागे हैं आंखों को मीच रहे हैं और जागने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे में गुड मॉर्निंग आपका जो दिन है आज बिल्कुल बेहतर रहे इट्स टर्न आउट टू बी अ वंडरफुल डे अप अहेड फॉर यू ऐसे में जबकि आज 15 तारीख अगस्त है तो आपको भी विश करते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जितने भी लोग भारत से हैं और आज का दिन आपके लिए बिल्कुल स्पेशल है आपको भी विश करते हैं और इस हवा पर और भी बातें होती रहेंगी आपके साथ में बस साथ देते रहिए हम पर और 5599 जी हाँ यही नंबर है जहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं इसके अलावा अगर जो आपको कुछ सुनना है अलग यहाँ पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं 0800 4866 पर आप हमारे पास में कॉल भी कर सकते हैं

हाँ, पर मैं हूँ आपका साथी अभी बस बाहर ही देख कर आ रहा हूँ ओकलैंड सीबीडी में। खूबसूरत धूप खिली हुई है। क्या आपके भी इलाके में ऐसा ही मौसम है? होपफुली येस, क्योंकि मेट सर्विसेज ने जो कहा है कि बारिश बाद में जाकर हो सकती है, तो ये सभी कुछ ध्यान में रखकर आप अपना जो डे है प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी प्लानिंग की जब बातें करते हैं तो कुछ चीज़ें या सिचुएशंस होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। जैसे कि सेंट जॉन्स ने बताया है कि इनको अभी हाल में काफ़ी ढेर सारे कॉल्स आ रहे हैं, इनके रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। और जहां पर थर्सडे 13 अगस्त को कुछ 2400 कॉल्स एम्बुलेंस को आए हैं थ्रू 111, और इसके अलावा सरडे 8 अगस्त को सेंट जॉन्स का बिजिएस्ट डे ऑन रिकॉर्ड बताया गया है, जबकि 2500 से ज़्यादा कॉल्स इनको मिले हैं 111 से। कुछ 34% ज़्यादा कॉल्स हैं जो नंबर्स अगर जो देखें अकॉर्डिंग टू अ टिपिकल डे। तो ऐसे में सेंट जॉन्स ने ये बताया है कि आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बार फिर इनके कॉल्स में जो स्पाइक है ये होगी, और ये जो रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट है अगर जो ये कंपेयर करें तो ये बताते हैं कि ये शायद इतना हाई लास्ट इनको याद होगा तो जब COVID-19 का टाइम था तो इतना इनका डिमांड था। लेकिन अभी हाल ही में इनके लिए कुछ ज़्यादा डिमांड हो चुकी है और कहीं ना कहीं इनके सर्विसेज पर भी ये स्ट्रेन पड़ रहा है। लेकिन जो भी हो, आप बिल्कुल सेफ रहे एंड साउंड रहे, अपने वीकेंड को आप बिल्कुल इंजॉय करें। जबकि 8:11 हो रहे हैं, ऐसे में आपका भी कोई मेमोरेबल डे है आज, आप भी कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसके बारे में आप खुशियाँ हमारे साथ में 5599 पर बांट सकते हैं।

हम पर यह है सैटरडे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शो और आप इसे एंजॉय कर रहे हैं। आपको लगे हाथों बता दे रक्षाबंधन जो हमारे सोशल मीडिया पर जो प्रमोशन है कंपटीशन है आपके लिए जारी है और यहाँ पर आपके हाथ लग सकता है $300 कैश इनाम। बड़ा ही सिंपल है, आसान है। आप यहाँ पर जाकर हमारे हम के फेसबुक पेज पर कोई ऐसी चीज़ ऑब्जेक्ट की आप फोटो अपलोड करें जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके भाई और बहन के रिश्तों में, यानी कि कोई गिफ्ट है जो भाई ने बहन को दिया है, आपके भाई ने आपको दिया है या फिर आपकी बहन ने आपको दिया है जो आपके दिल के बिल्कुल करीब है, इस ऑब्जेक्ट को लेकर और आप एक फ़ोटो डाल सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट के नीचे और फिर उसके नीचे दो तीन खूबसूरत लाइंस आप लिख सकते हैं और फिर आपको सिर्फ अपने भाई या बहन को टैग करना होगा। अब बस इतना ही करके आप $300 का जो कैश इनाम है आप ये जीत सकते हैं। जबकि अभी मैं इस पेज को चेकआउट कर रहा था तो कुछ 5 लोगों ने ही अपने एंट्री इसमें डाले हैं और इसमें साक्षी ने एक बड़ा ही इमोशनल पोस्ट डाला है, जबकि कुछ सेंटिमेंटल वैल्यू की बात हो रही है। इन्होंने अपने भाई की लास्ट पहनी हुई जो शर्ट है इसका फ़ोटो अपलोड किया है और साथ में दो तीन लाइंस लिखे हैं कि कैसे ये इनको अपने भाई की याद दिलाता ही है और इसके साथ में अपने भाई को टैग भी किया है संदीप को, लेट संदीप को, और संदीप की जो अकाउंट है अब उनकी माँ यूज़ कर रही है। तो एक बड़ा ही इमोशनल प्यारा सा एक पोस्ट है यहाँ पर साक्षी ने अपलोड किया है। तो आप भी अपने भाई या बहन के लिए ऐसा ही कर सकते हैं। कुछ है आपके पास में जो बिल्कुल आपके लिए इमोशनल है या फिर यूँ कहें कि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ सेंटिमेंटल वैल्यूज़ है, कुछ मेमोरीज़ है जिसको ये ताज़ा करती है। कभी कभी क्या होता है जब हम भाई बहन बड़े हो रहे हैं होते हैं तो अक्सर आपस में कुछ नोक झोंक होती है या फिर कुछ तू मैं होती है या फिर कुछ फोन मेमोरीज़ होती है और फिर जब बहना की शादी हो जाती है और वो घर से चली जाती है दूर, तो ऐसे में आप उसी चीज़ को देख देख कर कहीं ना कहीं उनको याद करते हैं और ये सभी कुछ आपके लिए मौका है। रक्षाबंधन सोशल पर आप इस मेमोरीज को शेयर कर सकते हैं एंड हु नोज जब आप इस इनाम को जीतेंगे, $300 का जो कैश इनाम है जब आप जीतेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने भाई या बहन के लिए इसे इस्तेमाल कर सकेंगे इस रक्षाबंधन पर। तो बड़ा ही आसान है लेकिन अभी तक सिर्फ 5 एंट्रीज हुई हैं। आपके पास में भी समय है, आप इसमें एंटर कर सकते हैं। कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर होगी जो आपके नाते में आपके रिश्ते में बिल्कुल स्पेशल है, एक स्पेशल प्लेस होल्ड करती होगी। बस उसी को लेकर आप इतना करिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ अपने इमोशंस दिखाने में देर कर देते हैं। तो अभी आपके पास में समय है, आप इस पर जरूर एक्ट करें और दो ही तीन लाइंस आपको लिखने की जरूरत है।

0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब।
1: समय पर देखे ध्यान धरे तो 8:26 हो चुका है। 9 पर आपके लिए रहेगा मस्ती मीठा ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, जिसे आप सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर। सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में मैं हूं अभी आपके साथ में।

सरडे ब्रेकफास्ट शो में अभी का साथ है और आपसे बातें भी होती रहती हैं और साथ में म्यूजिक भी आपको सुनवाते रहते हैं। ये सभी कुछ हमारे साथ में कारवा जो है 12 तक रहेगा, लेकिन आपको ये भी याद दिला दे कि एक और एक प्लेटफॉर्म है, जरिया है, जहां पर आप जाकर हमें अपना प्यार दे सकते हैं। हमारे हम फेसबुक पेज पर आज सुबह सुबह तड़के सुबह मैंने आपके लिए एक पोस्ट अपलोड किया है जहाँ पर बातें की है मौसम और साथ में दुआओं की, तो इसे भी जाकर ज़रूर चेकआउट करिए।

0: हम पर मैं हूं अवि और आप सुन रहे थे कुमार शानू को। अगर जो आपने सोचा ना था तो चलो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि इलेक्शंस जो है जनरल इलेक्शंस ये न्यूजीलैंड में नवंबर के महीने में होने को है। अगर जो अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो आपके पास में अभी भी समय है, आप अपने इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। साथ में अगर जो आपकी पहली वोटिंग रहेगी तो आप अपने आप को इनरोल भी कर सकते हैं, जबकि आपके पास में टाइम है टिल 25th of October। तो अगर जो आप इनरोलमेंट के लिए चाहते हैं ये ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ बातें आपके साथ में ताकि आपको रिमाइंड करते रहे, क्योंकि आपकी जो मत है, जो आपकी वोट है, काफ़ी प्रेशियस है और आप इसे ज़रूर यूज़ करें, इसका इस्तेमाल करें।
1: टोस्ट कॉफी और हम का एनर्जी सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ।
4: ये गलत बोल दिया यार।
3: और पहनता भी नहीं उसको।
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो।
4: अभी ब्रांड हो गया ना।
3: रुस्बे के बाल लगे उस।
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
6: Knock knock, it's me Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash, and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
7: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop, so you can fuel up without slowing your day down and still earn smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
8: When you see them on the road, you suddenly don't need to overtake that guy in front of you. And you suddenly remember what a stop sign means. Suddenly you're not too cool to buckle up. And you're suddenly stoked you turned down that beer at the barbie. Nah, all good. Yep. Seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
9: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials, and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
10: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jays Fresh and Valley Fresh Papatoi or Shiv Prasad, Kelston.
11: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
12: हाँ। अच्छा
11: बताओ तुम्हारा फोकस साडा कुछ नहीं।
12: मिसेस सिंह।
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
2: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
14: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
1: Saturday breakfast on Hum.
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है, आपको भजन जेम्स के बारे में बता दें जहां पर एक इनक्रेडिबल नाइट होने वाली है, जबकि साउथ ओकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड और साथ में इनजेड कल्चरल ट्रस्ट ये साथ में मिलकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं रवितेश देव को, जो परफॉर्म करने वाले हैं अपने लाइव बैंड के साथ में डिवोशनल म्यूजिक को, साथ में फ्यूजन भजन्स को और कीर्तन्स को, यानी कि एक ऐसा भक्तिरस प्रोग्राम जहां पर आप एक अलग तरीके से नए धुन में आप सुन सकते हैं, बिल्कुल एक कॉन्सर्ट जैसी आपको यहां पर वाइब्स आएंगी। और इसके साथ साथ में जो ट्रेडिशनल डिवोशन है ये एलिमेंट भी बिल्कुल प्रेजेंट रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपके पास में मौका है ताकि आप जाकर इस इवेंट में भाग ले सके। ऑन सैटरडे 22nd अगस्त एट 7 PM वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पपटोय में है, और साथ में टिकट्स है सिर्फ $30। बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 इनके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहां पर इवेंट के दौरान आपके लिए स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स भी बेचे जाएंगे। टिकट्स के लिए आप जा सकते हैं eventbrite.com, साथ में जेस फ्रेश पपटोय, वेली फ्रेश पपटोय और शिव प्रसाद केल्स्टन। और आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ी बात इस प्रोग्राम की क्या है कि यहाँ पर जितने भी प्रोसीड्स होंगे ये सभी दिए जाएंगे इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी। तो कहीं ना कहीं जो आप टिकट्स खरीदेंगे और यहाँ पर जो स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स खरीदेंगे आपके पैसों का अच्छा इस्तेमाल होगा, उपयोग होगा, क्योंकि ये जाएगा सीधे गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी। तो अभी तक आपने अपने टिकट्स नहीं लिए तो समय है आपके पास में, जबकि एंटरटेनमेंट भी आप पूरा ले सकेंगे इस नाइट का, इसके साथ में एक अच्छे कार्य में अपना सहयोग भी दे सकेंगे।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: हम पर ये ब्रेकफास्ट का कारवा है और ऐसे में जबकि आज भारत का स्वतंत्र दिवस है आप भी इसे धूमधाम के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको भी खास याद करते हैं इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करते हैं ऐसे में अगला गाना आपके लिए जो कहीं ना कहीं मिट्टी की खुशबू की बात ही करती है

कुछ 7 मिनट बाकी है 9 बजने में और 9 पर आपके साथ में रहेगा मस्ती मीठा, जहां पर मस्ती भरे बातें भी होंगी आपके साथ में और कुछ मस्ती भरे गाने भी आपको सुनवाएंगे. ऑल ऑफ दिस आफ्टर 9.

0: Saturday breakfast on Hum. Musti meter on Hum.
1: Yo,
0: you're listening to Avineet.
2: That's right, हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी जबकि 9 बज रहे हैं और यहाँ से मोड शुरू होता है मस्ती मीटा का, जहाँ पर आपके साथ में मस्ती भरी बातें होती रहती हैं और कुछ मस्ती भरे गाने भी होते रहते हैं। तो आज कुछ अलग करेंगे, नया करेंगे, बस थोड़ी ही देर में आपके साथ में हम पर प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, जिसे आप सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर, तो सुनते रहिए। बस इस गाने के बाद में कुछ इंटरेस्टिंग है आज आपके साथ में इंटरेक्टिव करने को।

मस्ती मीठा है ये और मैं हूँ आपका साथी अवि। और आज मस्ती मीठा में बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने एक दो सीन्स में ही अपना छाप छोड़ दिया था। एक ऐसे कलाकार जो आए थे पर्दे पर और फिल्म भर नहीं आपने इस कैरेक्टर या एक्टर को देखा, लेकिन जितनी देर के लिए ये फिल्म में थे आपने इनको पसंद किया। और इस फिल्म को रिलीज़ हुए 25 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये कैरेक्टर बिल्कुल फेमस है। और एक अनट्रेन्ड एक्टर ने इस रोल को प्ले किया था अपने डायरेक्टर दोस्त के कहने पर। तो ये जो एक्टर है या फिर कैरेक्टर है, इसके बारे में अगर जो बात करूँ तो मैं आपसे कहूँ कि डेट, टाइम और सुबोध। जी हाँ, डेट, टाइम और सुबोध। तो आपको किस फिल्म की इंस्टेंटली याद आती है? बस आपको यही जवाब देना है 5599 पर अपने नाम के साथ।

मस्ती मिठा है ये अवि का साथ है, और जबकि हमने आपसे सवाल पूछा था, शायद आप लोगों को मुश्किल लग रही है, लेकिन आपको बता दूं फिर से कि 25 ईयर्स हो गई है इस फिल्म को रिलीज़ हुए, और डेट टाइम और सुबोध यही आपके की वर्ड्स है, क्योंकि ये जो बंदा है इस मूवी में, इसको डेट और साथ में टाइम हर चीज़ की मालूम होती थी, और जब भी ये डेट पर जाते थे पिछले डेट पर कहाँ पर कितने बजे और किस डेट पर मुलाकात हुई थी ये इनको बाखूबी याद होती थी। तो ऐसे एक कलाकार जिन्होंने अपने फ्रेंड डायरेक्टर फ्रेंड के कहने पर इस रोल को किया है, और डेट टाइम और सुबोध इफ़ इट रिंग्स अ बेल आपको कुछ याद दिलाता है किसी फिल्म की, तो 5599 पर हमारे पास में मैसेज करें, या फिर 0800004866 पर आप कॉल भी करके इसमें शामिल हो सकते हैं, हमारे पास में उन्हें आकर बातें भी कर सकते हैं। 0800004866 ये टोल फ्री नंबर है, आपको याद दिला दूँ ताकि आप भी कॉल करने में झिझक ना करें।

0: हम पर यह मस्ती मीठा और सुबोध के साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि लोग सुबोध को भूल गए, जबकि हमने आपसे सवाल किया था कि आप हमें बताइए कि सुबोध के बारे में जब आप सुनेंगे तो किस फिल्म की आपको याद आएगी, तो अभी तक एक भी मैसेज नहीं आया। मेरे ख्याल से शायद आपको मुश्किल हो रही है क्रैक करने में कि किस फिल्म से ये करेक्टर जो है कलाकार है किस फिल्म में यूज़ किया गया था। तो चलो थोड़ा सा और आपको क्लू देते हैं। इस फिल्म में तीन दोस्तों की कहानी है जिनमें से एक ने प्ले किया था अक्षय खन्ना। ये नजर आए थे एक आर्टिस्ट की रोल में, यानी कि ही वॉज वन ऑफ द फ्रेंड्स और ये आर्टिस्ट थे। लेकिन अगर जो सुबोध के बारे में खास बातें करें तो यहाँ पर जो है ये वेरी ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट डेट एंड टाइम, यानी कि हर चीज़ को वो डेट से और टाइम से ही लेकर चलते थे। तो सुबोध किस फिल्म में थे यही आपको अंदाज़ा लगाना है 5599 पर। लकली सुबोध इज़ नॉट लिसनिंग। मुझे लगा था कि इस कैरेक्टर को लोग शायद जब भी डेट और टाइम से बांध कर रखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे तो लोगों को ख्याल रहेगी कि किस फिल्म का ये अजीब कैरेक्टर है। तो 5599 पर आप हमारे पास में भेजे, जबकि 0003 आपने अटेम्प्ट किया है बार बार, देखो नहीं, इस फिल्म को रिलीज़ हुए कुछ 25 ईयर्स हो गए हैं और सुबोध इनफैक्ट वॉज अ नॉन एक्टर, यानी कि वो एक्टर थे ही नहीं और अपनी डायरेक्टर फ्रेंड के रिक्वेस्ट पर उन्होंने इस जो कैरेक्टर है उसको प्ले किया था, इस रोल को प्ले किया था और फिल्म का इनिशियल्स DCH सुबोध उसी से है। Playing Bollywood's biggest hits. Budget hit the Gandhi.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja. बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Manuka. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: At Macca's, you can get the new honey sriracha sauce on any breakfast. McMuffins, brekkie wraps, big brekkie burgers, hotcakes. Nah, that'd be weird. Honey sriracha, only for a limited time. T's and C's apply.
6: Please use your imagination for the following ad.
7: If I won Powerball, I'd book my family a trip to... And I'd stay right here with my new...
8: Imagine winning $12 million this Saturday. Play in store or online.
9: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
10: Join the Tribe!
9: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe. Your destination for sport. Download the app now and
10: join the tribe.
11: 19 साल बाद शिवम is back. A man haunted by grief and loss, searching for a purpose in life. आवारापन 2, starring Imran Hashmi and Disha Bani.
12: मौत, मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है.
11: आवारापन 2, now showing in cinemas. Distribution partner for a films. रेटिंग टीबीसी।
13: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
14: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 p.m. Vedic Center Papatoi. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds Gift of Life Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh Papatoi or Shu Prasad.

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
1: That's right, ये सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम. और विलासनी और निकिता ने आपने दोनों ने मिलकर सुबोध की लाज रख ली. आज सुबोध जहाँ भी होगा खुश होगा, क्योंकि आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है, आपने पहचान लिया है कि किस फिल्म से ये जो कैरेक्टर है. और ये जबकि हम बातें कर रहे थे डेट और टाइम को लेकर, काफ़ी पर्टिकुलर है हर चीज़ को, ये डेट से बताते हैं और टाइम से बताते हैं. तो चलो आपको एक क्लिप भी सुनवाते हैं अगर जो आप अभी भी अटेम्प्ट करना चाहें, हालांकि इसके बाद में काफ़ी इजी हो जाएगा. नेवरदलेस आपको सुनवाते हैं.
2: 15 सितंबर को मैं पूजा से पहली बार यहीं मिला था, और ठीक 7 दिन बाद 22 सितंबर को हम यहाँ आइसक्रीम खाने आए थे.
3: सुबह तुम्हें टाइम याद नहीं?
2: ऑफ कोर्स यार, ठीक 5:55 हुए.
1: तो ये एक ऐसा करेक्टर जिसको डेट टाइम हर चीज़ हर समय से ये नोट कर लेते थे, विच इज़ मे बी अ गुड थिंग. अगर जो देखे रिलेशनशिप को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छी बात भी है. तो निकिता और विलासनी आपने पहचान लिया है, और जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले हो चुका है, तो अब तो बिल्कुल आसान हो जाएगा. अभी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 5599 पर.

0: जरूरी है मस्ती मीटर के साथ।
1: पंद्रह सितंबर को मैं पूजा से पहली बार यहीं मिला था और ठीक सात दिन बाद 22 सितंबर को हम यहाँ आइसक्रीम खाने आए थे।
2: सुबह तुम्हें टाइम याद नहीं?
1: ऑफ कोर्स याद, ठीक 5:55 हुए थे।
3: ये जो लास्ट लाइन सुबोध बोलता है उसके बाद में सैफ अली खान की रिएक्शन बैक सीट में देखने वाली है। अगर जो आपने शायद किसी तरह से इस फिल्म को मिस किया है तो ज़रूर देखिएगा और मे बी इट इज़ अ गुड टाइम टू रीविजिट। जबकि 25th एनिवर्सरी पर फरहान अख्तर जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे इनसे बातें हो रही थी, इंटरव्यू कर रहे थे और किसी ने पूछा कि सुबोध को कैसे आपने कास्ट किया तो फरहान अख्तर ने ये बात बताया है कि सुबोध इनफैक्ट इनका नाम है असाद ददरकर और ये फरहान अख्तर के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और इनकी कास्टिंग हुई ऐसे जबकि फिल्म को शूट करने से पहले कुछ साल पहले ये अमेरिका गए थे यूएसए, वहाँ पर असाद ने इनके लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था, एक रोड ट्रिप, और रोड ट्रिप लेते हुए यहाँ पर कोई एक जगह इनको पसंद आई फरहान अख्तर को और उन्होंने रिक्वेस्ट किया असाद से कि यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना चाहिए, लेकिन असाद ने कहा नहीं नहीं नहीं, वी हैव टू बी ऑन टाइम क्योंकि अगले दिन का लंच हमारा वहाँ है, उसके बाद में इवनिंग में हमें इतने बजे वहाँ पर रहना है। सो ही वॉज वेरी ऑन टाइम एंड वेरी डिसिप्लिन अबाउट टाइम एंड डेट्स एंड एक्सेट्रा। तो जबकि फिल्म में ये रोल आई यानी कि इस करेक्टर की कास्टिंग के लिए उन्हें एक एक्टर ढूंढना था तो उन्होंने कॉल आउट किया, रीच आउट किया अपने इसी फ्रेंड को क्योंकि उनको लगता था नो वन कुड डू इट बेटर देन असाद और ऐसे में बिल्कुल सही हुआ। जबकि सुबोध को लेकर आज भी लोग बातें करते हैं और उनकी टाइम डिसिप्लिन को लेकर कहीं ना कहीं उनकी एग्जांपल देते हैं। तो ये सभी कुछ आपके साथ में था और एक और एक जवाब आया था 8942 आपके लास्ट 4 डिजिट्स, आपने भी सही जवाब दिया। थैंक यू सो मच निकिता विलासनी और साथ में 0003 आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। इसके साथ में मस्ती मीठा में इट्स टाइम कि आपको उसी फिल्म का टाइटल ट्रैक सुनवाएं।

0: हम पर जबकि यह है मस्ती मीठा, तो आपको एक और एक मस्ती की बात बता दें कि हम बोर्डिंग कॉल इज नाउ ओपन, जहां पर आपका ड्रीम आइलैंड एस्केप इज जस्ट वन बोर्डिंग कॉल अवे, जहां पर आप जीत सकते हैं टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतू विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी। ये सभी कुछ आपका हो सकता है जब आप हमको सुनते रहेंगे एवरी वीकडे, और आपको अपने कानों को बिल्कुल खुले रखने हैं टू हियर द स्पेशल बोर्डिंग कॉल जो 8 AM इसके करीब बज सकती है, साथ में 11 AM इसके आसपास बजेगी, और साथ में 1 PM एंड 5 PM। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्पेशल बोर्डिंग कॉल सुने, उसके बाद में आपके पास में 60 मिनट से, ताकि आप रोवा पर जाकर और जो हमारा प्रमोशन है यहाँ पर आप बोर्डिंग कॉल के नीचे बोर्ड नाउ लिख कर और सबमिट कर सके, यहाँ पर टैप करके सबमिट करें, और उसके बाद में आपका नाम जो है ड्रॉ में शामिल हो जाएगा, आप एक अनफॉरगेटेबल वनुआतू गेटअवे जीत सकेंगे। और याद रहे, अगर जो आपको कंपटीशन पेज का लिंक चाहिए तो लेटर्स बी और सी लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करें। आपको इतना ही करके जैसे ही आप टेक्स्ट करेंगे यहाँ से लिंक मिलेगा, और उस लिंक को फॉलो करते हुए आप इस कॉम्पटिशन में भाग ले सकेंगे। तो अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा आपको, तभी आपके नाम ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। डोंट मिस योर फ्लाइट बिकॉज दिस वन कुड टेक यू टू पैराडाइज। हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतू। विजिट solomons.com। टीज एंड सीज डू अप्लाई।
1: लाइफ में थोड़ी मस्ती जरूरी है, मस्ती मीटर के साथ।
2: अटेंशन एवरीवन, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं, और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
3: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
3: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
2: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए, और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
3: सबसे बेस्ट 2 परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
2: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
4: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर। चाहे आप स्लो रोस्ट कर रहे हो, बेकिंग कर रहे हो, या फैमिली के लिए डिलीशियस फीस्ट बना रहे हो, द डी एंटोनियो विंटर सेल हैज यू कवर्ड। शॉप कीजिए माइटी 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन में, और पाइए कुकवेयर और किचन एसेंशियल्स पर जबरदस्त डील्स। द डी एंटोनियो विंटर सेल ऑन नाउ, एंड्स अगस्त 16th।
5: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a Shower Dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every Shower Dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
6: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest, Sarah.
7: बनाते हैं कबाब को स्पेशल, शेफ एलेक्स?
6: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
7: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
6: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
7: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
8: Spend $30 at Trade Depot and get fast, free delivery. 12-panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
9: TradeDepot.co.nz.
10: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
11: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
12: अब हमारा क्या होगा?
13: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
14: तो क्या करें?
15: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
16: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon, and this time it's different. You now need to enroll before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
17: Remember, if you want to vote, you need to enroll first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.

0: ये है मस्ती मीटर।
1: जी हाँ, ये है मस्ती मीटा। कुछ 19 मिनट्स बाकी है 10 बजने में, और 10 बजे के बाद आपके साथ में रहेगा रक्षाबंधन ऑन एयर। जी हाँ, एक ऐसा मौका जहाँ पर आप सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू दे सकेंगे हमारे साथ में। अभी तक मेरी शो में एंट्री नहीं हुई है, और आई एम लुकिंग फॉर टू ब्रेकिंग दिस मेडन, और ये आप ही के साथ में हो सकता है। और इसके करने के लिए, ऐसा करने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा 10 बजे के बाद में जुगाड़ जंक्शन में 0800004866 पर आपको कॉल करना होगा, ताकि हमारी शो में भी कोई एंट्री हो जाए रक्षाबंधन ऑन एयर प्रमोशन के लिए। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बता दें, जो हमारे सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन का प्रमोशन चल रहा है, यहाँ पर भी आप $300 कैश इनाम जीत सकते हैं। और जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर जो आपके लिए, अपनी बहन के लिए को सोचते हुए कोई स्पेशल प्लेस होल्ड करता है आपके दिल में, या फिर आप अपने भाई के लिए जब भी सोचते हो तो इस मेमोरी को याद करते हो, इस ऑब्जेक्ट को लेकर कोई भी चीज हो सकती है जो आपके रिश्ते के लिए बहुत मानिए रखता है, तो इसको लेकर आप एक फोटो खिंचवा कर हमारे हम फेसबुक पेज पर जो पिन पोस्ट है रक्षाबंधन का, उसके नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं, और उसके साथ में दो तीन लाइंस आप लिख सकते हैं। बस उतना करके अपने सिबलिंग को टेक करें और आप ड्रो में शामिल हो जाएंगे टू विन $300। यहाँ पर कुछ 5 एंट्रीज हुई है अभी तक सोशल मीडिया पर, और काफ़ी इमोशनल स्टोरीज भी आई है, और इसे पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा, जहाँ पर साक्षी ने अपने भाई संदीप को याद किया है। तो ऐसे में ये मौका आपके पास भी है, और 10 बजे के बाद आपको ओनिया शामिल होने का एक चांस और देंगे। इन द मीन टाइम मैं हूँ अभी आपके साथ में,

0: Mita on Hum.
1: आज के लिए मस्ती मीठा में बस इतना ही, और 10 पर आपके लिए आ जाएगा जुगाड़ जंक्शन, जहां पर क्विक फिक्स आपको देते रहेंगे. लेकिन इन द मीन टाइम आज के लिए मस्ती मीठा में बस इतना ही.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: Saturday Breakfast में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर.
2: Yo, मैं हूँ छोटा सा छोरा.
1: You're listening to Avineet.
3: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में. जबकि 10:03 हो चुके हैं, ऐसे में अब समय हुआ आपके साथ में जुगाड़ जंक्शन का जो सेगमेंट है इसकी शुरुआत करें. और ऐसे में अभी से लेकर 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. लेकिन इस आवा की शुरुआत करना चाहते हैं खास रक्षाबंधन ऑन एयर के साथ में, ऐसा प्रमोशन जहाँ पर आप हमारे साथ में जुड़कर 0800-004-866 पर कॉल करके अपने सिबलिंग को एक परफॉर्मेंस रिव्यू देकर छोटा सा ही आप जितना भी कहना चाहो करके और अपने आप को ड्रॉ में शामिल कर सकते हो, जहां पर आपके हाथ $250 लग सकते हैं. दो विजेता ठहरेंगे, देर विल बी टू विनर्स, और साथ में जो ड्रॉ होगा 28 अगस्त को होगा. तो जबकि मैं यहां पर चार्ट देख रहा था जहाँ पर हमको विनर्स के नाम लिखने होते हैं, तो ढेर सारे शोज़ में एंट्री हुई है और मेरे शो में अभी तक एंट्री नहीं हुई है. तो आप बहन हो, आप सुन रही हो, आपसे अपील करता हूँ 0800-004-866 पर आप कॉल करें ताकि आप अपने सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू हमारे साथ में दे सकते हैं. या फिर आप एक प्यारे से भाई हो जो अपने बहन के बारे में कुछ अच्छा कहना चाहते हैं आज ऑन एयर, तो 0800-004-866 है, यहाँ पर आप कॉल करके और इस ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं. Who knows, शायद इसी शो से ही आपका नाम ड्रॉ हो और आप ठहरे विनर $250 के लिए, जहां पर आप स्प्लिट कर सकते हो, यानी 50% अपने बहन को दे सकते हो या भाई को दे सकते हो, ज्यादा 50% से आप खुद अपने खुद के लिए कुछ ले सकते हो. तो ये मौका आपके पास में है. 0800-004-866 आपका मैजिक नंबर है. मैं हूं आपका साथी अभी ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM साथ में रोवा पर. और ऐसे में अभी थोड़ी देर के लिए आपको मौका दे रहे हैं जहां पर आप अपने भाई या बहन के बारे में कुछ बोलकर एक सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू देकर और ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं. ये सभी कुछ आपके साथ में ऑन दिस आवर.

0: ऑलराइट, हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी, और जबकि बातें हो रही थी कि हमको चाहिए थी अपने इस शो में एक ड्रो जहाँ पर एक पर्सन को हम ऐड कर सके, किसी भाई या बहन को ऐड कर सके, तो इतनी ज़ोरों से पुकार थी कि एक भाई ने दूसरी भाई की सुन ली। तो हमारे लाइन पर है संपत। संपत, आपका स्वागत है, वेलकम टू द शो भाई।
1: या थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच। और ऐसे में अभी जब आपसे ऑफ एयर बात हो रही थी तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं क्योंकि आपने बताया है कि अभी हाल ही में यू हैव बिकम अ प्राउड फादर।
1: यप,
0: ओह लवली लवली। और आपके बेटे का नाम क्या है, हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
1: प्रश
0: प्रश, ब्यूटीफुल नेम। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ऐसे खुशी के मौके पर हमारे पास में भी कॉल किया है और हमारे साथ में अपनी खुशियां बांटी हैं। इसके साथ में अब बातें करना चाहेंगे आपसे सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू के बारे में, तो आप क्या बताना चाहेंगे अपने बहन के बारे में?
1: यस डेफिनेटली, मेरा बहन एंड शी इज इन इंडिया, सिरीशा इसका नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज्ड टू फाइट अ लॉट व्हेन वी आर लाइक किड। अभी शी इज लाइक 40 इयर्स होगी एंड आई एम ओवर 35। दैट्स दोस आर द मेमोरीज आई नेवर फॉरगेट एंड शी इज देयर फॉर मी ऑल द टाइम।
0: लवली। और अभी तो काफी खुश भी होगी क्योंकि अब वो फुआ बुआ भी बन गई ना?
1: या एंड गुड थिंग इज मेरा बच्चा का जन्मदिन एंड इट्स ऑन हर 40th बर्थडे सेम डे एंड शी इज ऑन क्लाउड 9।
0: लवली लवली। तो कोइंसाइड हो रहा है ना, अगस्त में इनका जन्म? लवली। नहीं अगस्त या जुलाई में?
1: ये अगस्त नहीं, मई, एंड ऑफ मई।
0: ओह एंड ऑफ मई, ओके ओके। सॉरी क्या नाम बताया था अपनी बहन का?
1: सिरीशा।
0: सुदीशा?
1: सी सिरीशा, सी
0: सिरीशा, गॉट इट, ओके ओके ओके।
1: या
0: अच्छा, और ऐसे में आपका राखी अराइव हो चुका है या आने वाला है, कुछ आइडिया है इसके बारे में?
1: ऑलमोस्ट।
0: ओह लवली मैन। और क्या मैसेज देना चाहेंगे, शायद आपकी बहन अभी सुन नहीं रही होगी लेकिन फिर भी
1: नहीं,
0: ऐसे मौके पर क्या स्पेशल जो दिल से आवाज है क्या होगी?
1: या आई मीन आई जस्ट वांट टू से टू हर द टाइम दे फॉर हर ऑल द टाइम एंड थैंक्स फॉर बीइंग माय सपोर्ट।
0: स्वीट यार, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच संपत प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू बंडल ऑफ जॉय, हमारी तरफ से भी, हम की पूरी टीम की ओर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस।
1: थैंक यू,
0: थैंक यू, टेक केयर ब्रदर। तो ये थे संपत, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और सिरीशा को इन्होंने याद किया है, कुछ ऐसे पल उन्होंने बताए हैं अपने बहन के बारे में, और ये सभी कुछ आप करके अपने आप को ड्रो में शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको बता दें कि जो सोशल पर हमारे रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन है ये भी जारी है, जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ को लेकर जिससे आप दोनों भाई बहन के बीच में ये बंधन जुड़ा है, एंड यू कैन ऑलवेज फोनली रिमेम्बर कि कुछ ऐसे सेंटिमेंटल ऑब्जेक्ट होंगे कि जिससे आप कभी कभी फोनली याद करते हो, तो ऐसी एक चीज़ को लेकर आप तस्वीर उसकी खींचकर, फ़ोटो खींचकर आप अपने भाई को टेक कर सकते हो, दो तीन लाइन लिखकर हमारे सोशल मीडिया के इस पिन पोस्ट पर, बस इतना ही आसान है, और वहाँ पर भी आपको प्राइजेस दिए जाएंगे।
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा आम शक्ल ना हो।

हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी और ये है जुगाड़ जंक्शन आपके साथ में। और एक क्विक टिप आपको दे दूँ कि कभी कभी आपके जो घर के इंटरनल डोर्स है ये कहीं ना कहीं इसको कहते हैं स्टिकिंग डोर, यानी कि थोड़ा सा हैंग करने लगता है, लूज हो जाता है, ग्राउंड में आपसे स्क्रैप करने लगता है और आप जब भी इसे बंद या खोलते हो तो ये बताया जाता है कि अक्सर ग्राउंड मूवमेंट के कारण स्पेशली न्यू बिल्ड्स में ये सभी कुछ होते हैं। और इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फॉर प्रोफेशनल हेल्प स्ट्रेट अवे आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहल आप एक स्क्रू ड्राइवर लेकर उसके जो डोर के हिंजेस है आप एक बार इसे चेक कर ले, ताकि अगर जो ये लूज़ हो गई है या फिर कभी कभी जो कंडीशन ऑफ द हिंजेस या स्क्रूज होते हैं ये लूज़ हो जाती है, तो आप इसको एक बार खुद ही टाइटन कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको घुमा कर देखें ताकि अगर जो हिंजेस या स्क्रूज लूज है तो आप इसे टाइट करके जो एक प्रॉब्लम है आप इसका सोल्यूशन खुद ही निकाल सकते हैं। और अगर जो तब ये आपसे ठीक नहीं होता है तो एज अ सेकंड ऑप्शन आप कोई प्रोफेशनल को बुला सकते हैं जो आकर आपके लिए इसे ठीक कर सकता है, लेकिन पहले आप खुद ही चेक कर ले ताकि एक जो कॉल आउट है इससे आप बच सकते हैं।

0: Junction on Saturday Breakfast.
1: जी हाँ, यह है जुगाड़ जंक्शन। और आपको बता दें, हम पॉडकास्ट के बारे में जहाँ पर अक्सर सैंडी और रुज़बे बातें करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स को लेकर, और साथ में अभी हाल ही के अपने अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में इनकी बातें हुई है 4 या 13 स्टूडेंट से जो है ओमिस्टन सीनियर कॉलेज से, विच इज़ माई नेबरहुड कॉलेज। और ऐसे में इन स्टूडेंट्स ने आकर बताया है कि कैसे उन्होंने सक्सेसफुली एक स्कूल बिजनेस प्रोजेक्ट को एक रियल वेंचर बना दिया है जिसका नाम है मनी मेहम। जी हाँ, एक ऐसा फन गेम जहां पर इनको इंस्पिरेशन मिली है और सारे बोर्ड गेम से, और मनी मेहम को इन्होंने डिजाइन किया है खासकर बच्चों के लिए जो 9 से लेकर 15 साल की उम्र तक है, ताकि इनको मनी मैटर्स के बारे में बिल्कुल पता रहे, ये अवेयर रहे। अक्सर न्यू देखते हैं जो मनी सेवी टॉपिक्स होते हैं या फिर पैसों को कैसे बचाया जाए, कैसे फाइनेंशियल डिसीशंस को लिया जाए, ये आप उनको गेम से ही सिखा सकते हैं बड़े ही आसानी से। और कैसे इन टीनेजर्स के पास में ये आइडिया आया है, इसके बारे में सभी कुछ बातें अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में हुई है। अगर जो आपको लिंक चाहिए इसका और भी आप जानना चाहते हैं तो 5599 पर ड्राइव लिख कर आप टेक्स्ट करें, यहाँ से आपको अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़बे का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। तो इतना ही सिंपल है। अगर जो आप भी अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं मनी मेहम को, तो ये पॉडकास्ट सुनिए और कैसे आपके बच्चे के लिए फायदेमंद रहेगा ये सभी कुछ आप जान पाएंगे।

0: जंक्शन पर।
1: That's right, ये है जुगाड़ जंक्शन आपके साथ में। और कल जबकि आपके लिए लेकर आ रहे थे हम लंच बॉक्स, तो ऐसे में निकलते निकलते स्टूडियो से शालीन का मैसेज आया था, जो मनीरेवा से आपने मैसेज किया था, तो वो तो कल मिस हो गया था, लेकिन आज मैंने आपका जो मैसेज है पढ़ लिया है। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए। इसी तरह से आप हम पर हमारा साथ देते रहें। और बस थोड़ी ही देर में आपके लिए एक और एक पेट्रियोटिक गाना लेकर आएंगे, जबकि आज है इंडिपेंडेंस डे इंडिया के लिए। और साथ में जितने भी लोग भारत से जुड़े हैं, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।

हम पर यह है जुगाड़ जंक्शन, और जुगाड़ जंक्शन में अगर जो आप अपने पेंट्री कैबिनेट को लेकर काफ़ी परेशान हैं, अगर जो आपके सामान जो इसमें हैं बिखरे हैं और ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे हैं, तो आपके पास में एक ऑप्शन है जहां पर आप अभी भी अपने कैबिनेट्स में, पेंट्री कैबिनेट्स में पुल आउट ड्रॉर्स इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। जो पुल आउट ड्रॉर्स है ये अवेलेबल है, रेडली अवेलेबल इन मेनी लीडिंग हार्डवेयर स्टोर्स, तो आप यहाँ पर जाकर उसे आसानी से खरीद कर और घर पर आकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ मेजरमेंट आप ले लेना ताकि आपको बाद में कोई डिफ़िकल्टीज ना हो, और काफ़ी ईजी इंस्टॉलेशन है। अगर जो आप गूगल करेंगे तो आपको इमेज के साथ में जो इंस्ट्रक्शंस है ये सभी कुछ मिलेगा, और उसके बाद में जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपकी एक परेशानी सॉल्व हो जाएगी, जहाँ पर चीज़ या फिर सामान, इंग्रेडिएंट्स या जितने भी स्नैक्स होते हैं, आप इसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये एक टिप आपके लिए जुगाड़ जंक्शन में। अब इसके साथ में, जबकि आज इंडिपेंडेंस डे हैं, तो ऐसे मौके पर अगला ये तराना आपके लिए।

0: Junction on Saturday Breakfast.
1: अच्छा, आपको ये भी याद दिला दें कि 11 बजे के बाद में आपके साथ में रहेगा देसी बिज शाउटआउट, जहां पर आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपने बिजनेस का प्रमोशन होने या हमारे साथ कर सकेंगे। अभी से ही अगर जो आप चाहें 5599 पर अपने जो बिजनेस डिटेल्स है हमारे पास में भेज सकते हैं। और हाँ, जब आप ये भेजें तो इसके साथ में ये भी ध्यान रखें कि किस एरिया में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इसका भी जो इन्फॉर्मेशन है आप हमारे साथ में भेजें। तो 5599 इज़ द नंबर जहाँ पर आप अपने बिजनेस डिटेल्स को पास ऑन कर सकते हैं, ताकि 11 बजे के बाद में ओनेया आपको एक शाउट आउट दे सके।
0: स्टार्ट योर सैटरडे फ्रेश विद द परफेक्ट मिक्स,
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना।

0: anywhere you get your podcast.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: Hello. NZHL helps you get ahead on your mortgage without needing a sugar mama, faking a back injury for the payouts.
5: Oh, my back.
4: Becoming a contributing member of OnlyToes.com. Doing your own dental work. Then cashing in with the Tooth Fairy.
6: Score.
4: Selling your swimmers, staycationing in Hamilton, dumpster diving, moonlighting, scrimping, skimping, regifting, login sharing, or sucking up to your rich lip-kissing uncle. Mwah. Nope, there's a better way to have a mortgage and a life with NZHL.
7: Briscoe's is taking savings to the extreme with at least 40% off store-wide and incredible 60% off thrill-seeking savings. Don't miss at least 40% off store-wide end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
8: The Afterpay Day sales are back. Score up to 70% off thousands of brands like Harvey Norman, PB Tech, Hallensteins, and Zed when you check out with Afterpay. End Sunday. T's, C's, fees and credit checks may apply. See afterpay.com for Afterpay terms.
9: At Speedy Signs, they look at the bigger picture. Yes, they make great signs, but more importantly, they create signage that helps your business grow. Their team works with you from concept through to installation, making the process simple and seamless. Clear strategy, strong design, professional finish every time. If you want signage that does more than just look good, give them a call on 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz today and grow your business faster.
10: The sleepless nights, the aching knees, the energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise, and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
0: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Saturday breakfast me. Hum aaye hain Jugaad Junction par.
11: That's right, ये है जुगाड़ जंक्शन. और जबकि आज हम बातें कर रहे हैं पेंट्री को कैसे ऑर्गेनाइज करें, ये बताने के बाद में मैं कहीं कहीं ये सोच रहा हूँ कि घर जाने पर कहीं यही टास्क मुझे ना मिल जाए. लेकिन जो भी हो, आपको बता दें कि आपको अपने पेंट्री को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए बास्केट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में मैक्सिमाइज एवरी इंच. जहाँ तक आपको मौका लगे, आप प्रोडक्ट को या फिर इन्ग्रीडियंट्स को ऐसे रखें कि यहाँ पर ढेर सारे चीज़ या सामान अट सके. As an example, आप जार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही शेप का, सो दैट ये कैन दे कैन स्टिक अराउंड टुगेदर. एक ही शेप का कंटेनर रहेगा तो साथ में आप अच्छी तरह से उसको असेंबल कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ में रख सकेंगे. इसके साथ में ये भी बताया गया है कि जितने भी जार्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर जो आप चाहे तो इनको लेबल कर सकते हैं. और लेबलिंग के लिए आपका जो लेबल से कंसिस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज इट विल गिव दैट लुक कि जब आप भी पेंट्री खोलोगे तो आपको एक अच्छा सा लुक मिलेगा, फील मिलेगा. तो ये सभी कुछ टिप्स है जो आज आपके साथ में जुगाड़ जंक्शन में शेयर कर रहे हैं.

आज के लिए जुगाड़ जंक्शन में बस इतना ही है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉर टू द नेक्स्ट सेगमेंट। 11 बजे के बाद में आपके साथ में रहेगा देसी बीज शाउट आउट, जहां पर आप अपने बिजनेस डिटेल्स अभी से ही हमारे पास में टेक्स्ट कर सकते हैं 5599।

0: You're listening to Avineet.
1: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और ये है गोल्डन आवर. जबकि 11 बज चुके हैं, 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. दिस इज द फाइनल आवर ऑफ द शो, जहां पर आपके लिए हम मैसेजेस का प्लेटफॉर्म खोलते हैं. देसी बीज शाउट आउट के लिए आपके पास में मौका रहता है. अपने किसी भी वेंचर को आप प्रमोट करना चाहते हैं तो हमारे पास में 5599 पर आप टेक्स्ट करें, ताकि आपकी बिजनेसेस को हम यहां से बताएं और लोग भी आपके सर्विसेज के बारे में जान सके. ये सभी कुछ आपके साथ में है. जबकि हसित मंसूरी ने आपके हमारे पास में मैसेज किया है. हसित मंसूरी एक बिजनेस ब्रोकर है एबीसी बिजनेस सेल्स के साथ में, जिनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं बिजनेस ब्रोकरिंग फेम में. और अगर जो आपको भी अपना बिजनेस बेचना है अराउंड द कंट्री, आप प्लान कर रहे हैं अपने बिजनेस को बेचने के लिए, तो आप रीच आउट कर सकते हैं हसित मंसूरी को फॉर नो ऑब्लिगेशन अप्रेजल ऑन 0223738496. याद रहे, हसित मंसूरी को 0223738496 पर आप कॉल करके अपने बिजनेस को अगर जो आप सोच रहे हैं बेचने के लिए, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इसके साथ साथ आपके पास में भी कोई बिजनेस है जिसके बारे में आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन जानकारी, तो 5599 पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और फिर 0800004866 पर आप कॉल भी करके अपने बिजनेस के बारे में ओनिया भी बात कर सकते हैं अगर जो आप चाहे तो.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम और ये है देसी बिज शाउट आउट। और अगर जो आप भी घर से कुछ बिजनेस करते हैं, शायद केटरिंग सर्विसेज हो या फिर डेकोरेशन सर्विसेज हो या फिर आप घर से सलून चलाते हो, जो भी है आप 5599 पर हमारे पास में मैसेज कर सकते हो। ATS इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, ये फैब्रिकेशन करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं फॉर स्टील गेट्स। अगर जो आपको भी अपने घर पर कुछ सिक्योरिटी लेवल ऐड करने हैं और आपको लगता है कि आपको स्टील गेट की जरूरत है, तो इसकी फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन के लिए आप स्टीवन को कॉल कर सकते हैं 0221998959, ताकि लोग आसानी से ट्रेसपास ना कर सके और कहीं ना कहीं ड्राइववे पर ही आकर रुक जाए। तो आपको गेट्स लगवाने हैं तो स्टीवन को 0221998959 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील प्रोवाइड करते हैं न्यू बिल्ड हाउसेज और रेनोवेशन के लिए। तो दैट इज़ द नंबर 0221998959 पर आप स्टीवन को कॉल करें। और अगर जो आपके पास में फ्लैट है टू लेट, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं 5599 पर।

देसी बिज शाउट आउट को आगे बढ़ाते हुए आपको जल्द से बता दे मेफ कॉन्ट्रैक्टिंग लिमिटेड के बारे में। अगर जो आपको घर पर कंक्रीट पो करवाना है, ड्राइववे नया बनवाना है या फिर एग्जिस्टिंग ड्राइववे को पैच करवाना है या किसी भी काम के लिए, किसी भी कंक्रीट वर्क के लिए आपको इसके अलावा डेकिंग भी करवानी है, फेंसिंग करवानी है, तो सब कुछ करते हैं गुरप्रीत सिंह। और ये है मेफ कॉन्ट्रैक्टिंग लिमिटेड से, आप इनको कॉन्टैक्ट करें 021-313-114 पर, 021-313-114 पर फॉर ऑल योर कॉन्क्रीट ड्राइववे वर्क्स। इसके अलावा अगर जो किसी भी तरह की और पोरिंग करवानी है, आपको डेकिंग बनवानी है या फिर फेंस आपको चाहे बनवानी हो या फिर एग्जिस्टिंग फेंसिंग आपको रिपेयर करवानी हो, तो आप गुरप्रीत को वंस अगेन 021-313-114 पर आप कॉल कर सकते हैं।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में। और लेटेस्ट अपडेट्स में आरएनजेड ने रिपोर्ट किया है कि अभी थोड़ी देर पहले एक भूकंप यानी स्ट्रॉन्ग एर्थक्वेक स्ट्राइक किया है इंडोनेशिया के ऑफ कोस्ट, जहां पर कुछ 7.6 तक रिक्टर स्केल पर इसकी रीडिंग थी। और इस क्वेक को ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया बताया जा रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में है। और इट वॉज एट अ डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर्स ESMC ने रिपोर्ट किया है। और इसके साथ में जो मैग्नीट्यूड है वो इनिशली इसको रिकॉर्ड किया गया था 6.9 पर, लेकिन फिर यूरोपियन मेडिटेरियन सेस्मोलॉजिक सेंटर ने ESMC ने इसको अपग्रेड कर 7.6 तक कर दिया है। और इस पर जो और जानकारी है ये अभी आती ही आ रही है हमारे पास में, लगे हाथ आती रहेगी। और जैसे और कुछ अपडेट्स हमको मिलेंगे आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। इसके साथ में वापस अगर जो देखें हमारे देसी बिज शाउट आउट में, आईसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ जो कि न्यूजीलैंड बिजनेसेस को एक यूँ कहें आकर हेल्प आउट करते हैं बाय सेविंग देयर टाइम और ये कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। जी हाँ, न्यूजीलैंड बिजनेसेस के लिए ये कॉस्ट रिड्यूस करते हैं बाय रिप्लेसिंग स्प्रेडशीट्स एंड आउटडेटेड सिस्टम्स विद कस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि आपके लिए आकर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए विद स्मार्ट ऑटोमेशन। तो आपको भी अपने जो प्रोसीजर है इसको अपग्रेड करना है तो आपको सिर्फ आईसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, जिसके फाउंडर एंड CEO है राजेश यादव जी, 02108668020 पर, 02108668020 पर आप इन्हें कॉल करें। जबकि आप भी कहीं ना कहीं मैनुअली सभी कुछ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो इट्स अबाउट टाइम कि आप स्विच करें और मैनुअल प्रोसेसेस को आप रिप्लेस कर सकते हैं विद ऑनलाइन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर्स। तो आईसॉफ्ट टेक्नोलॉजी इज द प्लेस वे नीड टू बी, 02108668020 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ में आप भी अगर जो कुछ बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई वेंचर है आपकी जिसको आपको लगता है एक छोटा सा नज आपको चाहिए ताकि और लोग इसके बारे में जान सके, तो 5599 इज द नंबर।

0: Bana duraya firde mu jakke.
1: डेसिबल शाउट आउट है ये, और 12 तक आपका साथ में रहेगा, और अभी तक आपको मौका देते आ रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में आप एडवर्टाइज कर सकते हैं ऑन एयर कुछ डिटेल्स भेजकर, जैसे मो जहीर ने किया है। मो जहीर प्रोवाइड करते हैं हीट पंप सर्विसिंग एंड इंस्टॉलेशन सर्विसेज ओकलैंड में। अगर जो आपको हीट पंप्स इंस्टॉल करवाने हैं या फिर सर्विस करवानी है तो मो को आप कॉल कर सकते हैं 02208018817 पर, याद रहे 02208018817 पर आप इनको कॉल करें या आकर आपके लिए आपके घर पर जितने भी हीट पंप्स हैं सर्विसिंग की ज़रूरत है बड़े ही अच्छी तरीके से करके और चले जाएंगे, या फिर आपको इंस्टॉल करवानी है तो इसके लिए भी ये कोड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास में भी कोई बिजनेस है, खासकर अगर जो आप घर से ऑपरेट करते हो, मे बी आप एक ट्यूटर हो जो ट्यूशन प्रोवाइड करते हो, या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप बच्चों को बजाना सिखाते हो, तो इसके लिए भी आप 5599 पर मैसेज करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सके।
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
3: ड्राइविंग यू होम द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
5: ये गलत बोल दिया यार।
4: और पहनता भी नहीं उसको।
5: अब उस बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया अभी वो।
5: अभी ब्रांड हो गया ना।
4: रुस्बे के बाल लगे उस।
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. चाहे आप स्लो रोस्ट कर रहे हो, बेकिंग कर रहे हो, या फैमिली के लिए डिलीशियस पीस बना रहे हो, द डी एंटोनियो विंटर सेल हैज यू कवर्ड। शॉप कीजिए माइकटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन में और पाइए कुकवेयर और किचन एसेंशियल्स पर जबरदस्त डील्स। द डी एंटोनियो विंटर सेल ऑन नाउ, एंड्स अगस्त 16th।
7: डिब्बा खुल गया
8: भरत भाई, टिफिन खुल गयो छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
9: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा, फिर यही तो होगा डिब्बा खुल गया। हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले। Buy any Kashish product and be in the draw to win up to $10,000 worth of cash prizes, gold coins and gift vouchers. Terms and conditions apply.
10: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
11: Showerdome.co.nz.
12: Bunnings has great value nail to help you beat winter. Grab 30 seconds 1 litre mould off just $7.61, or damp-free 2-pack disposable moisture absorbers only $5.98. Head in store or online for even more great value. Bunnings
13: Warehouse. 19 saal baad Shivam is back. A man haunted by grief and loss, searching for a purpose in life. Awara Bantu, starring Imran Hashmi and Disha Bani.
14: Moth, mera usse ek purana rishta hai. एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है।
13: आवारा बंटू, नाउ शोइंग इन सिनेमास, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अ फिल्म।
15: आवारापन
13: रेटिंग टीबीसी।

0: Saturday breakfast on Hum.
1: That's right, Saturday breakfast show on Hum. और ये है देसी बिज शाउट आउट. जबकि बातें हो रही थी एक ऐसे ट्यूटर के बारे में जो कहीं ना कहीं आपके लिए, बच्चों के लिए कुछ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा दे, आपका भी हेल्प हो जाए और बच्चे भी प्रोग्रेस कर ले. तो रंजीता ने मैसेज किया है नंबर वुक्स इन वुड्स. जी हाँ, नंबर वुक्स इन वुड्स हेंडरसन से. ये प्रोवाइड करते हैं पर्सनलाइज्ड ट्यूशन इन मैथ्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स फॉर ईयर्स 1 to 11. यानी कि आपके बच्चों को देखेंगे और किस लेवल तक उनको मदद की ज़रूरत है ये देखकर वो कस्टम ट्यूशंस आपके लिए क्लासेस प्रिपेयर करेंगी. इसके साथ में आपके बच्चों को भी हेल्प करेंगी. तो अगर जो आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप रंजीता को 09836313 पर कॉल कर सकते हैं. 09836313 पर आप कॉल कर सकते हैं. अक्सर पेरेंट्स को जो काफ़ी बिजी होते हैं काम को लेकर भी और उतना टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को, तो अभी से अगर जो अपने बच्चों को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो नंबर वुक्स एंड वुड्स हेंडरसन बेस्ड है. यहाँ पर रंजीता को आप कॉल कर सकते हैं 09836313 पर. तो अगर जो आपके पास में भी कोई बिजनेस है जिसके बारे में आप वुड स्प्रेड करना चाहते हैं तो 5599 पर हमारे पास में जरूर अपना मैसेज लिखिएगा, जबकि 12 तक ये मौका आपके पास में है.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस.

हम पर देसीबीज शाउट आउट को आगे बढ़ाते हुए अमित ने मैसेज किया है हमारे पास में और अन्नपूर्णा किचन से है और बताते हैं कि फॉर ऑल योर डिलिशियस और साथ में हाइजेनिक फूड और साथ में स्नैक्स के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं अमित को 0212949405 पर 0212949405 पर। ढेर सारे इनकी जो मैं इनके इंस्टा पेज पर जाकर देख रहा था annapurna_kitchen_nz पर काफ़ी ढेर सारे इनके पास में स्नैक्स का सिलेक्शन है और एक क्वालिफाइड शेफ़ भी ये हैं। तो अमित को आप कॉल करें 0212949405 पर अगर जो आपके घर पर कोई फंक्शन है अपकमिंग, तो यहाँ पर कैटरिंग और साथ में स्नैक्स के लिए आप अमित को कॉल कर सकते हैं। और 5599 पर बस थोड़ी देर तक और मौका है आपके पास में, जबकि आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। 12 बजे तक तो मैं आपके साथ में रहूँगा, लेकिन यूँ देखें तो कुछ लगभग 27 मिनट्स ही बाकी है। तो अगर जो आपको भी फ़ायदा उठाना है, आपको भी बिज़नेस अपने प्रमोट करवानी है, तो 5599 इज़ द नंबर। या फिर ओनिया भी आकर बात करना चाहते हैं 800004866।

डेसीबिज में अगला जो मैसेज है अनिल की तरफ से है, अनिल डोंगरे जो फाउंडर एंड सीईओ है एट थिंक एंड फॉर्म लिमिटेड, ये चलाते हैं एक एआई स्टूडियो कंपनी इन ऑकलैंड, जहां पर स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस को इनके प्रोसेसेस को ये ऑटोमेट करते हैं, और जितने भी आपके मैनुअल वर्क फ्लोज है अगर जो आप इनको किसी ना किसी तरह से ऑटोमेट करना चाहते हैं तो ये सभी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं यूजिंग एआई पावर्ड एप्लीकेशंस। तो आप अनिल को 0288511276 पर कॉल करें, 0288511276 पर आप कॉल करें, ताकि अगर जो आपको भी ऐसे सर्विसेज की ज़रूरत है जहां पर आपके बिजनेस में आपको लगता है कि नाउ इट्स टाइम कि आप टाइम के साथ में चले और लेस रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एक फास्टर प्रोसेस इंस्टॉल करें, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। इसके साथ में मूव लॉजिक AI एक स्मार्ट मूविंग सिस्टम है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक ओकलैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जहां पर ये मूव एंड रिलोकेशन इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है बाय यूजिंग AI पावर्ड विजुअल स्कैनिंग। कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, अपने ही घर से एट योर कन्वीनियंस अपने फ़ोन से आप जो जो सामान मूव करने हैं आपको उसका इस्तेमाल कर सकते हैं विद मूव लॉजिक। इसके साथ में ये सिंपला करती है आपके लिए लॉजिस्टिक्स और ये सभी कुछ, और अगर जो आपको कोटेशन चाहिए इसके लिए तो आप राजेश यादव को मूव लॉजिक AI 0210866800 पर कॉल कर सकते हैं। सो अभी से देखा जाए तो बहुत समय नहीं है, मे बी वन मोर चांस जहां पर आप अपने बिजनेसेस के बारे में आज के लिए बात कर सकते हैं या फिर मैं यहां से आपके बिजनेस को प्रमोट कर सकता हूं। 5599 पर जल्द से जल्द आप मैसेज करें।

0: Stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही. दिस इज मी अभी साइनिंग ऑफ. आपसे फिर मुलाकात होगी कल 12 पर. लेकर आऊंगा जस्ट चिल. लेकिन आज के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे. डू टेक केयर. बाय.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम Breakfast show with VJ and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West West side है ना, West side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with
3: क्या?
4: The cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua West में.
4: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.